0: व्याधि दुख, जरा दुख, आगे नहीं मृत्यु दुख, ये पांच दुख का वेग हरेक के जन्मों के साथ लगा हुआ है। चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कीट हो, पतंग हो, समझ के नहीं, जो भी जन्म लेगा तो गर्भ दुख, जन्म दुख, जरा दुख, व्याधि दुख। गर्भावस्था में दुख आएगी नहीं, गर्भ दुख भयंकर दुख होता है, गर्भावस्था का पीड़ा गर्भ दुख, फिर गर्भ जन्म लेते हुए दुख, जन्म दुख वो तो भयंकर दुख होता है। माँ तो मर ही जाती, कभी कभी कोई मर जाती है, इतना पीड़ा होती है, जन्म दुख। फिर व्याधि दुख, व्याधि स्थैना संशय प्रमाद आलस्य भ्रांति दर्शन आरोग्य भूमिका अनवस्थितित्व आदि, ये सब दुख है, योग दर्शन ने बताया। तो गर्भ दुख, जन्म दुख, जरा दुख, व्याधि दुख और मृत्यु दुख। ये मृत्यु दुख, मृत्यु काल में भी भयंकर दुख होता है ऐसा कहते हैं, अभी तो हमको तो देखने में नहीं आता है, झट करके धक्का दिया था मर गया, हार्ट फेल हो गया, हार्ट अटैक हो गया, फलाना हो गया, ढंका हो गया, अभी बात करके घर में गया, पानी पीते मर गया, गजब की बात है। अभी भगवान ने ऐसा ऐसा शॉर्टकट के मृत्यु दे दिया, अभी डरता नहीं कोई मारने का, वो बीमार होकर खाटिया में पड़ा रहना डरता है, सब कहते महाराज अभी रोगी होकर खाटिया में पड़ा रहना, हाँ ये बड़ा भारी संकट लगता है, मर जाऊं तो अच्छा है, एक साल एक झटके से आने बात। तो दुख जो है ना, पंच दुख है, ये दुख किसका फल है, कर्म का फल है। और तुम जो सुखी हो, हाँ पुत्र पुत्र आदि सुखी हो, धन से सुखी हो, फलन से सुखी हो, हाँ धन से सुखी हो, ये सुख है, ये सुख किसका फल है, कर्म का, पुण्य कर्म का फल है। अब तुम कहोगे हमारा जो है ना वो दुख को जला दे, दुख का कारण जो है पाप है, पाप को जला दे, पुण्य रहेगा, हम सुखी रहे बने रहेंगे, तो उसके भोग करने के लिए हमको जन्म देना पड़ेगा, तो जन्म ही दुख है सबसे बड़ा। जन्म दुख, जरा दुख, व्याधि दुख, मृत्यु दुख जो है ना, ये पंच दुख का वेग है, जगह है। ये कहते हैं जथा इसी का तुला मग्नो, जिस प्रकार इसी का अग्नि में डाला हुआ तो इसी का है नी बात, अग्नो प्रोतम प्रदुयते है नी बात, जला देता है, प्रदुयते माने जला देता है, एवं अश्य सर्वे पापाना प्रदुयते, उसी प्रकार इस ज्ञानी के समस्त पापों को जला करके, तो ज्ञानी को पाप जलाता पुण्य नहीं जलाता ऐसा नहीं समझना, सब ही जाएगा, क्यों, पाप पुण्य दोनों अज्ञान का कार्य है, पुण्य भी करते हो अज्ञान से, पाप भी करते हो अज्ञान से, है नी बात, दोनों का कारण क्या, अज्ञान अविद्या, है नी बात। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते, ज्ञानाग्नि सर्व कर्म को नाश करता, ज्ञानाग्नि। तो देखो यहां भगवान ने ऐसा नहीं बताया पाप कर्म नाश करता है, संचित कर्म नाश करता है, प्रारब्ध कर्म नाश करता है, यानी बात, ऐसा कोई भगवान ने नाम नहीं लिया, सर्वकर्माणि। अभी उस नित्य कर्म हो, नैमित्तिक कर्म हो, पाप कर्म हो, पुण्य कर्म हो, धर्म हो, अधर्म हो, संचित कर्म हो, क्रियमान कर्म हो, प्रारब्ध कर्म हो, कोई भी कर्म क्यों ना हो, सब कर्म अविद्या का है, याद रखना, अविद्या है, अज्ञान है तो कर्म है, कर्म है तो कर्म का फल है, यानी बात। तो ज्ञान आग्नि सर्वकर्म ने भस्मसात कुरुते तथा, इसीलिए कहता है ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा, आया थे नहीं, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तम आहो पंडितम बुधा। वो पंडित विद्वान लोग विवेकी पुरुष उनको पंडित कहते हैं। पंडित की परिभाषा बनाया गीता में कि इसको दग्ध कर्माणम जिसने ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा समस्त कर्मों को जला दिया वही पंडित है, याद रखना। तो तुम पंडित हो पंडित। अच्छा पंडित शब्द तो का कई परिभाषा गीता में भगवान ने बतलाया। एक तो विद्या विनय संपन्न है ब्राह्मण है कवि हस्ते नहीं सुनी सी वस भाग्य सब पंडिता समदर्शी न, ये समदर्शी को पंडित कहते हैं। ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा जिसने कर्म को जला दिया दग्ध कर्मणम तमाह पंडितम बुधा अशिचान शोषस्तम प्रज्ञा वादान से भाषण से कथा सुन कथा सुनकर नान शोषण से पंडित। पंडित लोग शोक नहीं करता, तुम शोक करते हो तो पंडित नहीं हो, शोक नहीं करते हो तो पंडित हो। सीधी बात यह शोक होता किसमें? अज्ञान से। शोक कहाँ होता है? शोक स्थान सहस्राणी भय स्थान शताने दिवसे दिवसे आभिषण भी मुढ़ा ना पंडित। शोक स्थान सहस्राणी भय स्थान शताने दिवसे दिवसे आभिषण थे मुढ़ा न पंडिता। संसार में घर से निकालो बाहर घर में बाहर आओगे नहीं आओगे कौन पता। स्मशान में जाओ मुर्दा के लिए शोक करते हो, जाओ स्मशान में बैठो दिन भर रात भर जिंदगी भर रोते रहोगे। यहाँ मुर्दा ही जलता है, काशी में मणिकर्णिका का घाट है 24 घंटा मुर्दा जलती है, वहाँ महाश्मशान माना जाता है, वहाँ मुर्दा जलना ही चाहिए। तो मुर्दा के लिए शोक करोगे? मरने के लिए मरने वाला के लिए शोक करोगे? पूछता है शास्त्रकार किसके लिए शोक करते हो? जिंदा के लिए क्या शोक करते हो? मुर्दा के लिए। अर्जुन तो शोक कर रहा है किसके लिए शोक कर रहा है? भगवान कहते अशुचानंद सुशस्त प्रज्ञावादान से भाष से आपने सगा वाला के लिए वो तो अर्जुन वो तो दुर्योधन की बात है, वो तो अर्जुन से कह रहे भगवान। वो तो मामा का पांडव से युवक कि मैं कुर्बत संजय अर्जुन बुलाना दुर्योधन संजय जी बुलाना महाराज राजा राजा बसन महाप्रवेश मान नायका पांडवा सैव नहीं क्या नाम क्या श्लोक है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समावेत उत्सव मामा का पांडवा सैव किम कुर्वत संजय संजय वाच दृष्टवा तो पांडवा निगम व्यूढ़ दुर्योधनस्तथा आसारी उपसंगम्य राजा बसन महाप्रवीत राजा माने दुर्योधन वो जाकर के बोला बोला। तो यहाँ कहते हैं तुम शोक करते हो किसके लिए शोक करते हैं? जिंदा के लिए कि मुर्दा के लिए? भगवान पूछते तुमसे अश्वच्छान जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। अरे मैं ये प्रश्न कह रहा है यहाँ तो भगवान बोल रहा है उसके कह रहा है उसका तो विषाद जोग है और ये तो संख्या जोग है। संख्या जोग की बात कर रहा हूँ और तुम तो विषाद जोग की बात कर रहे हो। पहला जोग का नाम विषाद जोग, दूसरा जोग का नाम संख्या जोग। संख्या जोग में 11वां अध्याय से चालू होता है गीता। अशोच्यानन शोषस्तम हे अर्जुन जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए तो शोक कर रहा है और बात करता विद्वानों के जैसे प्रज्ञावादान से भाषा से अशोच्यानन शोषस्तम और साथ साथ शोक तो कर रहा मुर्दा के लिए और बात कर रहा पंडितों के लिए, तो आपने पंडित आई ताक में राख दे, मैं जो कहते हैं उसे सुन। तो वहां पंडित के जैसे बात कर रहा है, पंडित पंडित के जैसे बात कर रहा है, पंडित है नहीं। अपंडितम पंडितम मन्यते इति पंडितम मन्यमाना, जो पंडित नहीं है और पंडित के जैसे बात करे तो उसको कहते हैं पंडितम मन्यमाना। अपंडितम पंडितम मन्यन्ते, पंडित है नहीं, आपने को पंडित मानता है, वो बात कर रहे हैं पंडितों के जैसे, जो आपने बुद्धि ताक में राख, मैं जैसा कहता हूं वैसा सुन, चल। ऐसे भगवान ने डांट दिया तुमको। तो देखो आने बात है क्या, पंडित शब्द का पंडितम ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तम आहो पंडितम बुधा, विद्वान लोग उसको पंडित कहते हैं। किसका अगली लाइन हो गया ना, सर्वकर्माण भस्मसात कुरुते तथा ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणी, तो ज्ञान रूपी अग्नि जो है सभी प्रकार के कर्मों को जला देता है। सभी कर्म समझ में आए ना क्या, नित्य कर्म, निमित्त कर्म, प्रायश्चित कर्म, उपासना कर्म, तप कर्म, समझे कि नहीं, सब कर्म। पाप पुण्य तो आएगा नित्य निमित्त कर्मों में, सब आ जाएगा। प्रारब्ध कर्म सब वो हो गया। सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते, भगवान ने नाम गिना करके नहीं बोला अमुक करो, व्यतिरेक भी नहीं दिया को अमुक नहीं करो, अमुक नहीं करो, अमुक नहीं करो, ऐसा नहीं। एक ही शब्द है सर्वकर्माणि, यानी बात। हाँ चलो, तत्र अभी इसका देखो आठवां का भूमिका, तत्र योनिम क्रीड़वस्व इति उक्तम, तत्र योनिम, तत्र माने तस्मिन ब्रह्मणि, हाँ कौन से ब्रह्म में, पूर्वम ब्रह्म दूषित, वो जो पहले बतलाये ना, पूर्वम ब्रह्म दूषित सेवित, तत्र तस्मिन ब्रह्मणि योनिम कुरुस्व, किरणस्व माने कुरुस्व, वहां तुम निष्ठा करो, ये बतलाया पहले। हाँ सातवां में बतलाया वहां निष्ठा करो इति उक्तम, कथम ध्वनिकरण हम वहां निष्ठा कैसे करें, ये प्रश्न किया। वहां निष्ठा समाधि कैसे लगाए, हाँ समाधि कैसे करे, इत्याशंका ऐसा शंका करके तत्प्रकार हम दर्शयती, अब वहां समाधि लगाने के प्रकार बतला रहा है कैसे लगाओगे। तो देखो त्रीन उन्नतम, तीन उन्नत करो, शीर ग्रेव्या छाती, ऐसा बैठ जाओ, हाँ इसे नहीं बैठा जा छाती उन्नत, ये ग्रेवा उन्नत, ये उन्नत, ऐसा बैठो और नहीं बैठा जाएगा। तो तीनों उन्नत रखो, उन्नत मान ऊंचा ऊंचा ऊंचा रखो, ऊंचा ऊंचा साथ ही फुला दो, विवाह रखो, फिर वैसा करो। चलो त्रीन उन्नतम है बात, स्थाप्य समम शरीरम, तीन कौन कौन सा है, शरीरम इंद्रियाणी मनसा, मनसा सन्निमिष्य मन के द्वारा है बात, इंद्रियाणी इंद्रियाणी हृदय स्थाप्य सन्निवेश्य है बात। तो क्या करोगे, वक्षस्थल को ग्रीवा को मस्तक को सीधा करके रखो, शुशो देशे प्रतिष्ठा पर स्थिरम आसनम आत्मन, नात्युश्रितम नाति निशम चैलादीनम कुशोत्तरम, तत्र एकाग्र मन कृत्वा जतसित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्य आसन तुंजा जोगम आत्मा विशुद्ध, योग जोड़ो, योग करो, चित्त शुद्धि के लिए कैसे कहाँ करे, तो भगवान ने बता दिया गीता के 60 अध्याय में, सुसो देश पवित्र देश है उन्हें, हाँ सुसो देश प्रतिष्ठा पर रख करके आसन, सुसो देश प्रतिष्ठा पर स्थिरम आसनम आत्मन नाति उसम नाति निशम, नीचे करोगे कीड़े मकोड़े काटेगा सीटी काटेगा, ऊपर करोगे गिरने का डर रहता है, 20 वाला मध्यम 20 का है ना, ऊपर भी नहीं ज्यादा ऊंचा भी नहीं। आवे आवे आप लोग क्या होगा कुंभ मेला में, कुंभ मेला में संतों का जुलूस निकालते हैं ना मंडलेश्वरों का, तो किसका कैसा ऊपर कितना ऊपर हो, तो सबसे ऊंचा रखा रखा था संतोषी माँ का, मैंने कहा गिरेगी तब मरेगी साले, इतना ऊपर ऐसे ऊपर ऊपर रखा है, सबसे ऊपर देखा था, क्या इनको तो ऐसा है पता नहीं कौन सा बड़ी भारी, जितना ऊपर इधर रखेगा उतना बड़े मंडलेश्वर हो जाता है क्या, पंचदशी का भी ज्ञान नहीं है उसको, संतोषी वहां को पंचदशी का भी ज्ञान नहीं है, और वहां जाकर सबके ऊपर आसन लगाया, तो ऐसा आसन मत लगा ना जी गिर जाओगे तो एक बार लुढ़क पड़ोगे, हे गंगा जी में लुढ़क पड़ोगे तो ऐसे गंगा जी चले जाओगे सीधा, तो वहां ऐसा फोड़ लगता है कौन किसका आसन कितना ऊपर होगा, कौन किसका सिंहासन कितना ऊपर होगा।
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाय डे, वी नाउ होस्ट मोर देन 25,000 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। इन ऑर्डर टू मेक दीज एक्सटेंसिव रिसोर्सेज मोर एक्सेसिबल एंड बेनिफिशियल टू अवर रेडियो लिसनर्स, वी हैव रीऑर्गेनाइज्ड अवर प्रोग्राम शेड्यूल। திருமுறை மியூசிக் அண்ட் திருமுறை டிஸ்கோசஸ் வில் பி பிராட்காஸ்ட் ஆன் திருநெறிய தமிழோசை. பிலாசபிக்கல் டிஸ்கோசஸ் அண்ட் பெரிய புராணம் லெக்சர்ஸ் இன் தமிழ் வில் பி பிராட்காஸ்ட் ஆன் சிவதத்துவம். ப்ரோக்ராம்ஸ் இன் லாங்குவேஜஸ் அதர் தேன் தமிழ் வில் பி பிராட்காஸ்ட் ஆன் சைவலஹரி. ஆஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் தீஸ் சேஞ்சஸ் தேர் வில் பி சம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் டு ப்ரோக்ராம் டைமிங்ஸ். வி ட்ரஸ்ட் தட் யூ வில் கைண்ட்லி அக்செப்ட் தீஸ் ஷெட்யூல் சேஞ்சஸ் வித் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் பேஷன்ஸ். We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
2: Shaivam.org இன் ஆன்மீக அன்பர்களுக்கு வணக்கம். நீங்கள் அடுத்ததாக கேட்கவிருக்கும் நிகழ்ச்சி சிவகீர்த்தனைகள். பாடியிருப்பவர் டி கே ஜெயராமன் அவர்கள், திருச்சிற்றம்பலம்.

नमः। ओम मधुरी कुविधिशक्रमुख्य तैलेरपि निगमार्चित पाद पद्मकाग नमः। ओम मधुरसफराक्षी सहचराग नमः। ओम मधुमधनदक दूरचरणाग नमः। ओम मधुकृते नमः। ओम मधुरसंभाषणाग नमः। ओम मधवे नमः। ओम मधुराधिपाग नमः। ओम मधुकलोचनाग नमः। ओम मधुवैरिनादर्शिर प्रसादाग नमः। ओम मध्यमार्ग प्रदर्शिने नमः। ओम मध्यलक्ष्यस्व

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: एतज्ञसाधस्थपरेते ददामि यमावहाच्छेवधिञ्जातवेदाः
1: तन्वागन्ता यज्ञपातिर्वो अत्र तज्ञस्म जानीत परमेव्यो मन्
0: एतञ्जानाथ परमेव्यो ओमन् देवा अस्सधस्था विदरूपमस्य यदा गच्छात्पथिभिर्देवयानैरिष्टा पूर्ते क्रोणवथा विरस्मै उद्बुध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहित्वमिष्टा पूर्ते सज्ञा सृजे।

0: the soul being different from the body and mind complex. That the soul is the same as Brahman, or the Brahman is the same as soul, is a different part, different story. The vast literature concerning Upanishads have said so much on the subject that one could derive any kind of inspiration from it. You could take the stand that the soul is the same as God, Brahman. You could take the stand that soul is very different from Brahman. And you could take the stand also that Brahman and the soul are the same, but the soul has some special characteristics. And the soul, the abidance of the soul ultimately in the Brahman still makes it different from Brahman. So you have the Advaita, you have the Advaita, and you have the Visishtadvaita, and a host of philosophies. Jaina religion talks of soul, but it doesn't talk of God. And if you ask the Jain as to what they mean by soul, the Jains will tell you that the souls exist in the body and they are coterminous with the body. And so logically, the soul of an elephant would be as big as the elephant, and the soul of an ant will be as small as an ant. But Buddha steered clear of these things. He did not speak in terms of God. He did not speak in terms of the soul. He told people as to what they should do in order to make their life such as will enable them to cross this ocean of life and death, the cycle of life and death. So towards the end of his life, his closest disciple Ananda went and told him, look, you have been silent on the subject. That's what is bothering most of us. The Brahmanas speak of the soul, existence of the soul and the transmigration of soul, but you have kept significantly silent on this subject. And what do you mean by this? And so at almost at deathbed, Buddha says, why do you worry about it? There are many things that I have told you and many other things that I have not told you. But what is important for you today is to accept my teachings and adopt a code of conduct, a way of life for you, which will help you to cross this ocean of life and death, of birth and death. Therefore, why bother about the existence of a soul, existence of a God and things like that? He told him that, but he did not deny the existence of God, or he did not deny the existence of the soul. So, you know, the story goes on like that. Now, during the last session, or the session but one earlier, I was describing what really are the constituents of this body and the mind complex. An understanding of these things would help us to understand also what the soul could mean. Well, we go to Sankhya for this, Sankhya philosophy, in order to get some gleanings into what constitutes the body and the mind. The various constituents have been most beautifully and with great clarity and detail formulated by the Sankhya philosophy. And from the Sankhya philosophy, other philosophers have derived a lot of inspiration. So we call them tattvas. We call them categories. And these categories make the human body, or the body, and the mind complex. So they think in terms of a number of these categories. First we have the five Mahabhutas. Then we have the five instruments of perception. Then we have the five instruments of action. Then we have the five senses. Over many years we have been discussing these things. Therefore you ought to know all these things by now. So all these become 20. Add to this 20 mind, intellect, ahamkara or egoity, and chittam, which is the power of discrimination, you may say. So these 20 plus 4 make 24. These 24 categories are known as anmatattva. These are basic constituents of the human body and the mind. But given by themselves, they would not act, they would not move. There is no life in them. They are jada, they are lifeless, and therefore they have to be activated. In order that they may be activated, we need something else. So these something else is known as the vidya tattvas. The vidya tattvas have been described in great detail, and they have been counted as 7 in number. Kalam, niyadi, viddai, raham, then kriyai, then maye, then purudam. Purusha. These are 7 in number. It is these 7 which are set, they are subtle forces, they are subtle elements, but they are also called categories, and these are the ones which form part of the grosser elements and are responsible for the movement. The anmatattvas are also known as the prakriti maya tattvas. The vidya tattvas are known as asuddha maya tattvas. They are called asuddha maya tattvas because they are tied and associated and connected to the body-mind complex. And anything that is associated with the body, our philosophers call them as asuddha. So 24 plus 7 makes it 31. And these 31 really form part of the asuddha maya, prakriti maya complex. But all of them are jada. By themselves do not act. And you really go into the suddha maya categories. Now, Sankhya do not explain the suddha maya categories in that great detail. The suddha maya categories are explained in great detail in Saiva Siddhanta. Saiva Siddhanta of any type, you can take a Kashmir Saivism or the Saivism of the Tamil Saivism, all these Saivism, Saivite philosophies think in terms of, or talk in terms of, the Suddha Maya categories being five in number. They are Sivam, Sakti, Nadam, Bindu and Sadakhyam or Sadasivam. These are known as pure categories. These pure categories form part of the Tirodhana Shakti of Parasakti. When Parasakti decides to separate herself from Shiva in order to be able to create this world and all its categories so that the soul may get into them and the soul may experience their pleasures and joys and sorrows and fulfill their karmic obligations through them. And therefore, the Suddha Maya categories are, in fact, the most subtle categories, and they are the closest to Parashakti, who in her Parigraha stage, Parigraha Shakti stage, which is a little away from the Shiva, the Absolute. When Shiva and Shakti are together, interminably connected, it is known as the Dhadanmya Shakti, and this is Parigraha Shakti. And in Parigraha Shakti, Parasakti chooses to get away from the Lord for the time being with a view to create the various categories which will lead into the production and the creation of the world and the universe and all other categories which will be useful as Danu, Karana, Bhuvana, Bhogam for the soul to experience. So you see, this is five. So it makes a total of 36. So these 36 are the categories according to Saivism. Now 25 are the categories according to Sankhya. Now 24 are the according to Advaita. The Vaishnavites talk also in terms of 25 categories. So you see, the various philosophers use these categories in order to make people understand how they are relevant for the purpose of understanding divinity, for the purpose of sadhanas. So far as Saivism is concerned, it talks of 36 categories. In fact, it talks of 96 categories. These remaining 60 are various subcategories, which again are the grosser elements and the subtle elements of these various categories. Therefore, they are 96 according to Saivism. Now, all these are known as tattvas. And they make what we are. They give us the body, they give us the instruments, they give us the mind, they give us the cause for action, they give us the knowledge, they give us the capacity to act, and they give us the desire to act. Ichha Shakti, Kriya Shakti, and Jnana Shakti. Now, so when you know all these things, we are still not sure whether these have anything to do with the soul. Are they the soul? Why not? Some people will say they are the soul. It's enough. All these categories by themselves can be combined in some way, let's say by God, that they become active. That life gets infused in them. That they can respond to stimuli, they can respond to environment, they can grow, they can multiply, they can cease to exist and so on. But then the question will be asked, it's not mere movement. It's not mere activity. You look at the various living things, you notice that they are all having various degrees of knowledge, various degrees of consciousness. The right from ant upwards, let us say, to the human being, each one is bestowed with invested with a certain degree of consciousness, a certain sense of consciousness, which make them tick. It's not merely life. There is something more. There seems to be something more. They seem to be aware. Ant knows most beautifully as to where to go and catch its prey. An elephant knows most beautifully how to attack and get its prey. And the human being knows how to carry on, succeed, and things like that. Therefore, they seem to be conscious. And you can add, so far as a human being is concerned, another unique characteristic is he is not only conscious of the environment, he is not only conscious of the world around himself, but he is conscious of himself. He is aware of himself. He is aware that he is aware. And therefore, you see, there seems to be a certain unique capacity that had developed. Oh, now, what do you say to that? With that, it seems sufficient that living things can act and respond. In fact, if you ask the modern psychologist, he would say, yes, that's enough. But then how do I respond to the stimuli? How do I respond to people? How do I respond to situations? How do I acquire knowledge, absorb it and store it and use it and so on? They will say, well, this is as a result of an evolution. This is as a result of a growth of a personality. So you have developed a personality. An ant has a personality. An elephant has a personality. Even so, a man has a personality. Now, what is this personality made of? The psychologist will say, ego. It is your egoity which constitutes your personality. Your ability to respond is based upon your ego complex. The psychologist will, of course, admit that this ego complex is a very complex thing. It's not so easy. It's a complex thing, if not complicated. He will say it's a very he will agree that it is complex. Freud would say that the ego was fashioned and shaped by some of the deepest instincts. Adler would say it is not merely the instinct that is helping to shape the personality or the ego, it is your collective consciousness. It had got embodied in your memory. And Jung would adopt a different argument to explain how the ego is dominated by other forces. But all of them will agree that that ego is personality, personality is ego, and it is that which gives you a certain uniqueness, and it is that which makes you tick. So you see, therefore, by and large, you could take that stand that all these seem to be enough to be able to handle myself. But is that so? Does that constitute the whole story? No. Our saints would say, no, he does not. Right from time immemorial, right from the birth of Indian spirituality, right from the birth of the acute knowledge of these things which our saints developed over many, many eons, looking into this matter, meditating upon them, concentrating upon them, getting into the insight of them. And they had come to know of certain things which they have given to the world. Soul, the existence of the soul in the body, the transmigration of the soul, the responsibility of the soul to keep moving in order to gather experience, the responsibility of the soul to gather experience with a view to annihilate what it had done. All these things have formed part of a total integrated outlook. And our great seers have contributed to the development of this outlook. And so according to them, there above and beyond this body, mind, ego complex, however active they could be, there ought to be a soul, a force that will be part of this body and the mind complex, the force that will move this body, which is otherwise inert material. That is the way in which our saints would describe the existence of a soul logically. But this logic they got as a result of their intuitive experience. Their intuitive experience told them about the existence of a soul inside the body. And it is this soul to which they attributed the capacity for awareness. To know is one thing. To be aware is very different. Knowledge can be an imprint of an external event. But awareness is the comprehension of that event. By knowing things, you do not necessarily become aware, or you have comprehended it. In knowledge, there could be acuteness, there could be a limited focus, there could be clarity. But in awareness and in comprehension, there is an integrated understanding of the totality of things. It is this totality that becomes vastly more important when you are thinking in terms of awareness. And who gave this awareness to the human being, let's say, or to any other living things, if it was aware of itself to some extent? This awareness is part and parcel of the soul. The very fact that you are talking like this, the very fact that you are interacting like this, the very fact that we are responding to each other like this, in terms of this, constitutes our awareness. And therefore, there has got to be some element other than body and mind complex, which is the possessor of this awareness. Jnana Sakti. So, our saints said, the soul is something which is awareness. Jnana Sakti. The soul is something which also has the capacity to act, Kriya Sakti. The soul is something which has the capacity to desire, Icha Sakti. But these three things constitute the essence of the soul. The confusion arose here because people, even in the Upanishads, were thinking and talking in terms of the size of the soul. Upanishad said, Angushta Matrapya. It's as small as a finger. And they said it is in the center of the heart. And where do you, how do you locate a finger in the center of the heart?
1: Om Namah Shivaya. You're listening to Shaivam.org radios. 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
2: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Brahmasutra Shtikhanda Bhashyam, presented by K.S. Mageshwaran Nambudiri.
3: Tasna Purvoktameva Samichinam. Agre.
4: Tataha Sakala Chidachit Prapancha Kara Paramashakti Vishishta Advitiya Vaibhavasya Sakala Nigamasara Rahasya Nidhanasya Bhavashiva Sharva Pashupati Parameshvara Mahadeva Rudra Shambhu Prabhurti Paryaya Vajaka Shabdasara Prakashita Parama Mahima Vilasasya Shiva Shesha Bhuta Nikhila Chetana Samupasana Anuguna Samudita Nija Prasada Samarpita Purushartha Sardhasya Parabrahmana Pratipadaka Upanishad Shastram Vicharani
3: Parabrahmana Bahuni Visheshanani तत्र वस्तुगत्या एकैकस्य कृत्यं वक्तव्यं तदा तदर्थम् इदानीं यत्नः न क्रियते अत्र वर्तते शब्दार्थं योजयित्वा अग्रे गच्छामः ततः सकल चिदचित् प्रपञ्चाकार परमशक्तिविशिष्ट कथं कुत्र कस्य किं कुत्र विशेषणमिति द्रष्टव्यं तावदेव चिदचित् प्रपञ्चः चिद्रूपः अचिद्रूपश्च प्रपञ्चः चेतनाचेतनमयः प्रपञ्चः तादृश प्रपञ्चाकारा या परमशक्तिः सकल चिदचित् प्रपञ्चाकारा या परमशक्तिः तादृशशक्तिविशिष्टः विशिष्टम् अद्वितीयं वैभवं शक्तिविशिष्टं परमात्मस्वरूपम् अद्वितीयम् अद्वितीयं नाम द्वितीय सजातीय द्वितीयशून्यं तद्वद् अन्यं नास्ति तत्र सर्वम् अन्तर्गतम् इति जातम्
4: इत्युक्ते विशेषण विशिष्ट
3: विशिष्टम् एकमेव विशिष्टं तु एकमेव इति कृत्वा यतोहि सकलप्रपञ्चाकारेण परिणममाना इयं शक्तिः तादृशशक्तिविशिष्टः अयं परमेश्वरः अद्वितीयः अद्वितीयः इति कृत्वा तादृश अद्वितीय अद्वितीयं वैभवं यस्य सर्वोऽपि बहुरिः वैभवं यस्य सः तादृशविशिष्ट अद्वितीयवैभवः तस्य अत्र पाठभेदः सकल निगम सार सामरस्य निधानस्य इत्यस्ति उभयथापि क्लेशो नास्ति सकलः यः निगमसारः निगमः वेदः वेदः वेदस्य सारः सारस्य सामरस्यम् सामरस्यम् इत्युक्ते तात्पर्यम् सर्वस्यापि वेदवाक्यस्य परमतात्पर्य विषयः इति सामरस्य निधानम् सामरस्य निधानस्य इत्युक्ते परमतात्पर्य विषयस्य रहस्य इत्युक्ते सूक्ष्मार्थः तत्रापि
4: तात्पर्य
3: एव परिवसान
4: भव शिव सर्व पशुपति परमेश्वर महादेव रुद्र शंभु प्रभृति पर्यायवाचक शब्द सार पर्यायवाचकाः
3: ये इमे शब्दाः
4: शब्द सार प्रकाशित
3: तेषां तैः शब्दैः सारतः प्रकाशितम् कश्चित् वाच्यार्थः ईषद् भिन्नः स्यात् परन्तु तैः एतैः उक्तैः शब्दैः साररूपेण इदमेव परमात्मस्वरूपं प्रकाश्यते इति कृत्वा तत्सारप्रकाशित परमात्म परममहिमविलासस्य महिम्नः विलासः महिमविलासः विलासो नाम प्रकटीभावः एतैः शब्दैः तत्र यद्यपि पर्यायशब्दाः भवन्ति परन्तु प्रवृत्तिनिमित्तं भिद्यते एकैकस्य नाम शिवपरत्वं तु भवतु शिवपरत्वमस्ति चेदपि भिन्नभिन्नप्रवृत्तिनिमित्तेन शिवपरत्वं भवति तर्हि एकैकेन शब्देन एकैकः महिमा प्रकाश्यते
4: रुद्रः इत्युक्ते तत्र गुणः
3: गुणाः विद्यन्ते अन्ये अन्ये गुणाः
4: प्रवृत्तिनिमित्तं
3: भवन्ति इति कृत्वा प्रायेण एते गुणप्रवृत्तिनिमित्तकाः शब्दाः तस्मात् तैः तैः शब्दैः सारतः अन्ये अन्ये गुणाः महिमानः प्रकाश्यन्ते इति कृत्वा तथा सारप्रकाशितपरममहिमविलासस्य परब्रह्मणः
4: स्वशेषभूत निखिलचेतन समुपासनानुगुण समुदित निजप्रसाद समर्पित पुरुषार्थ सार्धस्य
3: सार्धस्य इत्यस्ति वा सार्धस्य इत्यस्ति
4: सार्धस्य इत्यस्ति
3: अस्तु अत्र सार्थस्य इति वर्तते तदपि उभयं योजयितुं शक्यते इति चिन्तयामि स्वशेषभूत निखिलचेतन समुपासनानुगुण समुदित निजप्रसाद समर्पित पुरुषार्थ सार्धस्य तेन सार्धं वर्तते इत्युक्ते तत्सहितः इत्यर्थः स्वस्य शेषभूताः निखिलचेतनाः ये ये चेतनाः भवन्ति ते सर्वेपि अस्यैव परमात्मनः शेषभूताः अङ्गभूताः अथवा तस्यैव अधीनाः भवन्ति तद् तदपेक्षया अतीतस्तु नास्ति तर्हि तद् अधीनाः भवन्ति तेषां सर्वेषामपि उपासनानि विहितानि भवन्ति केवलं परमेश्वरस्यैव उपासनं विहितमिति नास्ति अन्येषामपि चेतनानां देवताविशेषाणाम् अपि उपासनानि विहितानि भवन्ति
4: उपास्यत्वेन विहितानि
3: एवम् अन्यदेवताः अपि उपास्याः भवन्ति परन्तु किं भवति तेषाम् उपासनेनापि अयमेव परमेश्वरः प्रीतः सन् फलं प्रयच्छति फलप्रदाता तु अयमेव एकः फलमत उपपत्तेः इति एकम् अधिकरणम् अग्रे आगमिष्यति तर्हि तेन यस्य कस्यापि उपासनं क्रियतां सर्वत्रापि अयमेव प्रीतः सन् अनुग्रहं करोति इति वर्तते अतः तदा तदनुसारेण उच्यते पश्यन्तु स्वशेषभूत
4: निखिलचेतन समुपासन
3: निखिलचेतन समुपासन निखिलाः ये चेतना तेषां समुपासनेन समुपासनस्य अनुगुणम् समुपासनानुसारम् अनुगुणं नाम तदनुसारम्
4: समुदित निजप्रसादः
3: समुदितः यः निजप्रसादः स्वकीयः प्रसादः अनुग्रहः
4: समर्पित
3: तेन प्रसादेन समर्पितः यः पुरुषार्थः अभीष्टं फलं मोक्षो वा अन्यत् किमपि वा ऐहिकं वा आमुष्मिकं वा यत्किञ्चित् फलं तादृशपुरुषार्थेन युक्तस्य पुरुषार्थेन युक्तस्य इत्युक्ते भक्तेभ्यः फलप्रदानवतः फलप्रदानं यः करोति यन्ददेवतया आराधिचालु इवरे अनुग्रहं पण्ड्रार्थम् अप्डि अनुग्रहं पण्डकूडियनर्थम् अथवा सार्थः इत्युक्ते तदानीमपि स एव अर्थः वक्तुं शक्यते अथवा सार्थकः इत्यपि तेन सार्थकः सार्थकं न तथा प्रयोजनवान् सार्थः इति शब्दः अथवा सहितः इत्यर्थेपि भवति अस्तु
4: परब्रह्मणः
3: तादृशस्य अपेरपट परब्रह्मत्वनुडय
4: प्रतिपादकम् उपनिषच्छास्त्रं विचारणीयं परमेश्वरप्रतिपादकम् इति उपनिषच्छास्त्रं
3: तद् विचारणीयम् अग्रे
4: इदं न समाप्तं विचारणीयम् इत्यनेन किम् उच्यते
3: शास्त्रम् आरम्भणीयम् इति तस्मात् तत् तद्विचारात्मकम् इदं शास्त्रम् आरम्भणीयम् इति भवति तावदेव.
4: पूर्वं विधिवाक्यं नास्ति इत्युक्तं
3: सत्यं. विधिवाक्यं मास्तु, शास्त्रम् आरम्भणीयम् इत्यत्र विधिर्नापेक्षते.
4: इत्येव तर्हि तात्पर्यं
3: स्वयमेव एतादृशं परब्रह्मस्वरूपं निष्कृष्टं यदि अवगन्तव्यं तर्हि स च अवगमः विचारं विना न शक्यते इति अस्माभिः स्वयमेव अनुमातुं शक्यते इति कृत्वा तत्प्रतिपादकम् उपनिषच्छास्त्रम्. उपनिषच्छास्त्रं नाम उपनिषद्वाक्यं, वाक्यसमुदायः, तेषां तात्पर्यनिर्णयः अपेक्षते, अन्यथा इदं निर्णेतुं न शक्यते इति कृत्वा तद्विचारात्मकम् उपनिषच्छास्त्रं, शास्त्रविचारः आरम्भणीयः वर्तते इति शास्त्रारम्भप्रतिज्ञा.
4: तन्नियोगरूपचोदनालक्षणस्य तदाराधनविशेषसार्धस्य सार्धरूपस्य
3: विशेषसाधनरूपस्य तत्र साधन इत्यपेक्षते. सार्ध इति सम्यक् लेखनीं स्थापयतु कुत्रचित् यत्र पाठद्वयं यत्र युज्यते अनन्तरं शोधयतु. यत्र पाठद्वयं युज्यते तत्र स्वीकुर्मः, यत्र तु न युज्यते चेत् त्यक्तव्यम्.
4: विशेषसाधनस्य तत्तदर्थवादप्रकटित
3: तत्सर्वं धर्मस्य विशेषणम्
4: इदानीम् आगतं. तत् साधनत्वेन यदस्ति तदपि विचारणीयम् इत्येतदर्थम् तत्तदर्थवादप्रकटित
3: तत्तदर्थवादप्रकाशित अर्थवादः
4: तत्तदर्थवादप्रकटित प्राशस्त्यविलासस्य श्रुत्यादिसम्पादित सकलाङ्गपुङ्खितस्य स्वप्रमाणानुगुणस्मृति इतिहास पुराण अभियुक्त सूक्तिसन्दर्भ
3: पुराण अभियुक्त सूक्तिसन्दर्भ अदोरु ओरु वार्त
4: पुराण अभियुक्त सूक्तिसन्दर्भ कृतोपब्रह्मणस्य
3: कृतो पुनः पठतु सूक्तिसन्दर्भ
4: कृतोपब्रह्मण
3: उपब्रह्मण इति पठिक कूडादु उपब्रह्मणस्य
4: उपब्रह्मणस्य
3: द्वित्वम् इल्ल अंग
4: उपब्रह्मण
3: सुन्ना द्वित्वं वरणं ब्रूं सुन्ना द्वित्वम् इल्ल
4: उपब्रह्मणस्य
3: सन्दर्भकृतोपब्रह्मणस्य
4: सन्दर्भकृतोपब्रह्मणस्य विधिनिषेध विकल्प समुच्चयोत्सर्ग अपवाद बाधाभ्युच्चयादिमतः निखिलपुरुषार्थरत्नाकरस्य परमबोधसाधनस्य भगवतः धर्मस्य विचारानन्तरम् इत्यथ शब्दार्थः निर्णीतः.
3: अथ शब्दार्थः एवं विधः निर्णीयते धर्मस्य विचारानन्तरम् इति. कीदृशस्य धर्मस्य इत्यपेक्षायाम् एकैकं विशेषणं
4: चोदनालक्षणस्य
3: तन्नियोगरूपचोदनालक्षणस्य
4: इत्युक्ते ब्रह्म
3: तत्र जैमिनीयशास्त्रापेक्षया विशेषः. जैमिनी पूर्वमीमांसायां चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः इत्युक्तं. तत्र इवरु एक्स्ट्रा शेर्कर तन्नियोगरूपचोदनालक्षणः तन्नियोगरूपाया चोदना चोदना नाम विधिवाक्यं चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः इति जैमिनीयं द्वितीयं सूत्रं. तस्य अर्थः कः?
4: धर्म
3: चोदना नाम विधिवाक्यं
4: विधिवाक्यं
3: लक्षणशब्दस्य चोदनालक्षणं यस्य सः चोदनालक्षणः इति वक्तव्यं. लक्षणशब्दस्य प्रमापकः इत्यर्थः प्रमाणम् इत्यर्थः. चोदनैव लक्षणं प्रमाणं लक्षणशब्दस्य प्रमाणम् इत्यर्थः. लक्ष्यते अनेन इति लक्षणं करणव्युत्पत्त्या
4: विधिः अनेन प्रमाणेन लक्ष्यते
3: विधिः न धर्मः. धर्मस्य लक्षणं भोः धर्मस्य किं लक्षणम् इति पृष्टे सामान्यतः धर्मस्य लक्षणं किम् इति किं वदन्ति? वेदप्रतिपाद्यत्वं वेदप्रतिपाद्यः प्रयोजनमानर्थो धर्मः. तर्हि वेदबोधितः धर्मः इत्येव खलु. वेदेन विहितः धर्मः, वेदेन कर्तव्यत्वेन यो विहितः सः धर्मः. तर्हि वेदप्रमाणकः धर्मः. वेदः प्रमाणं, वेदो नाम विधिवाक्यं, विधिप्रमाणको धर्मः इत्युक्ते किं भवति? कः अर्थो लभ्यते? विधिवाक्यस्य धर्मत्वम् इति लभ्यते वा?
4: विधेरेव
3: विधिप्रमाणको धर्मः इत्युक्ते किं लभ्यते?
4: विधिप्रमाण
3: विग्रहं वरं
4: विधिः प्रमाणं यस्य धर्मस्य सः विधिप्रमाणकः.
3: अडिना एन अर्थं
4: विधिरेव प्रमाणं भवति
3: यस्य विना विधितान् धर्मं नातम
4: यस्य धर्मस्य इति.
3: अपो ये धर्मं न एन
4: धर्मः इत्युक्ते
3: कर्तव्यं विधिप्रमाणकः इत्यस्य इत्यनेन किं लभ्यते?
4: यस्य वेद पुरुषस्य
3: पुरुषस्य प्रमाणमिल्ल प्रमेयस्य प्रमाणं प्रमेयस्य कृते प्रमाणम् इदमेव एकं लक्षणम् इति स्वीकृत्य योजयतु. विधिप्रमाणको धर्मः, विधिप्रमाणकत्वं धर्मस्य लक्षणम् इति मया लक्षणम् उच्यते इति मन्यताम् योजयतु एकत्र. दर्शयागे समन्वय
4: विधि प्रमाणक विधिरेव प्रमाणं
3: यस्य
4: दर्शयाग सः विधि प्रमाणक
3: भवति खलु तदेव तर्हि विधिबोध्य विधिबोध्यत्वं विधिरूप प्रमाणेन बोध्यत्वं धर्मस्य लक्षणं तदेव जैमिनिना उक्तं चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः इति प्रमाणम् इति पदस्य स्थाने लक्षणशब्दप्रयुक्तः चोदना नाम विधिः
4: विधिः
3: इयं च चोदना कीदृशी भगवदाज्ञारूपा तन्नियोगरूपा भगवान् एव चोदयति अदक
4: अत्र भगवान् एव चोदयति इति अपौरुषेयत्वं स्वीक्रियते
3: अस्तु तदानीमपि भगवान् चोदयति इत्यत्र विरोधो नास्ति भगवतः अभिप्रायः सा अपौरुषेयत्वं तु कथमुक्तम् अपौरुषेयत्वम् अङ्गीक्रियते चेदपि तत्र किम् अनादिपरम्परया इदं वर्तते इति कृत्वा अपौरुषेयत्वं सिद्ध्यति तत्पर्याप्तं तावता இப்படி பண்ணம் இப்படி பண்ணக்கூடாது என்றது யாருடைய அபிப்பிராயம் கேட்டா பகவானுடைய அபிப்பிராயம் ஈஸ்வரனுடைய அபிப்பிராயம் சொல்லணும் அதுக்கு ஒரு ஒருத்தருக்கு பொறுப்பு இருக்கணும் அது யாருடைய அபிப்பிராயம் கேட்டா யாருடைய அபிப்பிராயம் இல்லை அப்படி சொல்லக்கூடாது சுத்த மீமாம்சகாக ததா வதந்தி ஈஸ்வரம் அனங்கீகிருத்தியாபி யோஜயந்தி அத வியாவர்த்தனம் பண்றதுக்காக சொல்றான் தன்னியோக ரூபாயா சோதனா சோதனா இந்த வேதத்தில் இருக்கிற விதிகள் பகவானுடைய சோதனா ஈஸ்வரனுடைய சோதனைன்னு வச்சுக்கணும் ஈஸ்வரனுடைய நியோகம் நியோகம் நாம கர்த்தவியம் இது அபிப்பிராய ஈஸ்வரேண ஈஸ்வர நியோக ரூபாயம் சோதனா கர்த்தவியத்துவேன அபிப்பிராய நியோக கசிய அபிப்பிராய தசிய அபிப்பிராய தன்னியோக
4: பரபிரம்மணம்
3: ஏவம் ஏவம் தரி பரபிரம்மண நியோக ரூபாயா சோதனா சா சோதனா லக்ஷணம் யஸ்ய லக்ஷணம் நாம பிரமாணம் யஸ்ய யாகாதி ரூபஸ்ய தர்மஸ்ய வைதிகஸ்ய தர்மஸ்ய ததாவிதஸ்ய தன்னியோக ரூப சோதனா லக்ஷணஸ்ய அடுத்தது
4: ததாராதன விசேஷ சார்தஸ்ய
3: சாதனஸ்ய
4: சாதனஸ்ய
3: ததாராதன விசேஷ சாதனஸ்ய
4: கர்மானுஷ்டானம் தத்
3: ததாராதனே
4: பிரம்ம
3: பிரம்மணஹ ஆராதனே விசேஷ சாதனம் இல்லையா வைதிக தான தர்மங்கள் விசேஷ சாதனையே சொல்றாருன்னா லோகத்துல நம்ம எது பண்றதா இருந்தாலும் எல்லா வியாபாரமும் பகவத ஆராதனமா பண்ணலாம் அதுக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு கீதையில எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு எதுவுமே பகவத ஆராதனமா பண்ணக்கூடாதுன்னு கிடையாது எல்லா பிரவருத்தியும் பகவத ஆராதனமா பண்றதுக்கு அது புண்ணியகரமா வச்சுருக்கு அதுக்கு பிரமாணம் இருக்கு ஆனால் அதுக்குள்ளேயும் இது விசேஷ சாதனம் வைதிகோயோ தர்ம சா தது ஆராதனே விசேஷ சாதனம் அந்த வைதிக தர்மானுஷ்டானத்தினால பகவத ஆராதனம் பண்றதா இருந்தால் அதுக்கு விசேஷம் அதுக்கு விசேஷ பிரயோஜனம் இருக்கு. பகவத் ஆராதனே யோ விசேஷ சாதன ரூபம் தஸ்ய தர்மஸ்ய தத்ர பஹூரிஹிர் நாஸ்தி தத் ஆராதன விசேஷ சாதன ரூபஸ்ய விசேஷ சாதனஸ்ய இத்தேவ
4: தர்மஸ்ய
3: தர்மஸ்ய அப்புறம்
4: தத்தத் அர்த்தவாத பிரகடித பிராசஸ்திய விலாசஸ்ய அர்த்தவாத
3: தத்தத் அர்த்தவாத பிரகடித பிராசஸ்திய விலாசஸ்ய தத்தத் அர்த்தவாதம்னா அந்தந்த சோதனைக்கு அந்தந்த விதிகளுக்கு தனித்தனி அர்த்தவாதங்கள் இருக்கு எத்தனையோ அர்த்தவாதங்கள் அர்த்தவாதம் தெரியும் இல்லையா ஸ்துதி பரம் வசனம் அந்த கர்மத்தை கர்மாவே ஸ்துதி பண்றது இருக்கிறதும் இல்லாதது எல்லாமே சேர்த்து ஸ்துதி பண்ற மாதிரி இருக்கும் அது எல்லாமே சும்மா சொல்றது இல்ல அதுவும் அதனுடைய ஒரு மகாத்மியத்தை காமிக்கிறது தான் அந்த கர்மாவினுடைய மகாத்மியம் கர்மத்தினுடைய அர்த்தவாதை மாஹாத்மியம் போத்தியதே பிராசஸ்தியம் போத்தியதே தரி தத்தத் அர்த்தவாத பிரகடிதான் இருக்கு அதுல இதுல பிரகாசிதான் இருக்கு அஸ்து உபயம் சாது பிரகாசிதம் எத் பிராசஸ்தியம் தஸ்ய யோ விலாசா பிரகடிதம் அதுவா பிரகாசிதம் பிரகாசிதா பிராசஸ்திய விலாசா அப்படி இருக்கட்டும் பிராசஸ்தியஸ்ய விலாசா பிராசஸ்திய விலாசா தத்தத் அர்த்தவாதை பிரகாசிதா பிராசஸ்திய விலாசா எஸ்ய தர்மஸ்ய சா பிரகடித பிராசஸ்திய விலாச தத்தத் அர்த்தவாத பிரகாசித ప్రకటిత ప్రాశస్త్య విలాస
4: తాదృశస్య
3: ధర్మస్య
4: శ్రుత్యాది సంపాదిత సకలాంగ పుంఖితస్య
3: శ్రుత్యాది సంపాదిత సకలాంగ పుంఖితస్య అంగ విశిష్టస్య అంగైః పరిపూర్ణస్య
4: శృతి ప్రతిపాదితాని యాని అంగాని
3: శృతి ప్రతిపాదితం చున్నాల్ సాధారణంగా శృతి వేద వాక్యం అర్థం లేదు శృతి లింగ వాక్య ప్రకరణ స్థాన సమాఖ్యానం అద అంగాంగి భావత్తే சொல்லக்கூடிய ஆறு பிரமாணங்கள் பூர்வமீமாம்சையில் இருக்கு அது அதுதான் இங்க ஸ்ருத்தியாதிகள்ன்றதுனால எடுக்கணும் ஸ்ருதி ஸ்ருதியோ லிங்கமோ வாக்கியமோ பிரகரணமோ ஏதோ ஒரு பிரமாணத்தினால அங்கங்கள் தெரியறது அப்ப ஸ்ருத்தியாதி சம்பாதித சகல அங்க குங்கிதஸ்ய குங்கிதஸ்ய தேன யுக்தஸ்ய
4: ஸ்வப்ரமாண அனுகுண ஸ்மிருதி இதிஹாச புராண அபியுக்த சூக்தி சம்வாத
3: சம்வாதம் இருக்க
4: சந்தர்ப சூக்தி சந்தர்ப
3: இப்போ இந்த தர்மத்தை உபபிரம்மணம் பண்றது உபபிரம்மணம் பண்றதுன்னா இன்னும் வர்த்தனம் பண்றது வர்த்தனம் பண்றதுக்கு நிறைய இப்ப வேத வாக்கியத்தில் இருக்கிறதும் மட்டும் பார்த்துட்டு நம்மளுடைய அனுஷ்டானம் நடக்கிறதுன்னு சொல்ல முடியாது இன்னும் எத்தனையோ ரிஷிகள் அப்படின்னா வேதத்தை அனுசரிச்சுட்டுதான் ஆனா நமக்கு இப்ப தெரியாது எத்தனையோ சாகைகள் இப்ப கிடையாது அப்ப அந்தந்த சாகைகளை பார்த்துட்டு ஒரு சாகையில் இருக்கிறது இன்னொரு சாகையில் இருக்காது எல்லாம் சேர்த்து உபசம்ஹாரம் பண்ணி ரிஷி விரச்சிதமான ஸ்மிருதிகள் இருக்கு மன்வாதி ஸ்மிருதிகள் இருக்கு புராண இத்திஹாசங்கள் இருக்கு இதுல எல்லாம் சர்வத்திர அஸ்மாதி தர்ம அவகந்தும் சக்கியது தரிஹி ஸ்வப்ரமாண அனுகுண ஸ்வப்ரமாணம் ஸ்வம் தர்ம ஸ்வப்ரமாணம் மூல பிரமாணம் என்ன வேதம் ஏன்னா அது சூத்திரம் இருக்கு சோதனா லட்சணோர்த்தோ தர்மம் இருக்கு இல்லையா அது விட முடியாது எந்த ஒரு தர்மமா இருந்தாலும் அது வேத பிரதிபாத்தியமா தான் இருக்கணும் நம்மளால ஊகிக்க முடியாது ஏதோ அதிர்ஷ்டம் அதிர்ஷ்டத்வாரா காரியகாரண பாவம் வக்தவியக்கரும் அப்பதான் தர்மம்னு சொல்ல முடியும் இந்த இப்படி பண்றதா இருந்தா இப்பேற்பட்ட பலன் சொல்லணும்னா அது அஸ்மாபீர்ணம் நிர்ணயம் சிக்கியதே இப்படி பண்றதா இருந்தா பலமா அப்படி பண்றது தெரியாது திருஷ்ட பலமா இருந்தால் கண்டுபிடிக்க முடியும் இது வந்து அதிர்ஷ்டத்வாரா ஒவ்வொரு கர்மாவுக்கும் அதிர்ஷ்டத்வாரா பலம் சொல்லும் பொழுது அந்த அதிர்ஷ்டம் அப்பிரத்யமா இருக்கிறதுனால அதிர்ஷ்டம் அதிர்ஷ்டமா இருக்கிறதுனால அதிர்ஷ்டத்வாரகா காரியகாரண பாவம் அதிர்ஷ்டத்தை வச்சுட்டு எங்க வந்து காரியகாரண பாவத்தை சொல்லணுமோ அந்த காரியகாரண பாவத்தை நம்மளால யோசிக்க முடியாது அது வேதம் தான் சொல்லணும் ஒரு ரிஷி சொல்றதா இருந்தா கூட ரிஷிக்கும் யோசிக்க முடியாது ரிஷியும் வந்து எப்படி அதை கண்டுபிடிச்சிருக்கார் வேத வாக்கியத்தை பார்த்துட்டுதான் அந்த வேத வாக்கியம் இப்ப இல்லாம இருக்கலாம் ஆனால் ஏதோ ஒரு காலத்துல இருந்திருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ எந்த ஒரு ரிஷி எந்த தர்மத்தை சொல்றதா இருந்தாலும் அந்த தர்மம் ஏதோ ஒரு வேத வாக்கியத்துல ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டிருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் தரிஹி சர்வசியாபி மூல பிரமாணம் வேத ஏவ வேதானுசாரி வேதானுசாரித்வாத் ஸ்மிருதீனாம் பிரமாணியம் வேதானுசாரித்வாத் வேத விரோதே சதி உபேட்சணியம் பவதி அப்ப ஸ்வப்ரமாண அனுகுண ஸ்வப்ரமாணம் வேத ஸ்வம் தர்ம தசிய மூல பிரமாணம் வேத தது அனுகுணா எங்க எங்க அன்வயம்
4: அனுகுண ஸ்மிருதி
3: ஸ்மிருதி இதிஹாச புராண அபியுக்த சூக்தி சந்தர்ப தது அனுகுண ஸ்வப்ரமாண ஸ்வப்ரமாணஸ்ய அனுகுண அனுகூல அதுவா தது அனுசருத்திய ரசித
4: ஸ்மிருதி
3: ஸ்மிருதிர்வா இதிஹாசோ வா புராணம் வா அபியுக்த சூக்தி சந்தர்ப்போ வா அபியுக்த சூக்தி பிராமணிக ரிஷி இல்லாட்டா கூட நம்ம பெரியவா சொல்றதும் கூட எடுத்துக்கிறது இல்லையா சிஷ்டாச்சார பிராப்தாக தர்மாக அபி சந்தி அபியுக்த சூக்தி அபியுக்தைஹி உக்தம் இத்தம் குருவதி அந்த தர்மானுஷ்டானத்தோட இருக்கிறவா அலூக்ஷாக தர்ம காமாக ஏசி ஹூன் இருக்கு இல்லையா தைத்திரியத்துல ஏ தத்திர தார்மிகாக வர்த்தந்தே தேஷாம் அபிப்பிராயோபி அஸ்மாபி கண்யதே இல்லைன்னா முடியாது எல்லாமே வாக்கியத்தை பார்த்துட்டு தான் பண்றதா சொல்ல முடியாது இல்லையா வாக்கியங்கள் இருக்கு நிறைய இருக்கு சில விஷயங்கள் எத்தனை வாக்கியங்கள் பார்த்தாலும் நமக்கு தெரியாது அப்ப அபியுக்தால் என்ன சொல்றாரு பார்க்கணும் சிஷ்டா சிஷ்டாக கிம் வதந்தி சிஷ்டாச்சார பத்ததி கதம் வருத்தது அதுவும் அனுசரிச்சுட்டுதான் இப்ப அந்த வாக்கியங்கள் பார்த்துட்டு டைரக்டா நம்ம ஒன்றும் பண்றது இல்லை அவன் பண்ணவும் முடியாது அந்த வாக்கியத்தை அனுசரிச்சு சிஷ்டால் எப்படி பண்றாரு பார்க்கணும் அப்ப அவளை கேட்கணும் இல்லையா நம்மளே வாக்கியம் எப்படி இருக்கு நான் அப்படியா பண்றேன் சொல்ல முடியாது அது சுவாதந்திரம் கிடையாது நமக்கு தரி அபியுக்த சூக்தய தத்ர அபேக்ஷியந்தே தது லிகித ரூபாக வா வாச உச்சியமான ரூபாக வா பவேயு சூக்தய सूक्ति सन्दर्भ सूक्ति सन्दर्भ नाम सूक्तीनां प्रसंग समुदाय एतैः सर्वैः धर्मस्य उपबृंहणम् बहुधा कृतमस्ति வர்தனம் நம்ம போஷணம் ஏற்கனவே இல்லாத தர்மம் புதுசா கொண்டு வந்திருக்குன்னு நினைக்க வேண்டாம் அது எல்லாமே என்ன சங்கிரகம் பண்ணி புஷ்டமா வச்சிருக்கு எப்படி தர்மம் எது தர்மம் எது அதர்மம் கரெக்டா தெரியும்படியா இப்போ லோகத்தில் வந்திருக்கு ததாவிதஸ்ய தர்மஸ்ய அப்புறம்
4: விதி நிஷேத விகல்
3: அது இது இது பகுரீஹி தான் இதெல்லாமே பகுரீஹி தான் ஸ்வப்பிரமாணேன ஸ்வப்பிரமாணஸ்ய அனுகுணாக ஏ ஸ்மிருதி இதிஹாச புராண அபியுக்த சூக்தி சந்தர்ப்பாஹ தைஹி கிருதம் உபபிரம்மணம் யஸ்ய தர்மஸ்ய சஹ தர்ம கிருதோபபிரம்மணஹ தத் கிருதோபபிரம்மணஹ தஸ்ய
4: யஸ்ய தர்மஸ்ய
3: அப்புறம்
4: விதி நிஷேத விகல்ப
3: சமுச்சய
4: சமுச்சய உத்சர்க அபவாத பாத அபியுச்சயாதி மத
3: தர்மஸ்ய இன்னொரு விசேஷம் விதி நிஷேதம்
4: விகல்ப
3: விகல்ப சமுச்சய உற்சர்க அபவாத அபியுச்சய எல்லாமே தர்ம நிரூபணத்தில் வரும் விதி நிஷேதம் இப்படி பண்ணணும்ன்றது விதி பண்ணக்கூடாது நிஷேதம் இப்படியோ அப்படியோ ரெண்டு விதமா பண்ணலாம் அப்படி இருந்தா விகல்பம் மிளித்துவ கர்த்தவ்யம் இதோ அதோன்னு சொன்னா விகல்பம் ரெண்டுமே சேர்த்துன்னா சமுச்சயம்
4: உற்சர்க
3: உற்சர்க பொதுவா சொல்றது அதுக்கு அபவாதங்கள் இருக்கும் எல்லா எல்லா சாஸ்திரத்திலயும் இருக்கு தர்மசாஸ்திரத்திலயும் இருக்கு
4: விதினா சாக்கம் சாமியம் நாஸ்தி உத்சர்கஸ்ய நிஷேதஹ அபவாத
3: விதி விசேஷஹ ச உத்சர்க விதி அபவாதஹ அபவாதஹ அபவாத விதிரேவ பரந்து அபவாதம் பரித்யஜ்ய உத்சர்கஹ ப்ரவர்த்ததே இத்யஸ்தி அஸ்தி கலு வியாகரணே அஸ்தி சர்வத்ர அஸ்தி மயா உதாரணம் விசிஷ்ய நோக்தம் தாவே பஹூனி உதாரணானி பவந்தி யதாஹவனீயே ஜுஹோதி இதி உத்சர்கஹ பதே ஜுஹோதி இத்ய அபவாதஹ எவம் ஜுஹோதி மீமாசையும் அஸ்து ஏம் ஆசேஸ்து உதாரணம் சொல்ல இவர் சொல்லியிருக்க விஸ்தாரமா சொல்லியிருக்க அபியுச்சய அபியுச்சயன சமுச்சயஸ்ய கஷ்டன விசேஷ இது சிந்தியதாம் சமுச்சயஸ்ய கஷ்டித் விசேஷ அபியுச்சய அத்ர ஏகம் பாதித்வா அன்யத் சமுச்சியதே அன்யத் யோஜ்யதே சேத் அபியுச்சய இத்யுச்சதே பாதம் வினைவ அன்யத் யோஜ்யதே சேத் கேவலம் சமுச்சய இது ஏம் ஸ்வல்போ பேதா தாவதேவ ஏவம் ஏவம்
4: விதாஹ
3: புருஷேண அர்த்தத்தை புருஷார்த்தம் எதெல்லாம் கிடைக்கணுமோ அதெல்லாம் புருஷார்த்தம் கிடைக்கணும்னு நமக்கு ஆசைப்படுறதோ அதெல்லாம் புருஷார்த்தம் நிகில புருஷார்த்தி சாதனம் இத்தர்த்தே ரத்னாகர கிடைக்கிற இடம் ரத்னம் கிடைக்கிற இடம் ஆகரம் தர்மம் எதிலிருந்து எதிலிருந்து புருஷார்த்தம் கிடைக்குமோ அது தர்மம் தர்மஸ்ய
4: பரமபோத சாதனஸ்ய
3: பரம பிரபோத சாதனஸ்ய இருக்குது பிராந்திய ஜாஸ்தி இருக்கு அஸ்து பரம பிரபோத பரம பிரம்ம சாட்சா
4: பிரதிசாதனம்
3: தஸ்யாபி இதம் சாதனம் கேவலம் ஐஹிக ஆமுஷ்மிக பல சாதனம் இத்தேதாவன் மாத்திரம் தான் பிரம்ம சாட்சா்காரஸ்யாபி சாதனம் தர்மோ பவதி பரம பிரபோதஸ்ய பரம பரமாத்மா பரமாத்மனஹ யஹ பிரபோத
4: அத்ர புருஷார்த்த ஏவ மோக்ஷஸ்யபி அந்தர்பாவம் கர்த்தும் சக்யதே கிலு பூர்வம் யத்ர விசேஷம்
3: சக்யதே சக்யதே விசிஷ்ய சத்யம் தத்ர அஸ்தி ததாபி விசிஷ்ய எடுத்து சொல்லலாம் இல்லையா இந்த பிரகிருத சாஸ்திரம் தர்த்தம் பிரவத்தம் புருஷார்த்தத்வேன சாமான்யதா உக்தம் சேதபி விசிஷ்ய தரிசனீயம் இது கிருத்வா பரம பிரபோத சாதனஸ்ய இத்யுக்தம் இதஹ ததத்ர அபேக்ஷதே அன்யதா இதானிம் கிமர்த்தம் தர்ம விசாரம் கிருத்வா பிரம்ம விசாரம் ஆரம்பணீயஹ இது விசிஷ்ய கிமர்த்தம் உக்தம் இத்யஸ்ய சமர்த்தனம் கர்த்தவ்யம் கலு தர்ம விசாரேண தர்மானுஷ்டானம் சித்யதி धर्मानुष्ठानेन चित्तशुद्धिः सिध्यति. चित्तशुद्धौ सिद्धायां सत्यामेव ब्रह्म साक्षात्कारो भवति इति कृत्वा तादृश साक्षात्कारं प्रत्यपि परम्परया धर्मविचारस्य कारणत्वम् अस्ति, प्रयोजकत्वम् अस्ति. तस्मात् धर्मविचारं कृत्वा ब्रह्मविचारः कर्तव्यः. ब्रह्मविचारोऽपि अन्ततो गत्वा ब्रह्मोपासने खलु उपयुज्यते. विचारमात्रेण सर्वं सिद्ध्यति किल, विचारोऽपि परम्परया एव साधनं साक्षात्कारं प्रति. विचारेण किं भवति, साक्षात् किं भवति इत्युक्ते असन्दिग्धः निश्चयो भवति तावदेव. साक्षात्कारस्तु पश्चात् ध्यानादिना उपायान्तरेण सम्पादनीयं वर्तते. तावदेव तद्धर्मविचारोऽपि तथैव. धर्मविचारः कृतः इत्येतावता धर्मो न सिद्ध्यति, विचारानन्तरम् अनुष्ठेयम् इति. सर्वत्र अनुष्ठानापेक्षा तु अस्ति.
4: साधनस्य भगवतः धर्मस्य
3: भगवतो धर्मस्य भगवतः इति पूजार्थं यथा चेतनस्य विशेषणं दीयते तद्वत् चेतनत्वम् आरोप्य धर्मस्यापि भगवतः धर्मस्य भगवान् धर्म इति भगवतो धर्मस्य इति विशेषणं दीयते.
4: विचारानन्तरं
3: तादृशस्य धर्मस्य इत्यर्थपट्ट धर्मत्वनुडे विचारं पण्डतक अपरं विचारानन्तरं इति
4: अस्मिन् अर्थे
3: अथशब्दः इति इत्थम् अथशब्दस्य अर्थो निर्णीतः.
4: तर्हि इदं विधिवाक्यं नापेक्षते इति मतद्वयम् अस्ति स्वीकृतं.
3: मतद्वयं नास्ति, कुत्र मतद्वयं वर्तते
4: इत्युक्ते स्वाध्यायो ध्येतव्यः इति इदं साङ्गवेदाध्ययनं तावत्पर्यन्तम् अस्य अर्थः अस्ति.
3: न, साङ्गवेदाध्ययनं भवतु, साङ्गवेदाध्ययनं किमर्थं विधीयते स्वाध्यायो ध्येतव्यः इति विधिना
4: इत्युक्ते
3: इत्यत्र मतभेदः. तत्र पूर्वमीमांसकानां केवलमीमांसकानां मतं किम् इत्युक्ते अर्थज्ञानं निश्चयात्मकम् अर्थज्ञानम् उद्दिश्य वेदाध्ययनं कर्तव्यम्. நிச்சயாத்மகம் அர்த்தஜானம் உத்திஷ்ய வேதாத்தியனம் கர்த்தவியம்னு சொன்னால் என்ன கிடைக்கும்? நிச்சயாத்மகமான அர்த்தஜானம் எப்பேற்பட்ட அத்தியனத்தினால சித்திக்குமோ அப்பேற்பட்ட அத்தியனம் தத்திர விதீயதே இது பவிஷ்யதி.
4: தரிஹி
3: ந கேவலம் சாங்கவேதாத்தியனம், சாங்கவேதாத்தியனேன கிம் பவதி, அர்த்த பிரதீதி மாத்திரம் பவதி நது நிச்சயம். साङ्गवेदाध्ययनेन अर्थप्रतीति मात्रं भवति, संशयोऽपि भवति, संशयसहिता प्रतीतिर्भवति न तु निश्चयः. तर्हि निश्चयोऽपि यदि निश्चयपर्यन्तं ज्ञानं यदि तत्र विधौ उद्देश्यं भवति तर्हि सः निश्चयः केन भवति? मीमांसया भवति, मीमांसां विना न भवति इति कृत्वा वाक्यार्थविचारात्मिका मीमांसा अपि तत्र कर्तव्या इति अर्थाल्लभ्यते. तर्हि सः विधिः अर्थ निश्चयात्मकम् अर्थज्ञानम् उद्दिश्य साङ्गवेदाध्ययनं विदधता तेन वाक्येन मीमांसाशास्त्राध्ययनं द्वारीकरोति. भाषा अवगम्यते वा? मीमांसाशास्त्राध्ययनं द्वारीकरोति. अपिना मीमांसाशास्त्राध्ययनं द्वारमा वच्चण्डदा इद विधि प्रवर्तिक्यम्. अन्त मीमांसाशास्त्राध्ययनं नडूलिरुक्कणम् मीमांसा. மீமாம்ச கிடையாது, வாக்கியார்த்த விசாரம் கிடையாதுனால் நிச்சயாத்மக ஞானம் வரப்போறதில்ல. அதனால அயமேவ விதி சுவாத்தியாயோத்தேதவியா இது விதிரேவ அர்த்தாத் மீமாம்சாஸ்திராத்தியனம் ஆரம்பம் பிரயோஜயதி. மீமாம்சாஸ்திராத்தினுடைய ஆரம்பம் சொன்ன கேவலம் ஜைமினிய மீமாம்சை மட்டுமில்ல, ரெண்டுமே பூர்வ மீமாம்சையும் உத்தர மீமாம்சையும் இதுமபி வாக்கியார்த்தாய வாக்கியார்த்த விசாரா சோபி வாக்கியார்த்த விசாரம். தரி வாக்கியார்த்த விசாராத்மகம் யத் சாஸ்திரத்வயம் அதுவா ஏதேஷாம் மதரீத்யா ஏகம் சாஸ்திரம் தத் ஆரம்பணியம் இது கதம் சித்தியதி ஸ்வாத்யாயோத்தேதவ்யா இதி விதிபதா இதி பூர்வமீமாம்சகானாம் மதம்.
4: தத்ர பூர்வம் கண்டிதம்
3: பாமதீகாரஸ்ய அபி மதம். பாமதீகாரஸ்ய அத்வைதினா அத்வை வாசஸ்பதி மிஸ்ரஸ்ய அத்வைதினா அத்வைத ஏகதேசினா மதம். அத்வைதி ஏகதேசினா கிமர்த்தம் அத்வைதினாம் மத்தியே ஏகதேசினா இத்யுக்தே விவரணகாராஹ அபி தத்ர சந்தி அத்வைதே. தேஷாம் மதம் தூ ததா ந, தேஷாம் மதம் தூ ஸ்ரீகண்டாச்சாரியாணாம் இதானி யத் மதம் ததேவ. ஸ்ரீகண்டாச்சாரியே கிமுக்தம்
4: சுக்தே இதம் ததர்த்தம் விதிர்ன அபேக்ஷதே ஸ்வயம் ப்ரவர்த்ததே.
3: ஏவம் மீமாம்சா நம பூர்வமீமாம்சா வா பவது உத்தரமீமாம்சா வா பவது உபயத்ரபி பூர்வமீமாம்சா உத்தரமீமாம்சா சி மிலித்வா ஏகம் சாஸ்திரம் உபயவிதோபி விசாரஹ விதிம் வினைவ கர்த்தவ்யஹ இதி அஸ்மாபிஹ ப்ராப்தும் சக்யதே. அஸ்ம விதிர்ன அபேக்ஷதே இதி. तत्रापि नापेक्षते अत्रापि नापेक्षते
4: तस्मात् स्वाध्यायो भवितव्यः इति इदं वाक्यम् किम् उच्चारण अनुच्चारणपर्यन्तमेव
3: अतः स्वाध्यायोध्येतव्यः इति वाक्यमपि इत्युक्ते प्रथमतः तैः किं खण्डितं स्वाध्यायोध्येतव्यः इति वाक्यं निश्चयात्मकम् अर्थज्ञानम् उद्दिश्य वेदाध्ययनस्य विधायकम् इति यन्मीमांसकैरुक्तं तत् खण्डितं तदेव नास्ति प्रथमतः किं तर्हि इत्युक्ते लाघवेन अक्षरावाप्तिपर्यन्तमेव अध्ययनं तेन वाक्येन विधीयते तर्हि अन्यत् सर्वं न स्यात् इत्युक्ते अन्यत् सर्वं तत्र किम् अर्थादित्यपि न अर्थादित्युक्ते श्रुतार्थापत्या इति न स्वतन्त्रेण अनुमानेन लभ्यते स्वतन्त्रेण अनुमानेन निश्चयात्मक अर्थज्ञानं विना तस्य वाक्यस्य उपयोग एव नास्ति इत्यालोचयता निश्चयात्मकम् अर्थज्ञानं सम्पादनीयम् इति ऊहितुं शक्यते किल अस्तु तत् सम्पादनार्थम् अनेके उपायाः सन्ति वा नास्ति एक एव उपायः विचारः साम्प्रदायिको विचारः सः कर्तव्यः अन्यः उपाय एव नास्ति इति स्थिते
4: तर्हि स्वयं प्रवर्तते
3: स्वयमेव अनुमाय प्रवर्तितुं शक्नोति पुरुषः यत्र पुरुषस्तु स्वयमेव अनुमानेन प्रवर्तितुं शक्नोति तत्र विधिर्नापेक्षते इति अत एव हेतोः द्रष्टव्यश्रोतव्यः इति विधिरपि तत्र नापेक्षते तत्रापि कारणान्तरमपि उक्तं विधित्वं न सम्भवति कुतः अपूर्वविधित्वं न भवति नियमविधित्वं न भवति
4: एवं
3: मानान्तरेण प्राप्तत्वात् अपूर्वत्वं न सम्भवति पाक्षिक अप्राप्तिर्नास्ति इति कृत्वा नियमविधित्वं न सम्भवति
4: यदि नियमविधित्वं न सम्भवति तर्हि परिसङ्ख्यादित्वं
3: न सम्भवति अपि च विकल्प्य वा समुच्चित्य वा किमपि उपायान्तरं न प्राप्तं तस्मात् तत्रापि विधित्वं न सम्भवति स्वाध्यायोध्येतव्यः इत्यस्यापि अर्थज्ञानपर्यन्तम् उद्देश्यं नास्ति तस्मात् विधिरेव न भवति अस्मिन् विषये इत्येव विचारकर्तव्यः इत्यत्र कोऽपि विधिर्नास्ति नापेक्षते च इति तर्हि अकर्तव्यता आयाति विचारस्य इति तु न अवश्यकर्तव्यता तु भवत्येव अवश्यकर्तव्यता एव अवश्यकर्तव्यता लभ्यते अनुमानेन विधिना न अनुमानेन तस्मात् अनुमानेन विचारस्य अवश्यकर्तव्यतां ज्ञात्वा पुरुषः प्रवर्तते इति सम्यक् उपपादयितुं शक्यते तदा आशयः अधुनाल एवं तत्तु प्रसङ्गात् उक्तम् अथ शब्दार्थो निर्णीतः
1: ॐ नमः शिवाय यु आर् लिस्निङ्ग् टु शैवम् .org रेडियोस् 24/7 स्पिरिचुवल् चानल्स् फ्रम् शैवम् .org ॐ नमः शिवाय
5: अथ सामवेदे राणायणी अशाखीयाः
6: आरण्यगानम्
5: आरभ्यते।

0: चतुर्दश प्रथमः।
1: ओम ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम shaivam.org।
1: ओम नमः शिवाय।

0: रिक्तर्पाणिर्न पश्येत राजानं दैवं प्राज्ञम्। खाली हाथ राजा को देखना नहीं चाहिए, मानी राजा के पास जाओ तो क्या करो, कुछ भेंट लेके जाओ, महात्मा के पास जाओ कुछ लेके जाओ, मंदिर में जाओ क्या लेके आओ कि लेके जाओ, लेके जाना चाहिए। रिक्तर पाणी, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इसलिए ये भी आगे आएगा उपनिषद में, समित भार, हाथ में समिता लेके, सगुरु मेवा भी गच्छे समित पाणी ही। अगर गुरु यज्ञ आगादि करता है तो उसके यज्ञ में जो पलाश के लकड़ी जो उपयोग होती है वो लेके जाता है दो चार। इसका अर्थ है कि मैं हर रोज आपके लिए समिधा चयन करूंगा। समिधा माने जो होम में लकड़ी का इस्तेमाल होता है वो मैं हर रोज आपके लिए ले आऊंगा। मैं सर्विस सेवा करने को तत्पर हूं, मानी सेवा की तत्परता दिखाने के लिए हाथ में लकड़ी लेके गए। आप लोग सबने श्री कृष्ण का चरित्र देखा है, सुदामा चरित्र, सुदामा जी और श्री कृष्ण कहां गए थे, जंगल में गए थे समिधा चयन करने के लिए, और वहां बहुत भारी वर्षा हो गई, पूरी रात वृक्ष पर बैठे रहे। तब गुरु जी सुबह ढूंढते ढूंढते गए और अरे अरे कृष्ण अरे सुदामा आवाज लगाए, दोनों कूद के दौड़ के दंडवत प्रणाम किया और गुरुजी इतनी सेवा से प्रसन्न हो गए, ठिठुर गए, खाया नहीं पिया नहीं, भूखे प्यासे पूरी रात मेरी सेवा के लिए गए थे। अब आशीर्वाद दिया किसने, सांदीप ऋषि ने, कि मेरी दी हुई विद्या आपको उपस्थित रहेगी। बहुत बड़ा आशीर्वाद है गुरुजी का कि जो भी मैंने विद्या दी है जब आपको उपयोग करना हो वो आपके दिमाग में बिल्कुल प्रकट हो जाएगी, उपस्थित रहेगी, ऐसा श्री कृष्ण को आशीर्वाद दिया, सुदामा जी को आशीर्वाद दिया। देखो क्या बात है, मान श्री कृष्ण के चरित्र में भी देखा जाता है गुरु की सेवा करते थे। रामचंद्र विश्वामित्र जी की पूजा के लिए पुष्प चयन करने के लिए गए थे, आप देखिए ये सेवा है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब तो सौन कंगीरथ, एक बात यहां शंकराचार्य महाराज कहते हैं, पहले के आचार्य गए हो के न गए हो विधिवत, अभी के और इसके बाद के आचार्य को ऐसे ही आचार्य के पास शिष्य को जाना चाहिए। देहली दीप न्याय से एनोलॉजी, पहले के लोग संध्या काल जब बिजली नहीं थी तो अपने ये जो डोर स्टेप में जिसको कहते गुजराती में उमरो दहली में क्या लगा, दीप लगा देते हैं, वो अंदर को और बाहर को दोनों को प्रकाशित करता है। इसी प्रकार ठीक है, और एक अर्थ ये भी हो सकता है कि सब लोग ने किया है आगे हम भी आगे इस प्रकार से करें। अब सबसे बढ़िया बात आती है, तद्धृति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गुरु के पास जाओ तो प्रश्न रखना चाहिए, शिष्य जाके प्रश्न करता है, ये नहीं कि प्रश्न की बौछार कर दिया। मैंने कई लोगों को देखा प्रश्न पूछते हैं पर उत्तर देने लगे तो सुनते भी नहीं, ये क्या बात है। प्रश्न, संशय और आकांक्षा, इन तीनों में फर्क है। प्रश्न में हम कुछ जानना चाहते हैं, हम पूछते हैं अगर कि गुरुत्वाकर्षण क्या है तो हम जानना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस क्या है जानना चाहते हैं, तो जहां अज्ञान को दूर करना है वहां प्रश्न है। दूसरा होता है आकांक्षा, अ लीडिंग डाउट, लीडिंग क्वेश्चन, मन में आकांक्षा होती है, कोई कहता है जा रहे हैं, कौन जा रहे हैं, राम जी जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, वन में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये सब क्या है, आकांक्षा। तीसरा होता है संशय, ये है कि ये है ये जानने के लिए संशय, पक्का नहीं हो रहा है क्या है, कर्म से मुक्ति होगी कि ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होगी, ये क्या हो गया संशय। आत्मा एक है कि अनेक है संशय। तो यहां इन्होंने प्रश्न रखा है, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वविदं विज्ञातं भवति। महाराज अंगी जी बताइए, क्या कोई एक चीज ऐसी है जिसको जान लेने पर, पहचान लेने पर सब कुछ जाना सा हो जाता है? ये प्रश्न रखते हैं हमारे शौनक जी। हे भगवः भगवन् सर्वं यदिदं विज्ञेयं विज्ञातं विशेषेणं ज्ञातं अवगतं भवति एकस्मिन् ज्ञाते सर्वविद् भवति। अब कहते हैं ये प्रश्न आया कहां से, प्रश्न का कारण क्या है देखते हैं। शिष्ट प्रवादम माने बड़े बड़े विद्वान बैठ के प्रश्न करते हैं, चर्चा करते हैं कि भाई अगर इसको जान लो तो सब कुछ ज्ञातता हो जाएगा, एक ही चीज है जिसको जानने पे और कुछ जानना बाकी नहीं रहता है, जिनको प्राप्त करने पर सब कुछ प्राप्त हो जाता है, इस प्रकार की चर्चा किन्होंने सुनी है, शौनक ने और विद्वानों से सुनी है, सत्संग में सुना है, इसलिए प्रश्न उनके मन में आया है। शिष्ट प्रवादम श्रुतवां शौनकः तत् विशेषं विज्ञातु कामः सन कस्मिन्नु इति वितर्कयन् प्रपच्छ। उन्होंने सुन रखा है पर उनको मालूम नहीं है, उसको अच्छी तरह से समझने के लिए क्या कोई एक वस्तु ऐसी है जिसका ज्ञान से सब कुछ विज्ञात हो जाता है। अथवा लोक सामान्य दृष्ट्वा ज्ञात्वैव पप्रच्छ, अथवा लोक दृष्टि से हम लोग सब देखते हैं जीवन में, अगर कारण को जान लेते हैं तो सभी कार्य कारण से अभिन्न है, इस रूप से हम जान लेते हैं। कैसे, यथा सुवर्ण के ज्ञान से, सुवर्ण से बनी हुई सब कुछ चीज सुवर्ण है ऐसे मालूम पड़ जाता है। त्रिभुवनदास भीमजी में जाइए, वहां सब कुछ क्या है, सुवर्ण सुवर्ण सुवर्ण, नाम सब अलग अलग है पर आप जानते हैं, अगर सुवर्ण को जानते हैं तो वहां रखी हुई सभी प्रकार के आभूषणों को सुवर्ण के रूप में जान जाते हैं। एक बार पानी को जान लिया, पानी से बनी हुई सभी चीज क्या है, पानी है, भाप क्यों ना हो, बर्फ क्यों ना हो, पानी क्यों ना हो, एनी फॉर्म इट इज व्हाट, वाटर, नदी क्यों ना हो, समुद्र क्यों ना हो, वर्षा क्यों ना हो, ऐसा देखा गया है कि उपादान कारण के ज्ञान से, उपादेय जो भी उससे बना है उसका ज्ञान हो जाता है। अब आप जरा और गंभीरता में देखिए प्रश्न की गंभीरता में, हमारा सबका जो अनुभव है, अनुभव प्रमाण नहीं माना जाता है, जितना अनुभव है वो विचार करने पे सच्चा भी नहीं होता है, experience does not amount to knowledge. Understand. हमारा सबका अनुभव है सूर्योदय होता है सूर्यास्त होता है, है कि नहीं? क्या सूर्य उदित होता है?
1: ना, है ही।
0: क्या सूर्य अस्त होता है?
1: ना।
0: पृथ्वी घूम रही है और हमारी भ्रांति होती है कि सूर्योदय होता है। इसको कहते हैं कि हमारा अनुभव कुछ हो रहा है और हमारा ज्ञान क्या है उससे विपरीत भी हो सकता है। मिराज वाटर पानी दिख रहा है, वहां मृग जल दिख रहा है, जल दिख रहा है, और हम जानते हैं सच्चा नहीं है। इसलिए अनुभव का अर्थ वो सब सच्चा हो ये ठीक नहीं है। पहले अनुभव की बात करते हैं आपके और हमारे। हम सबने जीवन में देखा है कि कोई भी कार्य हो, बनी हुई चीज हो, जैसे एक टेबल हमारे सामने है, उसको बनाने के लिए दो चीज चाहिए, ऐसे दो से ज्यादा चाहिए पर दो मुख्य माने, एक तो लकड़ी चाहिए और बनाने वाला सुथार चाहिए, कारपेंटर, ब्रेड एंड बेकर, सुवर्णकार और सुवर्ण, जहां भी देखते निमित्त कारण है, समझदार व्यक्ति मनुष्य और बनाने वाली चीज उससे भिन्न है। ये पुष्प अलग है और बनाने वाला माली अलग है, ये पुस्तक अलग है जिससे बनी है और प्रिंटर अलग है। तो दो चीज होती है, उपादान कारण और निमित्त कारण, सब कार्य के प्रति ये दो कारण है। अब दूसरा हमने देखा है कि दोनों अलग अलग होते हैं। सुतार या ये बनाने वाला अलग है और लकड़ी अलग है, ये बहुत अच्छा भी है। हाँ, अगर सुवर्णकार और सुवर्ण दोनों एक होते तो घर में एक माला लाओ सुवर्ण की तो क्या आ जाएगा? सोनी आएगा, उसकी पत्नी आएगी, उसकी सासू सबसे पहले आएगी, पूरा कुटुंब घर में आ जाएगा। अच्छा है, अलग अलग है, यू कांट बाय एनीथिंग आफ्टर वर्ड। तो दुनिया में उपादान कारण निमित्त कारण क्या है? भिन्न भिन्न। अभी देखो मैंने कहा ना, ये अनुभव ज्ञान नहीं हो सकता है। लोग यहां से गड़बड़ करते हैं, दुनिया के जितने विचारक हैं, जितने दर्शन है, वेदांत दर्शन नहीं है, याद रखना, वेदांत प्रमाण है। उन्होंने सबने ये कहा कि जैसे दुनिया जगत में उपादान और निमित्त कारण अलग अलग है, ऐसे जगत का भी कारण जो है निमित्त कारण और उपादान कारण क्या होना चाहिए? दोनों अलग अलग होना चाहिए। यहां से प्रत्यक्ष को देखकर परोक्ष ब्रह्म के लिए ऐसा अनुमान करना ये बिल्कुल बड़ी मुंगी क्या थी, गलती थी, मिस्टेक थी। और वो लोग कहते हैं, फिर आर्गुमेंट करते हैं, अगर दोनों एक है तो जगत जड़ है और जगत कारण अगर मसाला भी उसका बना हुआ है तो वो भी जड़ हो जाएगा। उनको डर है कि भगवान जड़ हो जाएंगे, इसलिए आप देखिए वो लोग कहते हैं गॉड इन हैवन क्रिएटेड दिस वर्ल्ड, ईश्वर ने स्वर्ग में बैठ के ये जगत बनाया। जैसे ऋषिकेश में रोटी बनाते ना, ऐसे ऐसे करके रोटी बना के डालते गए पृथ्वी, आज चंद्रमा ऐसे बना के, ऐसी कल्पना बच्चे जैसी कल्पना करते हैं। अगर सृष्टि से भिन्न सृष्टा होगा तो सृष्टि के बाहर होगा क्या सृष्टि के अंदर होगा? सृष्टि के बाहर क्या होगा? आकाश के बाहर कुछ होता है? हाँ स्वामी जी, यहां है, तुम्हारे अंदर हो सकता है आकाश, पर बाहर नहीं हो सकता है। इस प्रकार से लॉजिकल फैलेसिस, तर्क असंगत हो जाएगा। और ये बात कोई भी प्रत्यक्ष मूलक नहीं है, ये बात सिर्फ औपनिषद है, ये वेदांत से प्राप्त है, वेद से प्राप्त है कि जगत कारणम ब्रह्म उपादान कारण भी वही ब्रह्म है और निमित्त कारण भी वही ब्रह्म है। जन्माद्यस्त अस्य जगत जन्म स्थिति भंग यस्मात् ब्रह्मण है, जिस ब्रह्म से ये जगत की उत्पत्ति स्थिति लय होता है वही ब्रह्म है। तद विजिज्ञासस्व उसको जानो, बहुत बड़ी बात है। इसलिए ये प्रत्यक्ष मूलक अनुमान से सिद्ध नहीं है, श्रुति से प्राप्त है कि जगत कारणम ब्रह्म एक है। इसके विषय में कौन प्रश्न कर रहा है? शौनक्षी, वो एक है। अब दूसरी बात देखिए, जहां जहां सुवर्ण से बनी हुई माला होगी वहां वहां कौन होगा? सुवर्ण होगा। क्या सुवर्ण की माला सुवर्ण से दूर जा सकती है? नहीं। आपको अगर सुवर्ण देखना है तो किसको देखना पड़ेगा? माला को देखेंगे, सुवर्ण का दर्शन हो जाएगा। और वहां दो है कि एक है?
1: एक ही है, सुवर्ण।
0: सुवर्ण ही है। आप देख रहे हैं माला को, पर सचमुच में माला को देख रहे हैं कि सुवर्ण को देख रहे हैं?
1: सुवर्ण।
0: ऐसा लगता है कि माला को देख रहे हैं, पर देख किसको रहे? सुवर्ण को ही है। इसलिए ये पूरा जगत ही ब्रह्म है, और जिस जगत का अनुभव शब्द स्पर्श रूप रस गंध के रूप में हो रहा है वही क्या है? ब्रह्म है। यद्यत चक्षुर्भ्याम पश्यति तत्तत् ब्रह्म, यद्यत श्रोत्राभ्याम शृणोति तत्तत् ब्रह्म। तो महाराज माला सुवर्ण है? सुवर्ण माला नहीं है। समझ में आता है? अगर सुवर्ण माला है तो सोने की कोई जरूरत नहीं है। जहां जहां सुवर्ण है वहां माला है, कि जहां जहां सुवर्ण की माला है वहां सुवर्ण है?
1: सुवर्ण की माला है।
0: वाह, है ना। सुबह तो थोड़ा खोपड़ी चलाना पड़ता है। वेरेवर देर इज द गोल्डन चेन गोल्ड इज, वेरेवर गोल्ड इज गोल्डन चेन नीड नॉट बी, है कि नहीं? इसलिए माला सुवर्ण है, सुवर्ण माला नहीं है। जगत ब्रह्म है, ब्रह्म जगत नहीं है। समझ में आया? वाह, इतना बड़ा बात पूछते हैं। अभी देखो, एक टन कम नहीं पाते, एक टन सुवर्ण से एक एक ग्राम की एक लाख माला, दो लाख माला बनाई है ना। फिर वो ज्वेलर ने बताया, आइए स्वामी जी प्रेमपुरी के लिए आप कुछ ले जाओ, यहां से आप यहां से एक चीज ले जाओ, आपको जो भी पसंद आए इसमें से एक ले जाओ। मैंने कहा हमको ज्यादा प्रेमपुरी के लोगों को ज्यादा लोभ नहीं है, मैं सिर्फ सोना ले जाऊंगा, माला तुम रखो अपने पास। एक टन के सोने, एक टन सोना कितना होता मालूम है? इतनी माला बनी है, उसमें से मैं सिर्फ सोना ले जाऊंगा, तुम अपनी मालाएं अपने पास रखो। तो उसके पास क्या रहेगा? वो क्या हो जाएगा? वो भी सन्यासी हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। हाँ, अगर मैं सोना ले लो तो उसके पास ठन ठन पाल हो जाएगा। इसलिए अगर सुवर्ण को पहचान लिया तो सब माला को पहचान लिया। सुवर्ण की प्राप्ति सब माला की भी प्राप्ति है। समझ आया? अभी देखो, अगर जगत कारणम ब्रह्म है, उपादान निमित्त कारण अभिन्न है, अगर मैं वो ब्रह्म हूं तो संपूर्ण जगत किससे अभिन्न है? मुझ आत्मा से अभिन्न है। सब कुछ मैं हूं, फिर आपको क्या चाहिए? इसको कहते हैं सिर्फ वेदांत में सर्वात्म भाव की बात है और कहीं भी नहीं है। ये सब मेरा ही आत्मा है। सर्वम आत्मैव अभूत, जिसके लिए सब आत्मा ही होगा, मेरा आत्मा ही है, उसके लिए को मोह कश्यो कहा, शोक मोह नहीं रहेगा, पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी। करनी नहीं है, प्राप्त है ये जानना है, इसको कहता आनंद है। और कोई इससे परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, यही जानने से समग्र विश्व प्रपंच मुझ आत्मा से अभिन्न है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मई पश्यति। तो लघु प्रश्न मानी छोटा सा प्रश्न किसका लगता है? शौनक जी का। पर अंदर क्या है? बहुत बड़ा गंभीरता है। कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति इति। अब तो बहुत खुश हो गए। कौन? अंगी कुरु हो गए। अच्छा प्रश्न है, और श्रोता भी क्या है, प्रबुद्ध है, समझदार है। उन्होंने शुरू किया द्वे विद्ये वेदितव्य। दो विद्या है जो सबको जाननी चाहिए, सब मनुष्य को दो विद्या का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। कौन सा है? पराच अपराच, पराविद्या अपराविद्या। पराविद्या क्या है? जो परमात्मक विषय विद्या, जिसमें परमात्मा का ज्ञान हो। हमको प्रातस्मरणीय स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने एक बार बताया, तब हमको ख्याल आया कि सभी उपनिषद देख लेना बेटा, कहीं भी परमात्मा शब्द नहीं मिलेगा। आत्मा वा इदम अग्रे आसीत, सब जगह क्या शब्द है? आत्मा आत्मा। परमात्मा शब्द कहीं भी नहीं है, और जहां जहां परमात्मा शब्द है, परस्मात् अभिन्न आत्मा इति परमात्मा का है। वो परब्रह्म से अभिन्न आत्मा का नाम परमात्मा है। परमात्मा शब्द भगवान के लिए उपनिषद में कहीं भी प्रयुक्त नहीं है। आश्चर्य है। तो यहां कहते हैं जो परब्रह्म के विषय का जो ज्ञान है, परब्रह्म का जो ज्ञान है, उसको कहते हैं पराविद्या। दुनिया में दो ही चीज है, एक तो चैतन्य स्वरूप आप, बोध स्वरूप आप, और दूसरा ये बोध स्वरूप आप जिसके विषय में जानते हैं वो आपके द्वारा प्रकाशित जगत। कॉन्शियस मी एंड व्हाट आई एम कॉन्शियस ऑफ, ओनली टू। आत्मा जो सबको जानता है, और जिसका ज्ञान होता है वो क्या है? अनात्मा। दो ही है, जानने वाला आत्मा, जिसको जानता है वो क्या है? अनात्मा। ठीक है, तीसरा कोई है? अगर शंख चक्र गदाधारी पद्मा भी आ गए तो भगवान भी क्या हो जाएंगे? हैं? अगर मैं देखूंगा उनका शरीर भी अनात्मा, मेरा भी अनात्मा, आपका भी अनात्मा, पर आत्मा जो परमेश्वर का है उसको मैं नहीं देख सकता है, तो आत्मा ही रहेगा। यद विदितम, जो भी हो वह अनात्मा है। दो ही पदार्थ, तो देखो उपनिषद क्या है, गीता में भी क्षेत्रम क्षेत्रज्ञ, पुरुष प्रकृति ही, आत्मा अनात्मा, दो ही चीज है। तो ज्ञान भी कितना होगा? दो ही। आत्मा का ज्ञान पराविद्या, अनात्मा का ज्ञान अपराविद्या। क्या बात है, दो ही है, तीसरा संभव नहीं है। स्वामी जी मैं तो कंप्यूटर साइंस का इंजीनियर हूं, कौन सा ज्ञान है? अपरा। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर मीन वाणी, ये सॉफ्टली बोलने वाले लोग, सॉफ्टवेयर फेलोस, सॉफ्टवेयर फेलोस, आई एम सॉफ्टवेयर। ओके, आत्मा अनात्मा, मैं जानता हूं एस्ट्रोलॉजी अनात्मा। यहां तो इतना उपनिषद ने बता दिया, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वण वेद शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंदस ज्योतिषम इति तत्र अपरा, ये सबको अपरा बोल दिया। परा कौन सा है? यया तदक्षरम अधिगम्यते, जिस विद्या से ये आत्मा का ज्ञान होता है वही परा विद्या है। चारों वेद, वेदांग और दुनिया में जितनी विद्या है सब क्या है? अपरा विद्या। और भगवान शंकराचार्य एक बात और बताते हैं, अपरा विद्या अविद्या एव। अपरा विद्या को अविद्या कैसे कहते हैं? क्योंकि जितना हम जानते हैं, कोई भी विद्या का अध्ययन करो इतना जानते हैं कि कितना नहीं जानते हैं। आप जैसे पढ़ते जाओगे तो आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा कि आपको ये मालूम पड़ेगा, अरे अभी इतना पढ़ने का बाकी है, इतना पढ़ने का और बाकी है, हमको तो कुछ मालूम ही नहीं है। इट रिवील्स व्हाट? मोर इग्नोरेंस। और दूसरी बात, अपरा विद्या अपना स्वरूप का जो अज्ञान है उसको दूर नहीं करती है, उसको बनाए रखती है, इसलिए वो क्या है? अज्ञान स्वरूप ही है। बहुत बढ़िया बताया। अभी कल एक दिन और मेरे पास, और कल सुबह परा विद्या क्या है थोड़ा अपरा का निर्णय करके मैं एक मंत्र उपनिषद का सुनाऊंगा आपको। यदा पश्य पश्यते रूक्म वर्णम कर्ता रमीशम पुरुषम ब्रह्म योनिम तदा विद्वान पुण्य पापे विदुय निरंजनम परमम साम्यम उपैति नित्यम। बहुत बढ़िया मंत्र है, कल आपको सुनाएंगे। ओम शांति शांति शांति।
2: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org. Om Shivaya Nama. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Ilayankudi Mara Nayanar Puranam, presented by ശ്രീ സിംഗപ്പൂർ ശങ്കര നാരായണൻ. താങ്ക് യു. ഓം നമ ശിവായ.
3: ഓം നമ ശിവായ. ഭക്തോ, ആജ് ഹം സുനെങ്കേ ഓർ ഏക് നായൻമാർ ഇളയൻകുടി മാരർ കി കഹാനി. യെ തമിഴ്നാടു മേ രാമനാഥ്പുരം ജില്ലേ കെ ക്ഷേത്ര ഇളയൻകുടി കെ നിവാസി ഇളയൻകുടി മാരർ ഏക് സമൃദ്ധ കൃഷക് തേ. മാട്ടി മേ ഹൽ ചലാകർ വേ അമൃതമയ അന്ന പൈദാ കർത്തേ തേ. ഉൻകെ പരിശ്രമ സേ ഖേതി സോന ഉഗൽതി തീ. इलयनकुडी मारर शिव भक्तों के दास थे। प्रत्येक पथिक में उन्हें शिव ही दिखाई देते थे। पथिक को आदर समेत आमंत्रित करते थे और उनका सम्मान पूर्वक आसन प्रदान कर विविध व्यंजनों से युक्त भोजन करवाना ही उनकी साधना थी। इस भांति इलयनकुडी मारर के यहाँ सदाव्रत खुला रहता था। इलयनकुडी मारर के महत्व को उजागर करने के लिए तिल्ले के स्वामी शिव ने शनै शनै यानी कि धीरे धीरे से उनकी धन संप्रदा चिति को निर्धनता में बदल दिया। यह शिव की ही परीक्षा थी। कालांतर में उनकी समस्त संपत्ति समाप्त हो गई, पर उनकी अतिथि सेवा की भावना अभी भी दृढ़ ही थी। यहां तक कि वो नितांत कंगाल हो गए। वर्षा ऋतु ऐसा समय भी आया कि एक दिन वर्षा ऋतु थी, घर में अन्न का दाना भी नहीं था, पति पत्नी दोनों निराहार ही सो गए थे। उस समय शिव एक तपस्वी का रूप धारण कर इलयनकुडी मारर के घर पहुंचे। भक्त ने इलयनकुडी मारर ने उनका स्वागत किया, उन्हें आदरपूर्वक अपने घर में बिठाया और उनके शरीर को स्वच्छ वस्त्र से पोंछकर विश्राम करने को कहा। अतिथि को भोजन देने के लिए घर में एक दाना भी नहीं था, घर में कुछ भी भोज्य पदार्थ नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी से परामर्श किया और रात्रि के अंधकार में भी सुप्रयास कुछ दिन पूर्व बोए बीजों को बटोर कर लाए, छप्पर की लकड़ी काट कर ईंधन जुटाया। वर्षा में भीगते हुए ही घर के पिछवाड़े में उग रहे आधे उगे साग को अंधेरे में टटोल टटोल कर उखाड़ कर ले आए। साग को उखाड़ना मानो पुनर्जन्म रूपी पौध की समूल उखाड़ना था। पत्नी ने अन्न और साग का स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किया। अतिथि को भोजन खिलाने के लिए बरामदे में आने पर एलेन कोरीमारर ने देखा कि एक अद्भुत ज्योति थी। ज्योतिपुंज से एक स्वर उठा, वत्स, मैं प्रसन्न हूं। जीव मात्र की भूख शांत करने में तुम सदैव तत्पर हो। अब चलो मेरे संग। और प्रभु ने सपत्नी अपने दिव्य लोक में ले गए। चकिलर ने इस कथा की महत्व को अद्भुत ढंग से अभिव्यक्त किया है। यदि मारर ने केवल भस्मधारी शिव भक्तों को ही अन्न खिलाया होता तो वह धार्मिक निष्ठा का परिचय होता। प्राणी मात्र के प्रति प्रेम का परिचय उनके धार्मिक भेदभाव को त्याग कर मानव मात्र की भूख मिटाने के नियम से चलता है, चकिलर का कथन है। चकिलर जो कि तमिलनाडु के बहुत बड़े कवि थे, उनका कथन है। राह चलते हर पथिक को शिव का भक्त मानकर मारर अपने घर ले जाते थे और बड़े प्रेम से भोजन कराते थे। तमिलनाडु में प्राचीन काल से ही अन्नदान को महादान माना जाता है। संगम साहित्य की पंक्ति बभुक्षार रोग का समर्थक चिकित्सक और पंच महाकाव्यों में प्रसिद्ध पंक्ति अन्नदाता जीवनदाता है इसी भाव को दर्शाती है। कालांतर में धर्म और संप्रदायों की विभिन्नता होते हुए भी लोग कम से कम अपने धर्म या संप्रदाय के मानने वालों को अन्नदान करना अपना कर्तव्य मानते थे। लेकिन इलायन कोडीमारर ने बिना अपने धर्म या परम या पराय धर्म न जानते हुए भी हर व्यक्ति की भूख को मिटाने का प्रयास किया। इसीलिए वह कहते हैं प्रभु के समस्त भक्त आएं और अन्न ग्रहण करें। इससे यही शिक्षा मिलती है कि धर्म और संप्रदाय के भेदभाव को भूल कर मानवता को अन्न या भोजन खिलाना ही उत्तम संस्कार है। ओम नमः शिवाय।
4: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ shaivam.org रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाय डे। वी नाउ होस्ट मोर देन 25,000 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। इन ऑर्डर टू मेक दीज एक्सटेंसिव रिसोर्सेज मोर एक्सेसिबल एंड बेनिफिशियल टू अवर रेडियो लिसनर्स, वी हैव रीऑर्गेनाइज्ड अवर प्रोग्राम शेड्यूल। திருமுறை மியூசிக் அண்ட் திருமுறை டிஸ்கோசஸ் வில் பி பிராட்காஸ்ட் ஆன் திருநெறிய தமிழோசை. பிலாசபிக்கல் டிஸ்கோசஸ் அண்ட் பெரிய புராணம் லெக்சர்ஸ் இன் தமிழ் வில் பி பிராட்காஸ்ட் ஆன் சிவதத்துவம். ப்ரோக்ராம்ஸ் இன் லாங்குவேஜஸ் அதர் தேன் தமிழ் வில் பி பிராட்காஸ்ட் ஆன் சைவலஹரி. ஆஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் தீஸ் சேஞ்சஸ் தேர் வில் பி சம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் டு ப்ரோக்ராம் டைமிங்ஸ். வி ட்ரஸ்ட் தட் யூ வில் கைண்ட்லி அக்செப்ட் தீஸ் ஷெட்யூல் சேஞ்சஸ் வித் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் பேஷன்ஸ். We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
5: Ambha mane jal, ambhoja mane kamal, pada eva ambhoja, pada ambhoja, yane charan kamal. Bhagwan Shiva ke jo charan kamal hain, bhaja, usi ki tum seva karo. Yedi mrityu par bhi vijay pana chahate ho, te rata rat khata khat chodo, उसके चरण पकड़ो, उसकी सेवा करो, भज सेवायाम सेवा करो, संवर भजा परम सौख्यम ब्रज सुधी। तुम्हारी बुद्धि तो बहुत अच्छी है विद्वानों, लेकिन ये बुद्धि अच्छी होने पर भी कुपात्र में जाता है ना, तो अच्छी भी बुरी हो जाती है, है? छाछ बहुत अच्छी चीज है ना, गुजरातियों के लिए तो बहुत ही अच्छी है, है? छाछ बहुत अच्छी चीज है, शास्त्रकारों ने तो यहां तक कह दिया है, तक्रम सक्रस्य दुर्लभम। ये जो छाछ है स्वर्ग में इंद्र को कभी नहीं मिलता है, है? छाछ पीने के लिए तो गुजरात में आना पड़ेगा उसको, है? खाना खाने के बाद एक गिलास छाछ पी लो, थोड़ा सा नमक और जीरा डालकर सारा भोजन उपशम है, खाया हुआ सब पच गए, समझे कि नहीं? हूं समझे, ये देख लो सुधी, लेकिन वही छाछ, इतना अमृत तुल्य छाछ यदि किसी पित्तल के बर्तन में रखोगे तो क्या होगा, जहर बन जाएगा कि नहीं, मृत्यु का कारण बन जाएगा है। तो अच्छी वस्तु भी कुपात्र में होने पर घातक होता है। तुम्हारी बुद्धि तो अच्छी है लेकिन अभी तक कुपात्र में ही उसका प्रयोग हो रहा है। अरे जड़ मति, जड़ वस्तु के बारे में विचार कर रहे हो, चेतन के बारे में विचार करो ना भाई। घट बना है, पिंड मृत पिंड से बना है कि मिट्टी से बना है, कि मिट परमाणु से बना है, कि पिंड ध्वंस से बना है, कि कपड़ा बनाया है तो कापूस से बनाया है, कि तंतु संयोग से धागा बनाया है, कि धागा संयोग से कपड़ा बनाया है, कि क्या करोगे इन सब से। मृत्यु से बचाने वाला एक ही उपाय है, शंभोर पदाम्भोजम। पदाम्भोजम शंभोर भज परम सौख्यम ब्रज सुखी। बस एक ही भगवान के चरण में उनकी सेवा करो, तुम बड़े आनंद में रहोगे, बड़े सुखी होगे, और ये घोर समनम परिहरति। और भगवान शिव में ही वो क्षमता है कि घोर समन का भी वो परिहार कर देते, यानी मृत्यु को भी उन्होंने जीता है। इसलिए तुम्हारे सामने मृत्यु उपस्थित हो और तुमने यदि शिव के चरण को पकड़ रखी हो तो मृत्यु अपने आप ही डर के मारे भाग जाएगा। मार्कंडेय ऋषि की कहानी सुना है कि नहीं? मार्कंडेय ऋषि, उनकी आयु नहीं थी, बच्चे में खेलने लगे, प्रारब्ध समाप्त तो हो रहा था, विषयों में खेलते खेलते मस्त थे। नारद जी घूमते हुए गए, ए बेटा क्या कर रहे हो? बोले खेल रहे। अरे भगवान का भजन करो। बोले महाराज नारद जी अभी तो खाने पीने मौज कर रहे, खेलने का समय है, जब बूढ़े होंगे तब भगवान का भजन करेंगे। नारद जी ने कहा कि तू बूढ़ा कभी नहीं होगा, तब तो बहुत अच्छा है महाराज। बोले अच्छा नहीं, अभी मरने वाला है, जिंदा रहेगा तब ना बूढ़ा होगा, तू कभी बूढ़ा नहीं होगा, मतलब अच्छा है तो अच्छा नहीं है, मरने वाला है, हैं? कब? बोले दो मुहूर्त का समय है, तेरे प्रारब्ध को मैं देख चुका हूं, दो मुहूर्त के बाद तेरी मृत्यु निश्चित है। बस अब क्या खेलेगा, क्या यमराज आएगा ले जाएगा तेरे को, तो वो तो डर गया, मेरी मृत्यु दो मिनट के दो मुहूर्त के बाद है, ओहो तो अब मैं क्या करूं, अब मुझे कौन बचाएगा, कोई है रक्षा करने वाला? नारद जी ने कहा कि हां संसार में और कोई उपाय नहीं है, मेरी मां नहीं, मेरे पिता नहीं, मेरा भाई नहीं, मेरा बेटा नहीं, फिर कौन रक्षा करेगा? न जनको जननी न च सोदरो न तनयो न च भूरी बलम कुलम अवति कोऽपि न कालवशं गतम् भजतरे मनुजा गिरिजा पतिम्। न जनक, तेरा बाप तो तुझे पैदा तो कर दिया, तेरे को भूख लगी हो तो अन्न खाने देगा है, लेकिन जिस समय यमराज सामने आएगा तेरे बाप उस यमराज के पकड़ से बचाने में असमर्थ है। मां 10 महीने पेट में रखा, बड़ा किया, दूध पिलाया, मलमूत्र की सेवा की, अभी भी भूख लगी हो तो दूध पिला सकती है, लेकिन जिस समय मृत्यु सामने आएगा तेरी मां भी रक्षा नहीं कर पाएगी। तेरा भाई सहोदर, अन्यत्र यदि कोई दुश्मन सामने आए तो उसको मार भगाने में वो मदद कर सकता है, लेकिन तूने ज्यादा संपत्ति कमाई तो उसके भाग हिस्से में मदद कर सकता है, कर सकता है कि नहीं? तुमने ज्यादा कमा ली, अपने नाम पर रखा तो टैक्स पड़ेगा ना, तो क्या करूं, धीरे ज्यादा संपत्ति हो गया, टैक्स पड़ेगा, क्या करूं भैया? बोले आधा मुझे दे दे, टैक्स भी बच जाएगा। मदद कर सकता है कि नहीं बोलो, तैयार हो गए कि नहीं बोलो? तुम्हारा भाई यदि तुम्हारे सामने प्रस्ताव लाएगा तो तुम तैयार हो गए कि नहीं बोलो? भाई की मुसीबत को हेल्प करने के लिए तैयार हो गए कि नहीं? हो जाएगा। मैं भी हो जाऊंगा वो। हाँ, तुम्हारे पास कोई समस्या हो तो तुम्हारे हेल्प करने के लिए मैं भी तैयार हो जाऊंगा। हाँ, पैसा ज्यादा है, टैक्स की कोई समस्या है तो लाओ, ट्रस्ट ट्रस्ट को दे दो, बहुत बड़ा ट्रस्ट है, अन्न क्षेत्र चल रहा है, हॉस्पिटल चल रहा है, गुरुकुल चल रहा है, वृद्धाश्रम चल रहा है, ट्रस्ट को दे दो, आयकर से छूट है ट्रस्ट, तुमको कोई झंझट नहीं, कोई टेंशन नहीं, देख लो हेल्प हुआ कि नहीं, तुम्हारा भाई भी कर सकता है। लेकिन मृत्यु सामने आएगा तो क्या करोगे, कर पाएगा? वो कहेगा बारह, हाँ इससे तो हम मदद नहीं कर सकते तुमको बचाने के लिए, तुमको तो मरना ही पड़ेगा, तुमको ही मरना पड़ेगा। बोले मैं नहीं मरूंगा, किसी और को भेजू? बोले ये नहीं चलेगा वहां, तुमको ही मरना पड़ेगा, तो रक्षा करने वाला कोई नहीं है। आहा, न जनको जननी न च सोदरो न तनयो न च भूरी बलम कुलम। बादाम खा खा के दंडवत रामदेव की तरह करके शरीर को ताकतवर बनाया, एकदम मजबूत बनाया, स्टील बॉडी बनाया, तो ये यमराज आए तो एक मुक्का मारो, तुम्हारी ताकत यमराज के सामने काम नहीं है। उसका एक वज्र पड़ेगा तुम्हारे उसमें तो खत्म। न च भूरी बलम कुलम आवति कोपि न काल गतम बसम बसम गतम। फिर क्या करे महाराज, कोई रक्षा करने वाला दुनिया में नहीं है, भले एक ही है। भजत रे मनुजा गिरिजा पति। हाँ, वो गिरिजा, गिरी पर्वत, तस्मात जाता गिरिजा पार्वती, पर्वतस्य अपत्यम पार्वती, पर्वत की पुत्री पार्वती, गिरी पर्वत उसकी पुत्री पार्वती, गिरिजा पतिम भजा। किसी क्रिश्चियन ने सुन लिया, देखो हिंदुओं लोग भी गिरिजा का भजन करो कहते हैं, तुम लोग भी चलो गिरिजाघर। रामायण में एक चौपाई लिख दिया तुलसीदास जी ने, पार्वती के ब्याह शादी से पहले, सीता के ब्याह से पहले, शादी से पहले वह गिरिजा पूजन गई, ऐसा शब्द आ गया। शादी से पहले वह गिरिजा पूज माने भगवान शिव के पूजा में गई होगी। तो तुलसीदास जी ने लिखा, देखो ये तुलसीदास जी ने भी कहा गिरिजा पूजन, चलो गिरिजा घर। ये सीता भी पार्वती सब ने गिरिजा का, गिरिजा घर का पूजा की है, तुम लोग भी चलो। बेचारे जो अनपढ़ है, तुम लोग तो नहीं जाओगे, बेचारे गांव के जो अनपढ़ है वो तो मान जाएंगे, हाँ तुलसीदास जी ने लिखा है, शंकराचार्य जी ने लिख दिया है, क्या भ्रम फैला रखे हैं संप्रदाय बढ़ाने के लिए। कुछ नहीं, इससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होने वाला। इसी तरह यह शंकराचार्य जी कह रहे हैं, वृथा कंठ क्षोभम बहसी तरसा तर्क वचसा पदाम्बोजम संभोर भज परम सौख्यम रज सुधी। हे विद्वान हो, उस परमात्मा के चरण की सेवा करो, उसी से तुम्हारा कल्याण होगा, वह घोर समन भी करेगा और तुमको आनंद भी देगा, क्योंकि वह संभू है। शंकराचार्य जी आगे कहते हैं, मनस्ते पादाब्जे निवस

अब हाथ तो भगवान शिव के अर्चना में लगी हुई है, हाथ खाली हो तब किताब लाए। तुम कहोगे कि लिखो, इको यणचि इक स्थाने यण स्यात संहितायाम विषय अच परे रहते है? तुम प्रयोग करने लगाओगे, लिखना हो लिखो बोलोगे। और हाथ तो भगवान शिव के अर्चना में लगी हुई है, दूसरा हाथ तो है ही नहीं, तब वहां से हटाकर लाना पड़ेगा तू लिखने के लिए। मैंने वो वहां लगा दी है तो अब मैं क्या लिखूंगा और क्या पढ़ूंगा, बोलो। श्रुतिरपि कथा कर्णन विदौ, तुम कहोगे कि सुन मैं पढ़ा रहा हूं सुन। अब तुम्हारे व्याकरण के परिभाषा पढ़ सुनूंगा कि भगवान शिव की कथा सुनूंगा, बोलो। कान को तो कथा सुनने में लगा दिया है और तुम्हारी क्या सुनूंगा मैं, बोलो। तब अध्याने बुद्धिर, अब जो बुद्धि है वो भी भगवान शिव के ध्यान में लगा दी है। नयन युगलम मूर्ति विभवे, अब तुम कहोगे किताब ठीक से पढ़, पुस्तक ठीक से पढ़, देखकर पढ़, कहोगे कि नहीं है? देखकर पढ़ कहोगे। और आंख तो शिव ध्यान में लगा दिया है और कहां से मैं अक्षर पढ़ूंगा मैं, इसलिए पढ़ने लिखने का काम छोड़ दो महाराज, तुम ही लोग जो करना हो कर लो, हमको मत कहो। तो क्या कहेगा, परेर पर ग्रंथान कैरवा, संसार में अनेक शास्त्र है, अनेक शास्त्रम बहुलाच विद्या, देख लो आयु अल्प है, विघ्न बहुत है, शास्त्र ज्यादा है, विद्या बहुत है, आयु अल्प है, विघ्न बहुत है, क्या करो? तो नीतिकार ने कहा यत्सार भूतम तदुपासनीयम, उस अल्प आयु में बहुत विघ्नों के बीच में रहते हुए तुम्हें क्या करना है, तो बोले यत्सार भूतम, सारे शास्त्र में पढ़कर विद्वान होऊंगा यदि तुम कहोगे तो। शास्त्र पढ़कर जो विद्वान होगे उनके तो हाल बता दिया पहले श्लोक में वो क्या तुम्हारी रक्षा कर पाएंगे ग्रंथ? तो क्या करोगे, अहंकार ही बढ़ेगा, मैंने ये पढ़ा मैंने ये पढ़ा, मैं ये सब विद्वान उसको जानता हूं। ये सार भूतम, सारे शास्त्र का जो सार है, तद उपासनीयम, हमने तो इतना निश्चय कर लिया है सारे वेद वेदांग सारे शास्त्रों का एक ही सार है भगवान शिव, बस परमात्मा। सबका सार क्या है बोलो, परमात्मा। परेर ग्रंथान केरवा परम शिव जाने परमत, और सब ग्रंथों को शास्त्रों को पढ़कर क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, मैंने तो इतना निश्चय कर लिया है कि सबका सार एक ही शिव है, शिव के अलावा और कुछ जानने की जरूरत नहीं, ना व्याकरण जानने की जरूरत है ना न्याय जानने की जरूरत है। परेर ग्रंथान केरवा, शास्त्र रहे पढ़े रहे, पढ़े रहने दो, ये सब कोई मतलब नहीं, प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं, बस एक शिव का ध्यान करो, शिव की सेवा करो। मनस्ते पादाब जे, मन से हमेशा शिव का चिंतन करो और वाणी से शिव की स्तुति गान करो। करो चाभ्यर्चायाम, हाथ से भगवान शिव के ही प्रतिम को की सेवा करो। श्रुतिरपि कथा कर्णन, कान है तो उन्हीं की, क्योंकि उन्होंने दिया है ये सारे साधन, किसने दिया है, शिव ने ही दिया है। ए कोई वैष्णव हो तो ये नहीं कह देना हो कि शिव शिव कह रहा है, विष्णु नहीं कह रहा है, परमात्मा ने दिया है, समझे कि नहीं, मैं बीच बीच में परमात्मा बोल दिया करता हूं, खाली शिव शिव करेंगे तो वैष्णवों को थोड़ा बुरा लग सकता हो, परमात्मा ने दिया है। अब हो गया काम, हमने उस दिन व्याख्या कर दिया था ना परसों, तुम किसका भजन करते हो, कृष्ण का कि परमात्मा का, ये शिव का करते हो कि परमात्मा का, ये क्योंकि परमात्मा पहला है, कृष्ण शिव ये खाली नाम अलग अलग हैं। एक बार कहते हैं अयोध्या के कुछ संत लोग भगवान के दर्शन करने के लिए, बड़ा प्रसिद्ध था, तो वृंदावन चले गए,

वहां जाकर देखा तो राम तो है ही नहीं, द्वारकाधीश में किसके मूर्ति है, कृष्ण की है, राम तो है ही नहीं वहां। बोले अरे ये राम तो है ही नहीं, क्या दर्शन करें। बोले यही राम है भाई, दर्शन करो। नहीं नहीं, राम के हाथ में तो धनुष बाण है, इसके हाथ में तो धनुष ही नहीं है। ले जी ये कौन है, किसी ने कह दिया ये तो कृष्ण है। बोले हम तो राम का दर्शन करेंगे महाराज, कृष्ण का नहीं। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने कहा अरे तू यहां क्यों आया अयोध्या से। बोले भगवान का दर्शन करने आया हूं। बोले कर लिया। बोले नहीं। क्यों, राम तो है ही नहीं तो मैं क्या करूं। कृष्ण ने कहा कि मैं ही तो हूं। बोले तुम तो कृष्ण हो। बोले मैं अयोध्या में राम होता हूं, यहां कृष्ण होता हूं। वही है, मैं वही हूं, नाम फर्क है। अयोध्या में मैं राम होता हूं, यहां कृष्ण होता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा तुम ही हो यहां कृष्ण होकर बैठे हो। बोले हां। फिर वो काशी गए तो काशी में तो न राम है न कृष्ण है, भाई क्या है। अब किसका दर्शन करें भाई, न राम का न कृष्ण का। बड़े दुखी हो गए। वापस जा रहे थे तो भगवान शिव ने कहा कि क्या क्यों आए हो। बोले दर्शन करने आए थे। क्या दर्शन। बोले नहीं महाराज। क्यों। बोले न राम है न कृष्ण है तो क्या दर्शन करें। बोले मैं ही तो हूं भगवान। बोले तुम तो शिव। बोले हां हां, अयोध्या में राम, वृंदावन में कृष्ण, काशी में शिव, हे भगवान मैं ही हूं, खाली नाम फर्क है, मैं वही हूं। काशी में शिव, अयोध्या में राम, वृंदावन में कृष्ण। लियो जी। और द्वारिका में द्वारिकाधीश की जय। लियो जी, वही है भाई, द्वारिका में द्वारिकाधीश। और डाकवर के पास छोड़ जी, लियो जी, सब वही है भाई, कोई फर्क नहीं। भगवान परमात्मा बस एक ही है, नाम आने का। पर ग्रंथान केरवा परम शिव जाने परमत मत, एक ही भगवान शिव को जानता हूं, उसने जो साधन दी है उसी की सेवा में लगाता हूं। क्योंकि परमात्मा शिव का दिया हुआ साधन का जीवों के सेवा में प्रयोग लगाकर उसके साधन का दुरुपयोग करना है कि नहीं, बोलो, दुरुपयोग करना है। हा? जो वस्तु जिसने दी है उसका सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग मत करो। और शिव ने दिया है ये सारे साधन तो उसी की सेवा करने में लगाओ, उसने तुम्हें उसकी सेवा के लिए ये दूंगा तो ये ताकि मेरा सेवा करेगा। हाँ, बाणासुर की कहानी सुनी है कि नहीं, उसके दो हाथ थे और उसकी सेवा करने की बहुत इच्छा थी। प्रतिदिन 1,25,000 पार्थिवेश्वर भगवान शिव की मिट्टी का शिवलिंग बनाता था और 1,604 पूजा आवाहन से लेकर विसर्जन पर्यंत 1,604 पूजा करता था। लेकिन दो हाथ से उसको फुर्सत काम ही पूरा ना हो, मिट्टी लाओ फिर शिवलिंग बनाओ, सब अपने हाथ से करना है ना। तो हम लोग तो कभी पार्थिवेश्वर की पूजा करनी हो तो दो चार मजदूर रख देते हैं, तो मिट्टी लाना, तो शिवलिंग बनाना, तो फूल ले आना, सब दूसरों से करा लेते हैं और कहते हैं कि हमने शिवलिंग की पूजा की। क्या किया तुमने, किया सब दूसरों से, अपने हाथ से करना है। तो करता था, भगवान शिव प्रसन्न हो गए, क्या चाहिए बेटा बोल। तो बाणासुर ने कहा कि महाराज आपने ये दो हाथ दी लेकिन दो हाथ से आपकी सेवा पूरी नहीं कर पा रहा हूं, तो मेरी इच्छा है कि आप मुझे 1,000 हाथ दो ताकि आपकी सेवा में पूरी की पूरी सेवा कर सकूं। भगवान ने कहा कि अच्छा तू मेरी ही सेवा करना चाहता है तो मुझे क्या हर जाए, इसलिए आपको दो हाथ दिया है शिव जी ने। वो शिव जी जानते हैं कि आपको 1,000 हाथ देंगे तो संसार की सेवा करोगे है ना। शिव जी जानते हैं तुमको 1,000 हाथ देंगे तो संसार का ही सेवा करोगे, भगवान की नहीं करोगे, इसलिए उन्होंने दो हाथ दिया है तुम्हें।
और बाकी हाथ चाहिए तो फिर हायर करना पड़ता है तुम्हें, नहीं है? माणासुर को 1000 हाथ दी तो बस बड़ी सेवा करने लगा। भगवान फिर प्रसन्न हो गए, क्या चाहिए बेटा? बोले अभी तक तो मैं पार्थिवेश्वर की सेवा करता रहा आपके प्रतीक का, अब मेरी इच्छा यदि आप प्रसन्न हैं तो ये 1000 हाथ से मैं प्रत्यक्ष आपकी सेवा करूं, मेरे यहां आप आकर बैठ जाइए, प्रत्यक्ष आपके 1000 हाथ से आपकी सेवा करूं। अच्छा तो कर ले भाई, भगवान शिव आ गए। शिव ने कहा कि मैं अकेले तो आऊंगा नहीं, मेरा कुटुंब परिवार है, हाँ? पार्वती भी आएगी। बोले कोई बात नहीं, पार्वती को आने दो, वो मेरी पत्नी उसकी सेवा करेगी, मैं आपकी सेवा करूंगा। बच्चे आएंगे, बोले ठीक है उनको भी आने दो, सबकी हम सेवा करेंगे, आपकी कृपा से सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। शिव जी आगे बैठ गए, डेरा जमा के बैठ गए। अब शाम को बाणासुर उनके शरीर दबा रहा था, हाँ मालिश कर रहा था, शरीर दबा रहा था, सेवा कर रहा था। तो भगवान शिव बड़े खुश हो गए, बेटा अब क्या इच्छा है तुम्हारी बोलो। तो बोले महाराज आपकी बड़ी कृपा है, मेरी हर इच्छा पूरी की है आपने, 2 हाथ से 4 हाथ, 4 हाथ से 1000 हाथ, सब कुछ आप मुझे प्राप्त हो गया है महाराज, और कोई इच्छा नहीं, लेकिन एक ही इच्छा रह गई है, ये 1000 हाथ जो आपने दिया था इसमें कितनी ताकत है इसको जानने का, प्रयोग करने का कोई स्थान मुझे नहीं मिला, मैं कहां जाकर परीक्षण करूं कि मेरे हाथ में कितनी ताकत है, है? क्योंकि कोई भी मेरे से लड़ने आता ही नहीं है। भुजबनम, पुष्पदंताचार्य जी ने बाणासुर के हाथों की उपमा दी है, भुजबनम हाथों का जंगल, जब वो 1000 हाथ खड़ा करेगा तो जंगल होगा कि नहीं है? रणकंडू या युद्ध करने में खुजली हो रही है, महाराज आपके ये सेवा करके मेरे हाथ का पूरा मजा नहीं आ रहा है, मैं चाहता हूं कि इस लड़ू में मजा लूं, आपके जो हाथ दिया उसमें कितनी ताकत है, कोई है संसार में मेरे बराबर लड़ सके? भगवान शिव ने कहा कि बहुत हैं बेटा, चिंता न कर, बहुत हैं मुझसे लड़ सके। बोले 1 से 1 हैं, तो तुम मेरे से लड़ेगा? बोले नहीं, आपसे तो नहीं, आप तो भगवान है, क्या लड़ूंगा मैं आपसे, कहीं वो क्या कहता है पता है, मैं आपसे नहीं लड़ूंगा क्योंकि मेरे पास ताकत ज्यादा है, आप कमजोर है, कहीं एक झटका लगा दिया तो आपकी मृत्यु हो गई तो मुझे पाप लगेगा, आपसे नहीं लड़ूंगा, बोलता है मूर्ख। तो बोले है बहुत, कौन है, कहां रहते हैं वो? बोले ठीक है धैर्य रख, हो जाएगा। कहां रहते? बोले द्वारिका में। हैं? हैं ऐसे? बोले हाँ। तब फिर वो कब, उनसे हम कब लड़ पाएंगे? बोले प्रतीक्षा कर, जब तेरा ये ध्वजा गिरेगा, राज सिंहासन के जो पताका ध्वजा है, जिस दिन गिरेगा तुझे उनसे लड़ने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। बस उसाहरण का प्रसंग वही तो आ गया ना, ले जी हा, तो उसाहरण का तो वही वक्खाहरण, उसमें यही जोड़ा जाता है बाणासुर के, बाणासुर की पुत्री का नाम उषा है, उसको स्वप्न हुआ, स्वप्न में एक ऐसा पुरुष आया बड़ा सुंदर बड़ा दिव्य, और उसके स्वप्न में स्पर्श सुख के इतना दिव्य पाया उसने, जागने के बाद उसी की स्मृति हुई और उसके चित्रलेखा से उसने कहा कि सहेली रात को स्वप्न में हमने ऐसा देखा है, कौन होगा वो, किस लोक में रहता है, कौन है, मेरी तो अब उसके अलावा अन्यत्र मन जाना ही नहीं, यदि मैं किसी को वरण करूंगी तो उसी को, लेकिन तुम पता लगाओ कि वो कहां रहता है, किसका बेटा है। चित्रलेखा ने कहा कि मेरे लिए असंभव नहीं, पता लगाती हूं, एक एक फोटो बनाते दिखाया, ये था ये था ये था, नहीं इंद्र को बनाया, उपेंद्र का बनाया, नहीं है? देख लो, तो फिर भगवान श्री कृष्ण का बनाया तो यही था, वो भी तो बड़ा खटपटी था ना, है? तो बोले यही था, रात को यही आया था। बोले नहीं, लेकिन कुछ चेहरा मिलता जुलता है।
हाँ देखो प्रद्युम्न का बनाया, हाँ हाँ कुछ तो मिलता है लेकिन परफेक्ट वही नहीं है। तब अनिरुद्ध का बनाया तो बस यही है। कहां रहता है? बोले जहां भी रहेगा तू क्यों चिंता करती है, पहचान लिया ना तूने? बोले हाँ ये उसमें रहता है द्वारिका में, लाओ। कैसे लाते हो? मैं चित्रलेखा गई और चारपाई में सोए थे अनिरुद्ध, उठा के चारपाई सहित ले आई, क्योंकि वो योगिनी थी, योग सिद्ध था उसके यहां, लेके आ गई ले। तो द्वारिका का अनिरुद्ध स्वर्णपुर में जाकर अवरुद्ध हो गया है ना, चित्रलेखा के घर में वो तो कैद हो गया, वो बंद कर दिया उसने, कहीं जाने ही नहीं दिया। जब पता चला द्वारिका में कि अनिरुद्ध कहां गया, तो मीडिया को बुलाया गया, नारद जी मीडिया है ना, वो तो मीडिया को तो सब पता है, हाँ गूगल सर्च किया वहां तुरंत। तो नारद जी ने कहा कि हाँ देखो सोनितपुर में रहता है बाणासुर के कन्या के यहां बंदी बना है, अब चौमासा है युद्ध तो करना होगा, चौमासा समाप्त होने के बाद चलो युद्ध करते हैं। बस दल बल के सहित कृष्णा प्रद्युम्न सब पहुंच गए सोनितपुर बाणासुर की राजधानी में। उसी दिन उसका छत्र गिर गया, फिर युद्ध हुआ घमासान। तब भगवान शिव ने कहा, कृष्ण को इशारा किया, ये ऐसे तुम पार नहीं पाओगे महाराज। तो शिव को कहा कि आप सो जाओ, वो तो भगवान शिव तो सो गए, खरांटा लेकर सोने लग गया। और शिव की शक्ति पाकर महासुर शक्तिशाली था, वो सो गए। कृष्ण ने एक एक हाथ काट दिया, तीर चलाते गए बाणासुर के एक एक हाथ काटे, क्योंकि शिव भक्त थे, मारना तो ठीक नहीं था, बाणासुर शिव भक्त था, मारना तो ठीक नहीं था, हाथ काट दी। तब एक एक हाथ काटे तो केवल दो हाथ बचे थे, तो भगवान शिव जग गए, कृष्ण बंद करो, इसका पहले दो हाथ थे अभी भी दो ही हाथ रहे, ये ज्यादा हाथ देने से इसको घमंड हुआ था, मेरा है तो मेरा भक्त फिर भी असुर जाति का होने के कारण आसुरीपना दिखाई पड़ा। अब उसका दंड उसने पाया, अपने उसके सारे हाथ काट दिए, अब रहने दो। अब क्या करें? बोले आपका जो पोता है ले जाओ, ब्याज के सहित ले जाओ, है ना? ब्याज क्या था? उषा है ना, ब्याज के सहित ले जाओ। बाप वैष्णव और शैव शक्ति के बीच में क्या दिव्य शादी रचाया गया, और भगवान श्री कृष्ण ने बोनस के सहित अपने पोते को लेके आए, क्या आनंद हो रहा था। देखो करो चाभ्यर्चायाम, भगवान शिव की सेवा करो हाथ से, लेकिन बाणासुर की तरह सेवा करो, लेकिन बाणासुर की तरह घमंड मत करो। बस पर ग्रंथान, ये सब तर्क शास्त्रों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, भगवान शिव कहते इसी से कल्याण होगा जीव का। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।

0: ശിവായ. You're listening to Shaivam.org radios. 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Mahimna Stotra in Hindi, presented by Swami Sri Dharmanandiji. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: परंतु आपके इंद्रियों का जो विषय नहीं ऐसा दुख आ जाए तो इसको सहन नहीं कर सकते, उस समय भगवान को पुकारे तो निश्चित ही भगवान हमारे दुखों को दूर करते हैं। पर उस समय हम क्या करते हैं, अपने संबंधियों को पुकारते हैं। स्वयं बेचारे ये मौत के खिलौने हैं, स्वयं तो दुखी हो रहे हैं, तो आपको सुखी कहां से कर सकते, आपके दुख को हरण नहीं कर सकते। इसलिए इससे प्रेरणा मिलती है कि ऐसे विषम परिस्थिति में हमें अपने जीवन के विषाद को हटाने के लिए भगवान शंकर का अवलंबन लेना चाहिए। शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राध्याय में बार बार यह प्रार्थना की गई है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये जो मेरा मन है, मंगलमय संकल्प करने वाला हो, शिव मतलब मंगलकारी संकल्प करने वाला होवे, क्योंकि मन ही मनुष्यों के बंधन का और मोक्ष का कारण है। मना एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां पर सद्बुद्धि है वहां पर सारी संपत्तियां हैं, और जहां दुर्बुद्धि है वहां पर संपत्ति ही विपत्ति में परिणत हो जाती है। सारा संपत्ति आप घर में, यदि घर में एक जुआरी शराबी निकल गया, देखो सबको परेशान कर डालता है एक ही व्यक्ति। इसीलिए सद्बुद्धि की प्रार्थना की गई है। चारों वेदों में जो सार गायत्री मंत्र है, इस गायत्री मंत्र में भी केवल सद्बुद्धि की ही प्रार्थना की गई है। धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भर्गो देवस्य, भर्ग शब्द का अर्थ स्वयं ज्योति रूप परमात्मा, और भर्ग शब्द का अर्थ भगवान शंकर भी होता है। विपत्ति वैचित्र्यार्थ अर्थ वैचित्र्यम, ये कई शब्द है। आप जिस देवता के उपासक हैं उसका अर्थ स्वभावतः निकल आता है। भ का अर्थ भवति यस्मात् इति भ, जिससे संसार होता हो उसका नाम है भ। और र जो है ना, भर्ग में जो र है, र का अर्थ रक्षति इति र, जिसके द्वारा संसार की रक्षा हो। और ग का अर्थ गति, जैसे सारे नदियों का सरोवर का गति है सागर समुद्र, वैसे ही महाप्रलय में सारे जीवात्माओं की गति ब्रह्म में होती है, भगवान शंकर में होती है। तो भरत का स्वयं ज्योति परमात्मा भी है, आप विष्णु भी अर्थ कर सकते, शिव भी कर सकते हैं, जिसका जो उपास्य है वैसा अर्थ निकल जाता है। ऐसे भर्गो देवस्य, भर्ग देव का मैं ध्यान करता हूं, और मान लो आप बड़े भारी महापापी हैं, पाप को दूर करना हो, तो भर्ग का अर्थ है भर्जनात इति भर्ग। भर्जन मतलब कि जैसे एक जाति होती है जिसको बोलते हैं गौण जाति होती है, वह भर्जन का काम करता है। भर्जन मतलब कि चना को भूजना, चावल को भून के दाना बना लेना। जैसे कि भाड़ में भाड़ भूज अनाज को भूनता है, वैसे ही जो हमारे पापों को तापों को भून डाले, नष्ट कर डाले, ऐसे परमात्मा का नाम भर्ग है। तो अपनी दृष्टि के अनुसार भर्ग शब्द के अनेक अर्थ हैं। ऐसे भर्गो देव का मैं ध्यान करता हूं, स्वयं ज्योति परमात्मा का, जो हमारे बुद्धि को सन्मार्ग में लगाए, क्योंकि जब तक सद्बुद्धि नहीं होगी तब तक आप अपने जीवन को सफल नहीं बना सकते। उपनिषद में जहां पर पंच महापातकों की गिनती कराई है वहां पर मांस भक्षण को महापाप में नहीं गिनाया, वहां पर शराब सुरापान को महापाप में गिनाया। स्तेनो हिरण्यस्य सुराम पिबश्च गुरो तल्प आवसन चैते पतंती पंचमा तैसा आचरण। ये उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद मंत्र है। स्तेनो हिरण्यस्य का अर्थ है जो दूसरे के आजीविका को चुराने वाला, ये प्रथम पात की महापात की है। दूसरा है व्यभिचार कर्म करने वाला, पराय स्त्री के साथ संबंध स्थापित करने वाला। तीसरा है ब्रह्म हत्यारा, ब्रह्म मल्लक श्रेष्ठ पुरुषों की हत्या करने वाला। और चौथा है सुरापान जो करता हो, और पांचवा वह है जो चारों के साथ बहु बेटी का संबंध स्थापित करता है। आतंकवादी तो बाद में पकड़े जाते हैं पर उसके संबंधी पहले पकड़े जाते हैं, व्यवहार में भी होता है। इन पांचों को महापात की कहा है। सुरापान में जीव हत्या नहीं, सुनाम धन्य पूज्य पादा खंडानी महाराज कहा करते थे कि शराब मल्लक की जल को सड़ा के बना दिया वह शराब, परंतु सुरापान को महापातक में गिनाया। इसलिए गिनाया है क्योंकि शराब पीने के बाद सीधे हमारी बुद्धि कुंठित हो जाती है। मनुष्य में पशु में अंतर केवल बुद्धि तत्व से है। ज्ञान बीन पशु भी समान, यदि ज्ञान नहीं है विवेक नहीं है तो आप पशु के समान है। तो जो हमारे अंदर बुद्धि तत्व है उस बुद्धि तत्व को शराब तत्काल जाकर नष्ट करता है, इसलिए शराब को या सुरापाय को महापातकी में गिना है, मांस भक्षण को महापातकी में नहीं गिनाया है। क्योंकि मांस खाने से तत्काल या 10-20 वर्ष के बाद भी हमारे बुद्धि कुंठित नष्ट नहीं होती, वह एक खाद्य है, भोजन है जीव का। हाँ जीव हिंसा जरूर है परंतु महापातक नहीं है, परंतु शराब जो पीता उसकी तत्काल बुद्धि नष्ट हो जाती है, इसलिए इसको महापातक में गिनाया है। और भगवान श्री कृष्ण भी गीता में स्वयं कहते हैं बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि नष्ट हो गई तो आपका सर्वनाश हो गया। जीवन में बुद्धि है विवेक है तो आप चाहे कितने भी निचले पायदान पर हो बुद्धि से आप अपने ऊंचे मंजिल को हासिल कर सकते हैं, इसलिए सुरापान को महापातक में गिनाया है। तो यहां पर बुद्धि की प्रार्थना किया है। तो हमारे जीवन में जब भी ऐसी परिस्थिति दुख की घड़ी आए उस समय हमें जैसे कि देवताओं ने असुरों ने भी अपने सम्राट जो असुर पक्षपाती है बलि, देव पक्षपाती भगवान विष्णु, पर हमारे भगवान शंकर किसी के पक्षपाती नहीं, निष्पक्ष देवता है। असुर उपासना करे तो उसको भी वरदान दे देंगे, भस्मासुर को दे दिया और स्वयं ही संकट में पड़ गए। ऐसे भगवान अवघरदानी आशुतोष शंकर भगवान है। सकलमासा कंठे तवन कुरुते न श्रिय महो, वह जो भगवान शंकर के गले में कलमास मल्लय की जो नीला नीला जो हलाल बीस पान करने धब्बा पड़ा है वो आपके ऐश्वर्य को शोभा को बढ़ाता है। जैसे छोटे बच्चे की माताएं श्रृंगार करती हैं, श्रृंगार के बाद काजल जो है ना टीका लगाती है, उससे जो है उसके सौंदर्य में निखार आता है। वह जो काजल की जो टीका है ना वह जो है कोई जो है शोभा को बिखेरता नहीं बल्कि शोभा को बढ़ाता है। पिकारो पी श्लाघ्यो टेढ़ा मेढ़ा चंद्रमा भी भगवान शंकर के मस्तिष्क पर जाकर सुशोभित हो जाता है। यमाशितो बक्रोपी शोभते। दुर्बल से दुर्बल भी व्यक्ति राजा या महामंत्री राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सहारे बड़े से बड़े पहलवान को भी दबा देता है, बिल्कुल दुर्बल, क्योंकि उसको सहारा प्रधानमंत्री का है, राजा का है। ऐसे ही चाहे हम धनहीन हो या बलहीन हो, कैसे भी हो, यदि हमारे जीवन में भगवान का आधार हो, हम भगवान को आधार बना लें, तो फिर ये संसार की समस्याएं हमें व्यथित नहीं कर सकती हैं। एक बहुत प्रसिद्ध राजस्थान में माघ कवि हुए हैं, कालिदास, माघ और बाण, ये तीनों अपने जमाने के महान कवि हुए हैं। कालिदास की उपमा और माघ की वाक्य विन्यास बड़ा ही सुंदर है। तो माघ कवि ये मालवा क्षेत्र के आसपास हुए हैं। एक बार बड़ा ही दुष्काल हुआ, दुष्काल पड़ने के बाद पत्नी ने बार बार कहा कि राजा आपको बार बार बुलाते हैं पर आप कभी नहीं जाते हैं, और इस समय आपकी प्रजा बहुत पीड़ित है जहां रहते हैं वहां, इसलिए आप कृपा करके राजा के पास जाइए। फिर भी पंडित जी ने मना कर दिया, क्योंकि पंडित का ऐश्वर्य है त्याग में, साधु ब्राह्मण का ऐश्वर्य त्याग में है। जब पत्नी ने बहुत कहा कि घर में खाने को कुछ भी नहीं है, बच्चे भूखे हैं, पत्नी के हट को देखने के बाद मजबूरन माघ को राजा के पास जाना ही पड़ा। कई बार होता है ना, आप नहीं चाहते हैं, परंतु श्रीमती जी की चाबी ऐसी घूम जाती है ना कि न चाहने पर भी करना पड़ता है, हैं? ऐसे यहां पर भी पत्नी के हट के कारण से माघ कभी अपनी पोटली में चावल बांध कर चल पड़े। जब मालवा नरेश के पास पहुंचे, बड़ा स्वागत किया, कई दिन तक उनको राज में ठहराया। राजा ने पूछा कि मैंने आपको कई बार निमंत्रित किया पर आप कभी नहीं पधारे, इस समय आने का क्या प्रयोजन है? माघ कवि ने साफ साफ बतला दिया, इस समय धन की इच्छा से आया हूं, क्योंकि हमारे गांव में बड़ा भारी अकाल है और हम अपनी पत्नी की प्रेरणा से यहां पर आए हुए हैं। राजा ने 10 घोड़ों में पूरा सामग्री सोना चांदी भरकर विदा किया। 10 घोड़े लेके माघ कवि आए रास्ते में, जहां रात को रुकते वहां पर सब जो है गरीबी से परेशान प्रार्थना करते कुछ हमें दे दीजिए। रास्ते भर में 10 घोड़ों के सारे सामान गांव में बांट दिए। अंत में जब घर पहुंचे खाली हाथ, पत्नी देखी कि हमारे पतिदेव घर में पधारे तो सही, परंतु मुख पर बहुत मालिन्य, बहुत उदासीनता, सिर नीचे करके बैठे। धर्मपत्नी समझ गई पति के पीड़ा को कि राजा ने बहुत कुछ दिया इन्हें, परंतु रास्ते में सब जो है ये बांट करके गरीबों को वितरित कर खाली हाथ लौटे हैं। पत्नी ने कहा कि आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे बादल जलती हुई धरती पर वर्षा करके सिंचित करके प्रसन्न होता है, निर्मल शांत हो जाता है, और बादल किसी भी शोभा भी होती है, इसी प्रकार से आपने रास्ते के दीनहीन गरीबों को राजा के धन को बांटते हुए यहां पर पधारे, तो आप खाली हुए रिक्त इसी में आपकी शोभा है। आजकल की धर्म पत्नी होती तो क्या बोलती, बल्कि तुम्हारे पांडित्य को, विद्या को, ये दर्शन को धिक्कार है, सब बेकार है। इतना तो देखना चाहिए कि पत्नी भूखी है, घर में कुछ नहीं है, तुम रास्ते में लुटा के आ गए, सीधा ऐसे ही बोलती। पत्नी बोलती पहले अपने घर को देखो, बाद में गांव को देखो, फिर दूसरे को देखो। परंतु पत्नी भी ऐसी जो है पतिव्रता थी कि पति के भाव को समझ करके उनको पीड़ित नहीं किया। तो अकांड ब्रह्मांड, ऐसे समय में भी यदि हम भगवान की सहारा लें तो भगवान निश्चित ही सहयोग करते हैं। वो पत्नी ने कहा कि ये जो आपका कलमास, कलमास मतलब मुख मालिन्य, कि आप रास्ते में धन को वितरित करके जब घर पहुंचे तो उदासीन हो गए कि मैं कुछ भी नहीं लाया इनके लिए। जिनकी प्रेरणा से मैं राजा के पास गया, पत्नी की प्रेरणा से, बच्चों की प्रेरणा से, पर यहाँ आने के बाद खाली हाथ। यह जो आपकी उदासीनता या आपकी शोभा, ये कलमाश शोभा बना रहा है, ऐसी भगवान शंकर के गले में जो नीलिमा है, ये जो है समझो कि एक उनका प्रसिद्ध नीलकंठ नाम भी पड़ गया, शोभा बढ़ा रहा है। ऐसी हमारे जीवन में जब भी ये रात दिन रूपी मथाने जो चल रही है ना, इससे जब विषाद आए तो विषाद का जो धब्बा पड़ता है ना अंतःकरण में, अमुक ने हमें पीड़ा पहुंचाई, अमुक ने हमें कटु वचन कहा, अमुक ने तिरस्कार कर दिया, यह जो धब्बा है इस धब्बे से हमारे जीवन में निखार आता है और यह हमें सावधान करता है। शत्रु और मित्र में यही अंतर है कि सातनात त्रारणात शत्रु, जो आपको हर तरह से सावधान करके त्रांग मतलब रक्षा करे उसका नाम शत्रु है, और मित्र मान सम्मान करके सन्मार्ग में प्रेरित करता है, इसलिए इसका नाम मित्र है। तो यहां पर भी जो भगवान शंकर के गले में कलमाश है वह शोभा बढ़ाता है, ऐसे ही इस जीवन में जीवो शिव एवं, जीव यदि अपने असली स्वरूप को पहचान लिया, यह भी साक्षात शिव ही है, और अपने स्वरूप को नहीं पहचाना तो सब हो जाता है। सब मतलब कि जिससे कि सभी नफरत करते हैं, जब अंदर से शिव निकल जाता है तो इस शरीर से अपने स्वजन भी घृणा करते हैं, जल्दी हटाओ शमशान में ले जाओ। तो यह जो हमारे जीवन में विषाद है, यह हमारे जीवन को पवित्र करता है, निखार लाता है। भुवन भय भंग व्यसनिनः, भगवान शंकर का विशेषण है कि संसार के भय को भंग करने का व्यसन है, स्वभाव है। चाहे आपको जैसा भी भय हो, आर्थिक मंदी का भय, भय लोगों को सता रहा ना, बहुत आर्थिक मंदी आ गई, या किसी को सामाजिक भय हो, या मौत से भय हो, सारे भयों से अभय बनाने वाले, इसलिए भगवान शंकर का नाम एक अभयंकरा है, जय जय शिव सुंदरा और अभयंकरा, अभयंकर कहते हैं। एक दक्षिण भारत में सुंदर नामक भगवान शंकर के अनन्य भक्त हुए हैं, जैसे कि गुजरात में नरसिंह मेहता की कथा है कि नरसिंह मेहता के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सब कुछ किया, वैसे ही सुंदर नामक भक्त के लिए भगवान शंकर ने सब कुछ उसके लिए बन गए। तो सुंदर भगवान के अनन्य भाव से भक्ति करते थे। जब जवान हुए तो जवान होने के बाद इनके पिता का नाम था जटिल और माता का नाम था ज्ञानवती। दोनों ने सुंदर की सम्मति से एक विद्वान ब्राह्मण की कन्या से विवाह प्रारंभ किया। जैसे ही विवाह की तैयारी हो गई, लग्न पत्री भी छप गई, बट गई, सारे लोग इकट्ठे हो गए, इतने में भगवान शंकर एक बूढ़ा ब्राह्मण का वेश बनाकर बहुत जीर्ण शीर्ण लाठी टेकते हुए विवाह मंडप में पधारते हैं। जब कोई इस प्रकार से ब्राह्मण आए बिना सूचना के, तो सभी स्वागत करते हैं। उनको देखकर सभी खड़े हुए, बच्चे तो ताली पीट के हंस रहे थे, बुढ़ापे पर अक्सर होता है, बूढ़े को देख के बच्चे बहुत हंसते हैं, कैसे वो खांकता है, कैसे वो लाठी टेक के कांपते हुए चल रहा है। हम भी बच्चे थे ना, हमको याद अपने बचपना की भूल, हम बूढ़े को बहुत चिढ़ाते थे, कंकड़ भी मारते थे हम लोग बच्चे मिलकर के, जो क्रोध करे तो और खुश होते थे। तो बच्चे जो है ना बूढ़े को चिढ़ाते, यहाँ पर ही बच्चे तो चिढ़ा रहे। जब मंडप में पहुंचे तो बड़े बड़े लोग स्वागत किए, नमस्कार किए, उनका चरण धो करके जटिल ने कहा कि मैं बड़ा धन्य हूं जो आप शुभ मुहूर्त में हमारे यहाँ पधारे हैं, आप पधारने का कारण बदलाइए। उस वृद्ध ब्राह्मण ने अपना नाम श्रीकंठ बताया और कहा कि मैं यहाँ आया हूँ और यह मुझे बताओ कि ये सब समायोजन किस लिए हो रहा है। सुंदर के पिता जटिल ने कहा कि यह जो हमारा पुत्र है जिसका नाम कमल नाथ है और उपनाम है सुंदर, इसके विवाह की तैयारी चल रही है। श्रीकंठ ब्राह्मण ने कहा कि तुम भले न मुझे पहचानते हो पर मैं तुम्हें अच्छी तरह से पहचानता हूँ, तुम्हारे दादा को जानता हूँ, तुम्हें जानता हूँ और इस बच्चे को भी जानता हूँ, इसका विवाह होने जा रहा है। जब बार बार जटिल ने प्रार्थना किया कि आपके आशीर्वाद से हमारे सुंदर बालक का अच्छी तरह से विवाह क्रिया संपन्न हो, बस तुरंत ब्राह्मण देवता कुपित हो गए। बोले कि तू बड़ा झूठ बोलता है, ये सुंदर हमारा दास है, ये तेरा बेटा कैसे हुआ। भरी सभा में श्रीकंठ ने सबको संबोधित करके कहा कि देखो ये हमारा दास है, खरीदा हुआ है और इस दास को ब्याह करके अपना बेटा बनाना चाहता है। सारी सभा में सन्नाटा हो गई। सुंदर खड़े हुए, बोले कि मैं आपको जानता नहीं, पहचानता हूं नहीं, आपका मैं दास कैसे। और ब्राह्मण तो कभी किसी का दास बन भी नहीं सकता, केवल भगवान का दास हो सकता है। आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा देख तेरे दादा की हमारे हाथ में पत्री है, तेरे दादा ने लिखा है कि मैं जम्बूपुर निवासी, दक्षिण भारत में जम्बूपुर एक नगर का नाम है, जम्बूपुर निवासी कमलनाथ का दास हूँ, हमारे पुत्र पौत्र सभी इनके दास होंगे, उनका हस्ताक्षर है और लेख है। जब उसको देखा तो तुरंत पढ़ते फाड़ के फेंक दिया। जब फाड़ के फेंक दिया तो वृद्ध ब्राह्मण और कुपित हो गए, बोले कि देखो इसका फाड़ना ही प्रमाणित करता है कि मेरा दास है। ये दास नहीं होता तो क्यों फाड़ा, राजा को दिखाना चाहिए, राजा सभा में बैठे हुए हैं। और कुपित होकर बोले कि देखो इस सभा में कोई भी न्याय प्रिय क्या ब्राह्मण नहीं है या कोई राजा नहीं, मंत्री नहीं, जो कि न्याय हमें दिला सके। ये मेरा दास है परंतु ये जटिल जो है ब्याह करा के अपना पुत्र साबित करना चाहता है। भयंकर विवाद हो गया, सभा में सन्नाटा छा गई। राजा बीच में हस्तक्षेप करते हुए बोले कि ब्राह्मण देवता आप शांत रहिए, इसका निर्णय यहीं पर हो या अन्यत्र, यह आपका दास है या जटिल का पुत्र। ब्राह्मण ने कहा कि यहां तो सब जो है दुर्नीति वाले हैं, किसी को नीति का धर्म शास्त्र का ज्ञान नहीं, इसका निर्णय तो नवनीतपुर में होना चाहिए जहां वह विद्वान ब्राह्मण है। विवाह बंद हो गया, सभी वहां नवनीतपुर के लिए चल पड़े। वहां जाकर वृद्ध ब्राह्मण और जटिल दोनों आमने सामने हुए। राजा ने कहा कि आप अपना दस्तावेज पेश कीजिए कि आपका दास यह कैसे बना। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि देखो इसने नकल तो फाड़ दी पर हमारे हाथ में इस नकल का असल ओरिजिनल कॉपी है। और ब्राह्मणों को पकड़ा दिया। ब्राह्मणों ने पढ़ा, कहा कि इसमें साफ साफ लिखा है कि मैं जम्बूपुर निवासी कमलनाथ, मेरे पुत्र पौत्र सभी जो है इस पित्त नामक ब्राह्मण के दास होंगे। उस ब्राह्मण ने कहा कि कोई तुम्हारे दादा की प्रतिलिपि हो तो मिलाकर देख लो। जब दूसरी कॉपी ला के मिलाए तो बिल्कुल मिल गया। अब तो जटिल और सुंदर का सिर झुक गया, बोले कि ठीक है हम हार गए, आप जीत गए और मैं आपका दास। पर सुंदर ने कहा कि आपका घर द्वार कहाँ है, मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूं। ब्राह्मण ने कहा चल मेरे साथ में, तुझे अपने घर ले चलता हूं। अब सुंदर वृद्ध ब्राह्मण के पीछे पीछे जाता है। जब सुंदर ब्राह्मण पीछे पीछे चला तो ब्राह्मण जा करके भगवान शंकर के मंदिर में चला गया, अंदर से निकला ही नहीं। सुंदर ने कहा कि तुम जो है ना पागल हो गए हो, यदि तुम्हारा घर द्वार है तो अपने घर द्वार चलो, इस मंदिर में क्यों प्रवेश कर गए? जब जोर से क्रोध किया कि तुम भ्रांत ब्राह्मण हो, तुमने झूठ मूठ का मुझे ठगा है, दास बनाया है, मैं तुझे जानता भी नहीं, जल्दी से बाहर निकलो। पर अंदर कोई हो तब तो निकले, जब अंदर देखा तो भगवान शंकर चरणों में गिर पड़ा। भगवान शंकर ने कहा, तुझे पता है तुझे उपासना करके और मुझसे वरदान मांगा था कि मैं संसार के चक्कर में न पड़ूं और तेरी ब्याह हो जाती तो तू बता तू कहां पड़ता। इसलिए मैं जो है वृद्ध ब्राह्मण का रूप बन करके तुझे उस विवाह के बंधन से छुड़ाने के लिए सब नाटक किया था। तो देखो भगवान शंकर ऐसे उदार हैं कि भक्तों की हर तरह से रक्षा करते। ये तो आपको अधूरी कथा सुनाई, इसकी दूसरी कड़ी कल सुनाएंगे सुंदर की। प्रेम से बोली।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Nandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: आप जानते हो, जहां प्रेम होता है वहां ये नहीं कहा जाता है कि नौकर को संकेत किया, वहां पर जहां प्रेम होता वहां व्यक्ति स्वयं जो है उसकी सेवा करता। इसलिए भगवान ने स्वयं सेवा की और सेवा करते हुए फिर भगवान ने क्या किया, पहले तो उन्होंने जो है नियम लिया, केवल एक बार जो है शाम के समय भोजन करना और कुछ काल तक ये प्रयत्न चलता रहा। फिर उन्होंने जो है भोजन भी छोड़ दिया, फलाहार करना शुरू किया, फलाहार लेना भी छोड़ दिया, फिर जो है जल के सहारे रहे, फिर जल का भी परित्याग कर दिया, पत्थोहादि के सहारे सब प्रयोग करते हुए अंत में वायु के सहारे रहे, लेकिन फिर वायु का भी उन्होंने त्याग, कुंभक करके वायु को ग्रहण करना भी उन्होंने त्याग दिया। और जब इसका त्याग कर दिया तो भगवान जो थे वो प्रसन्न हो गए, भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। और भगवान प्रकट होकर के भगवान ने कहा, कहो कृष्ण, किस कारण से ये कष्ट किया? कृष्ण ने कहा, महाराज कोई कारण नहीं। कहा, बगैर कारण के तो कार्य होता ही नहीं, कारण बिना कार्य हमने उत्पन्न थे, कारण तो कोई जरूर है। किस लिए तुमने मेरी जो है शरण ली, क्या मेरे से चाहते हो? भगवान ने कहा, महाराज मुझे कोई कामना नहीं, मैं कुछ नहीं चाहता। कहा, कुछ नहीं चाहते हो तो फिर ये कार्य शरण लेना कैसे हुआ? कहा, ये तो यह महात्मा परानंद परम प्रेमास्पदम इतः, आप मेरी आत्मा हो और आत्मा से स्वाभाविक प्रेम होता है, आपसे मेरा भी स्वाभाविक प्रेम है। अभी तक इस प्रवृत्ति में रहने के कारण प्रेम उधर बटा रहा और आपकी शरण नहीं ले सका, लेकिन यश जो है हमारे लिए सत्य भामा ने सुलभ कर दिया। मेरी कोई इच्छा नहीं, लेकिन उसने सत्य भामा निमित्त बन गई और उसने निमित्त बना करके जो है मुझे क्या कर दिया, कहा आपकी शरण लेने के लायक बना दिया। ऐसा भगवान ने कहा, लेकिन इससे पहले और कहा, क्या भगवान कहने लगे, यह सर्वज्ञ, महाराज आप मेरे से पूछ रहे हो, पूछे तो वह जो अल्पज्ञ हो, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं, और आप जब सब कुछ जानने वाले, वैरंतस्य भूतानाम चर अचर मेव च, आपकी सत्ता कहां नहीं है, प्राणी के हृदय में भी विद्यमान है, प्राणी के बाहर भी विद्यमान है, सर्वत्र आपकी सत्ता विद्यमान है, अधस्तात उपरिष्टात दक्षिणतः उत्तरतः, चारों तरफ आपकी सत्ता विद्यमान है, और आपकी सत्ता ही नहीं विद्यमान है, आप सब कुछ जानने वाले भी हैं, प्रकाश स्वरूप है, तो आप सब कुछ जान रहे हैं, इसलिए आपका पूछना ये बन रहा नहीं। तो यह सर्वज्ञ, यह सर्वज्ञ सर्वित, जो सर्वज्ञ है सब कुछ जानने वाला है, और वो पूछे तो पूछना बनता नहीं। आगे और कहा, इतना ही नहीं कहा, सर्वज्ञ दया करस्य, और आप क्या हो? कोई सर्वज्ञ तो हो, जानता तो हो, लेकिन जानने पर भी वो चाहता है कि जब तक मेरे से कहेगा नहीं तब तक मैं इसकी सहायता नहीं करूं, वो जानता सामने वाला परेशानी में है और मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए, लेकिन वो तब तक नहीं करता है क्योंकि उसके अंदर बैठा हुआ है कि ये मेरे से कहे, ये मेरे से याचना करे, तब मैं इसकी सहायता करूं। कहने लगे, ऐसा भी नहीं, आप क्या हो? सर्वज्ञ हो, सर्वज्ञ हो, और सर्वज्ञता के साथ साथ दया करस्य, दया के आकर। आप कहते हो आशुतोष प्रभु अवधरदान, माने आप दया के खजाने हो, आपके अंदर ऐसी कोई कृपणता नहीं है, इसलिए जो है आपसे ये पूछते नहीं बनता। और ऐसा भगवान ने कह करके कहा, मेरी कोई इच्छा नहीं, इसमें तो निमित्त जो है सत्यभामा बनी और मुझे अवसर उसने प्राप्त करा दिया कि उस प्रवृत्ति से मैं निवृत्त होकर के आपकी शरण ले सका। इसलिए मेरा तो आपसे प्रेम है, आप मेरे आत्मा। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने जब कहा तो भगवान ने वहां पर समझ गए। भगवान ने कहा अच्छा तो जाओ, सत्यभामा को 10 पुत्रों की प्राप्ति होगी। शिव ने आशीर्वाद दे दिया और कहा कि इतना ही नहीं, अब केवल सत्यभामा के ही नहीं, सबको 10-10 पुत्रों की प्राप्ति होगी। लेकिन वहां अकेले भगवान शिव नहीं आए थे, साथ में कौन था? पार्वती भी साथ में थी। पार्वती ने कहा मैं पीछे क्यों रहूं? इसलिए पार्वती ने कहा कि ठीक है, भोलेनाथ ने तुम्हें जो है दो आशीर्वाद दे दिया, लेकिन मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है जहां परमात्मा की प्रसन्नता हो जाती है वहां प्रकृति की भी प्रसन्नता हो जाती है। उसके लिए फिर यह लोक भी सुखद हो जाता है और परलोक भी सुखद हो जाता है और स्वयं वो सुख रूप ही हो जाता है। इसलिए पार्वती ने कहा जाओ कृष्ण, तुमको कभी भी जीवन में बुढ़ापा नहीं आया, तुमको कभी भी जीवन में कोई रोग नहीं आएगा, तो सदा तुम निरोग रहोगे और सदा तुम बुढ़ापे से रहित रहोगे, कभी तुम्हें बुढ़ापा आदि नहीं, और मृत्यु भी तुम्हें जो है कभी छू पाएगी नहीं। ये दिया तो ये शिव पुराण के अंतर। तो खैर ये तो चर्चा मैंने केवल इसलिए कही, भगवान श्री कृष्ण जो है, इसलिए भगवान ने गीता में क्या कहा, यद यद आचरत श्रेष्ठ तत् तद देवे तरु सयत प्रमाणम कुरते लोकस तद। श्रेष्ठ पुरुष जिसका आचरण करता है तो आने वाली उसके अनुयायी जो पीढ़ी है वो भी वैसा ही आचरण करती, क्योंकि वही उसके लिए प्रमाण बन जाता है, है? हमने हीरों को श्रेष्ठ समझा तो उन्होंने यदि बाल रखाना शुरू कर दिया तो हमने भी शुरू कर दिया, उन्होंने कटाना शुरू कर दिया तो हमने भी कटाना शुरू कर दिया, उन्होंने जो है रंग बिरंगे कपड़ों को पहनना शुरू कर दिया तो हमने भी कर दिया, उन्होंने बाल घोटम है झाड़ू लगाने वाला पैंट पहनना शुरू कर दिया तो हमने कर दिया, उन्होंने चुस्त पैंट पहनना शुरू कर दिया तो हमने कर दिया। क्यों? ये स्वाभाविक इस संसार की प्रवृत्ति है, क्योंकि नकल करना ही संसार का रूप है। और नकल शब्द का अर्थ तो जानते ही क्या है, नकल जिसमें कला नहीं है, न विद्यते कला इसमें, और मन स्वयं ग्रहण करने की सामर्थ्य जिसमें नहीं है तो वो क्या करता है, तो कहा देख करके करता। तो ये सब इसलिए ये तो संसार की प्रकृति की स्वाभाविक स्थिति है। तो ऐसा जब भगवान करते हैं तो वही भगवान ने ये शरण के लिए एक संकेत यहां पर किया, और गीता में भी भगवान ने शब्द को कहा कि है आद्यम पुरुषम प्रपद्य, उस आद्य पुरुष की मैंने शरण ली। और फिर संकेत है कि जैसे मैंने शरण ली है इसी प्रकार से तू भी मार्गन कर, और तब संकेत किया तब तू उसकी शरण ले पाएगा, तब तुझे उसकी शरणापन्नता प्राप्त होगी। अर्थात जब तू इस प्रकार से मार्गन करेगा तो उस परमात्मा का प्रसाद तेरे ऊपर हो जाएगा। लेकिन हमारी स्थिति क्या, किसी कवि ने बड़ी सुंदर बात लिखी, उसने लिखा चिर सजग आंखें उन्हीं दी, आज कैसा व्यस्त वाना जाग तुझको दूर जाना। अनादि काल से हम जो है सोते ही आ रहे, सोते आ रहे माने नींद से अर्थात तमोगुण से अर्थात अज्ञान से आवृत होते आ रहे, और उसके लिए उद्बोधन किया जाग तुझको दूर जाना। अबे तुझे यात्रा करनी है और लंबी यात्रा है, इसलिए क्या है जाग जा। और केवल उस कवि ने नहीं लिखा, और कवि नहीं, महादेवी वर्मा करके कवयित्री हिंदी की हुई, उन्होंने इस बात को लिखा, और आप जानते हैं उनकी जीवन चरित्र को पढ़ा हो तो, पति से प्रत्यक्त हो गई, पति से प्रत्यक्त होने पर उन्होंने कोर्ट कचहरी में जाके केस नहीं किया, किंतु क्या किया, उन्होंने एक मार्ग ढूंढा और अपने को अध्यात्म की तरफ जो ले चली, तब उनके हृदय से ये उद्गार निकला और उन्होंने कहा कि चिर सजग आंखें उन्हीं दी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। और भी लंबी चर्चा उन्होंने की, अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम और रोले, आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, आ गया विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना। और केवल उन्होंने ही नहीं कहा, हमारा वेद का उद्घोष क्या, उत्थातव्यम योक्तव्यम भूरि कर्मसु, उठो जागो और क्या करो, श्रेष्ठ कर्मों का अनुसरण करो। श्रुति भी इसी को कहती, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य बरान दिहुत, स्वरस्य धारा निस्ता दृत्या इत्यादि करके सब संकेत किया। ठीक उसी भाव को जो एक वेद का श्रुति का सिद्धांत है, वह सिद्धांत कब आया, जब संसार से हम उपरम हुए, उनको ठोकर लगी, उनको चोट लगी, लेकिन उस चोट को लेकर के वो है, हम लोग क्या करते, चोट को लेकर रोते। आगे उन्होंने लिखा भी है, कहे न ठंडी सांस में भूल यह जलती कहानी, आग और में हो तभी द्रग में सजेगा आज पानी, हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख छड़क पतंग की अमर दीपक की निशानी, तुझे है अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। ये संकेत, लेकिन ये तो कहा ही, बीच में उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही, वो क्या, संकेत किया, वज्र का और एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुदा, दो घूंट मदरा मांग लाया।

हमारी आसक्ति है। असत पदार्थ कोई भी हो, असत पदार्थ में जब तक राग रहेगा तब तक ये बल आता नहीं। इसलिए वैराग्य शब्द का प्रयोग किया, विवेक और विवेक के बाद वैराग, तब आगे का बल बतलाया। तो जब हमारे जीवन में ये आ जाए कि सत क्या है और असत क्या है, तो असत पदार्थ से हमारा राग हटे, और असत से राग हटेगा तो सत में जुड़ेगा, और सत में जब राग जुड़ता है तभी हृदय जो है इस प्रकार का होता है, तभी हृदय प्रसन्न होता है, तभी इस व्यक्ति के जीवन में प्रसन्नता आती है। और जब जीवन में प्रसन्नता आती है तो उसी के अंतर्गत वह आग जो नेत्रों में जल ला सकती है, और हृदय के अंतर आग का मतलब है वो पिपासा, वो इच्छा, वो जिज्ञासा, और ये जब आता है तब जो है ऐसे ही उसके लिए संकेत किया गया विस्पष्ट रुचिना। वो कौन है? इनके अंतर्गत अब असत पदार्थ की तरफ जाने की उनकी इच्छा नहीं हो रही, वहां उनके अंदर अब कोई संशय नहीं। वो जानते हैं सत्य से ही सब कुछ होने वाला, और सत्य के ही जो अनुयायी बन गए हैं, ऐसे उनके लिए कहा कि जो सत्य के जिज्ञासु हैं, सत्य को ही प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे विस्पष्ट रुचि नाम, ऐसे विस्पष्ट रुचि वाले, और उनके लिए तैतिरियक सारस्य, इस तैतिरीय उपनिषद का जो सार है उस सार को कहने लगे। लेकिन इस सार को कहने की सामर्थ्य मेरे में नहीं, लेकिन कैसे कह रहा हूं तो संकेत किया आचार्य प्रसादतः। भगवान शंकर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। आप जिनकी जीवनचर्या को जानते हो, जो 5 वर्ष की अवस्था में जिसने संन्यास ले लिया हो, 8 वर्ष में जो सारे शास्त्रों के वेत्ता हो गए हो, और जो है 12 वर्ष में जिन्होंने भाष्य उपनिषद आदियों का निर्माण कर दिया हो, और फिर आगे चल करके सारे 4 देश के अंतर्गत उन्होंने उस सिद्धांत को फैला करके विरोधी सिद्धांतों का निवर्तन करते हुए इस संस्कृति को जो है प्रस्थापित किया, और 32 वर्ष में जो चले भी गए, और उसके जीवन में और बहुत सी घटनाएं आती हैं, चाहे वो कपाली की घटना हो, चाहे वो चंडाल के वेश में भगवान शिव की बनारस की घटना हो, और इतना ही नहीं चाहे भारती की घटना हो, तो उनके जीवन में ये था, उन्होंने भी इस प्रकार से अनुभव किया था। इसलिए एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की भी सामर्थ्य उनके अंतर्गत थी, ऐसे भगवान शिव थे, और ऐसे भगवान शिव हैं उनसे वो तत्व छिपा नहीं। तो ऐसे भगवान उन शंकर की जो है प्रसाद, तो उनकी तरफ जो है टीकाकार संकेत करता है आचार प्रसाद, उन आचार की प्रसादता से, उनकी प्रसन्नता से, उनके प्रसाद को लेकर के, और जो विस्पष्ट रुचि वाले हैं उनके लिए मैं क्या करने जा रहा हूं। तो कहने लगे उस भाष्य की उपनिषद, उपनिषद पर जो उन्होंने भाष्य किया, मैंने उसे प्रकाशित करने के लिए जो प्रयास किया, और कहने लगे उस प्रकाश को भी आप तक पहुंचाने के लिए, और मैं जो हूं क्या कर रहा हूं उस पर हिंदी टीका कर रहा हूं, ये संकेत किया। तो इस प्रकार से यहां कहते हुए, तो अब जीवन में जो शरण की बात कही गई, तो जब तक शरणापन्नता कब तक नहीं होती, तो इसका ये अर्थ है कि जब तक जो पूर्व में वर्णन कर दिया गया, चाहे वो वरुण को लेकर कहा हो, चाहे वो मित्र को लेकर के कहा हो, चाहे वो विष्णु को लेकर के कहा हो, तो सबका तात्पर्य यह है कि संसार के अंतर्गत हम इस चीज को समझें कि सत क्या है और असत क्या। असत से हमारी निवृत्ति हो, असत से हमारी कामना हटे, असत से हमारी वासना हटे, असत में जो हमारा भी लगाव बैठा हुआ है, असत को ही हम प्राप्त करने में लगे हुए हैं, तो असत से हमारी असतता रूपता सिद्ध हो करके और उससे राग हट जाए। असत हटे या न हटे उससे अंतर नहीं पड़ता। देखो कर्म के 2 रूप होते हैं, एक कर्म का स्वरूप और एक कर्म का भाव। कर्म का स्वरूप हानिकारक नहीं है, जब भी हानि करने वाला होता है तो कर्म का भाव होता। सिमहमन ने आपने एक श्लोक पढ़ा होगा, सिमहमन के अंतर्गत पुष्पदंताचार्य लिखते हैं, कृतौ सुप्ते जागृत तुमस फल योगे कृतमता, क्व कर्म प्रध्वस्तम फलति पुरुषारा धन मृते। हां संकेत किया, जिस कर्म को लेकर के हम कहते हैं हम अपने पुरुषार्थ से करने वाले हैं, हम अपने जो है वल से करने वाले हैं, अपने कर्म से करने वाले हैं, और कर्म से ही सब मिलने वाला, आगे भाष्य में उठाएंगे भी क्योंकि पूर्व पक्ष चर्चा को करेगा भी, तो कर्म जो है, कर्म की स्थिति क्या, जरा विचार कर लो। तो पुष्पदंताचार्य ने बड़ी सुंदर बात, कृतौ सुप्ते

0: हम जो यज्ञ करते हैं वो यज्ञ हमने की, लेकिन यज्ञ तुम्हारा चलता ही तो नहीं रहता। यज्ञ क्या होता? जिस यज्ञ को तुम करते हो वह यज्ञ तुमने किया और वह यज्ञ करने के बाद समाप्त हो गया। कृतौ सुप्ते, तो वो तो सो गया, वो तो समाप्त हो गया, उसका अभाव हो गया, स्वरूप से वह अब यज्ञ नहीं रहा, वह कर्म नहीं रहा, ऐसे कोई भी कर्म समझ लो। और जब जो है कहने लगे फिर जब वो कर्म ही नहीं रहा तो कर्म नहीं होगा तो फल कौन देगा, तो संकेत क्या किया? जागृत तुमसी कृतौ सुप्ते, कृतौ कर्म के सो जाने पर भगवान शिव से संकेत किया कि तुम जागते रहते हो। वो कभी सोता नहीं, यदि सो जाए तो वो भी अज्ञानी हो जाए, तब सर्वज्ञ आदि नहीं रहेगा, तब ज्ञान स्वरूप वह नहीं रहे। वो ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप, वो कभी सोता नहीं। जैसे सूर्य वास्तव में कभी अस्त नहीं होता, लेकिन ये तो कल्पना हमारी अस्त और उदय की। इसी प्रकार से वहां संकेत किया, कृतौ सुप्ते जागृत तुमस, हे भगवान इस कर्म के सो जाने पर लेकिन आप जागते। कृतौ सुप्ते जागृत तो तुमस, कृतमतौ करके आगे संकेत कर दिया। ये सब संकेत जो मूल चर्चा वो करना चाहते, सारी व्याख्या नहीं, आगे फिर का द्वारा क कर्म प्रध्वस्तम फलति पुरुषाराधन प्रति। कर्म जब नष्ट हो गया तो फिर कर्म का फल कैसे मिलेगा? कर्म ही नहीं रहा तो फल देने वाला कौन? और वहरिया तो कहा कि एक जन्म में नहीं करोड़ों जन्म तक ये कर्म जो है पीछा। तो कर्म जब नष्ट हो गया तो कर्म पीछा कैसे करेगा? कर्म तो समाप्त हो गया, फिर फल देने वाला कौन? तो वहां बड़ी सुंदर चर्चा कर दी कि क कर्म प्रध्वस्तम फलति, कर्म जब नष्ट हो गया तो फल देने वाला कौन है? तो कहने लगे पुरुष आराधना मृति, पुरुष की जो आराधना उसकी जो भावना वो ही फलीभूत होती। और आप सिद्धांत पढ़ते ही हो कि जन्म भी हमारा जो होता है वो हमारी वासना के अनुसार, हमारी कामना के अनुसार होता है। ये हमारी वासना, ये हमारी कामना ही हमारा साथ देती है और इसी के अनुसार हमें जन्म भी मिलता है और इसी के अनुसार हमारा सारा का सारा जो प्रवृत्ति मार्ग है वो चलता। लेकिन निवृत्ति में जाओगे तो वहां पर भी फलीभूत क्या होगा? तो कर्म फलीभूत नहीं होगा। फलीभूत होने वाली कौन चीज है? उस कर्म में जो तुम्हारा भाव है, उस कर्म में जो तुम्हारी वासना है, उस कर्म में जो तुम्हारी आराधना है, वही क्या होती है? फलीभूत। तभी तो जो है जैसे अंत में मति होगी वैसी गति होगी, ये सब चर्चा करते तजंते अंत कलेवरम आदि की जो चर्चा। तो इस प्रकार से वहां पर संकेत किया और आगे संकेत कर दिया क्या है? कि इस प्रकार से जब जिसने देख लिया संप्रेक्ष कृतस्व फलदान प्रतिभोवम अतस्ताम संप्रेक्ष, अतः इस कारण से असमान हेतुना, इस कारण से ऐसा होने के कारण, ऐसा नियम होने के कारण कहा क्या है? अतस्ताम संप्रेक्ष, जिसने ऐसा देख लिया अर्थात कर्म का फल देने वाले तुम हो, लेकिन कैसे देते हो? तो आराधना भावना के अनुसार, उसके भाव के अनुसार फल देने वाले तुम हो। और ये जब उसके ज्ञान में आ गया, ये उसने जान लिया है संप्रेक्ष, सम्यक रूप से ऐसा उसने प्रेक्षण कर लिया, ऐसा उसने देख लिया है क्या है कि फलदान प्रतिभुवम, उस फल के प्रति क्या है का तुम है भू माने फल देने वाले तुम हो, तब क्या करेगा? श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा दृढ़ परिकरा कर्मसुजन, तब तुम जो है श्रुति में श्रद्धा रखते हुए श्रुति के आदेश को स्वीकार करके, वहां ने श्रुति के लिए संकेत किया, उसके आदेश को स्वीकार करते हुए और कटिबद्ध होकर के और कर्म करो, फिर क्या होगा? तो कहा न माम कर्माणि लिप्पन्ति वाली बात है, कुर्वन्येव हि कर्माणि, फिर तुम कर्म करते रहो, वो कर्म तुम्हें लिपायमान नहीं कर। क्यों? अब आपने यथार्थता को समझ लिया और ऐसा करके जो है तुम कर्म करो तो वो कर्म तुम्हारे लिए सार्थक होगा, इस लोक में भी तुम्हें सार्थकता देगा, परलोक में भी सार्थकता देगा और लोक परलोक से रहितता में भी सार्थक होगा। ये संकेत वहां किया। तो इस प्रकार से यहां संकेत करते, ऐसा जो सार है सत क्या है असत क्या है, ऐसा जब विचार करके विवेक हम कर लेते हैं और विवेक करके हम असत से अपनी आसक्ति हटा देते हैं, अपनी भावना हटा देते हैं, तो भाव का हटना कर्म में से ही होता है। कर्म का स्वरूप से त्याग की चर्चा कहीं नहीं की। कर्म का स्वरूप से त्याग नहीं करना, कर्म का किससे त्याग करना है? भाव से, भावना से। उसमें भावना क्या बनानी है, उसमें उद्देश्य क्या बनाना, और ये जीवन में आ गया तो हम क्या हो गए? तो मार्गन करने के हैं, मार्गी हो गए। और जब तक ये नहीं आता है तब तक हम मार्गी भी बन पाते नहीं। और मार्गी बनते भी हैं तो कैसे मार्गी हैं? तो कहने लगे अपाहिज मार्गी है, अपाहिज मार्गी हैं। और अपाहिज जो है मार्गन करेगा तो बेचारा कैसे चलेगा, तो उससे मार्गन होगा नहीं, वो सफलता प्राप्त नहीं कर। तो वही यहां पर संकेत करते हैं कि इस प्रकार से हमको जो है क्या करना है कि इन सारे बलों से जो पूर्व में चर्चा कर दी उनको आप बलों को प्राप्त करो। और वो बल क्या हैं? तो जब हमने ये समझ लिया कि सारी व्यवस्था देने वाला एक वह है जिसे हमने व्यापक तत्व करके कहा था, वही परम शिव है, उसकी सारी व्यवस्था भी है, उसके बगैर कोई व्यवस्था बन नहीं सकती, और वही सत है, ऐसे उसका ही हम आश्रय लें, ऐसे उसकी हम शरण लें, वही सार है, और ऐसे उस सार को प्राप्त करने के लिए हम अपने जीवन में जो है कर्म करें। तो ये जब कर्म करने की हमारी जिज्ञासा आती है, ये हमारी ललक आती है, तब हमारे हृदय में आग आती है, अर्थात वह सच्ची जिज्ञासा आती है, और उसी जिज्ञासा के द्वारा क्या होता, कहने लगी उसकी प्राप्ति होती, उसी से जो है उसकी प्राप्ति होगी, और कोई उपाय नहीं है, ऐसा संकेत किया। और कहीं पर ले लो, चाहे वह वेदांत मत में, भक्ति मत में, भक्त के रूप में, कर्म के रूप में, कहीं पर भी ले लो, जब तक ये नियम नहीं आएगा तब तक आप लक्ष्य को लक्षित करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। तो आगे की चर्चा कल करेंगे। ओम
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियो, the 24/7 spiritual channel from shaivam.org.
2: ஓம் சிவாய நமஃ. நீங்கள் கேட்கவிருக்கும் அடுத்த நிகழ்ச்சி சிவ கீர்த்தனைகள். இதில் நீங்கள் கேட்கவிருக்கும் பாடல் பேத்தாலும் மயங்காத. பாடியவர் ஸ்ரீ ராஜாராம் ஐயர். வணக்கம். ஓம் சிவாய நமஃ.

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

नमः ओम मधुरी कोविधि चक्र मुख्य तैलेरपि निगमार्चित पाद पद्मकाग नमः ओम मधुरसफराक्षी सहचराग नमः ओम मधुमधनद्द

0: येन वहासि सहस्रं येन आज्ञेय सर्ववेदसं तेने मै यज्ञन्नो ओनजस्वर्देवेषु गन्तावे
1: प्रस्तरेण परिधिना अश्रुचा वेद्या च बर्हिषा।

0: रिक्तर्पाणिर्न पश्येत राजानं दैवं प्राज्ञम्। खाली हाथ राजा को देखना नहीं चाहिए, मानी राजा के पास जाओ तो क्या करो, कुछ भेंट लेके जाओ, महात्मा के पास जाओ कुछ लेके जाओ, मंदिर में जाओ क्या लेके आओ कि लेके जाओ, लेके जाना चाहिए। रिक्तर पाणि, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इसलिए ये भी आगे आएगा उपनिषद में, समित भार, हाथ में समिता लेके, सगुरु मेवा भी गच्छे समित पाणि ही। अगर गुरु यज्ञ आगादि करता है तो उसके यज्ञ में जो पलाश के लकड़ी जो उपयोग होती है वो लेके जाता है दो चार। इसका अर्थ है कि मैं हर रोज आपके लिए समिधा चयन करूंगा। समिधा माने जो होम में लकड़ी का इस्तेमाल होता है वो मैं हर रोज आपके लिए ले आऊंगा। मैं सर्विस सेवा करने को तत्पर हूं, मानी सेवा की तत्परता दिखाने के लिए हाथ में लकड़ी लेके गए। आप लोग सबने श्री कृष्ण का चरित्र देखा है, सुदामा चरित्र, सुदामा जी और श्री कृष्ण कहां गए थे, जंगल में गए थे समिधा चयन करने के लिए, और वहां बहुत भारी वर्षा हो गई, पूरी रात वृक्ष पर बैठे रहे। तब गुरु जी सुबह ढूंढते ढूंढते गए और अरे अरे कृष्ण अरे सुदामा आवाज लगाए, दोनों कूद के दौड़ के दंडवत प्रणाम किया और गुरुजी इतनी सेवा से प्रसन्न हो गए, ठिठुर गए, खाया नहीं पिया नहीं, भूखे प्यासे पूरी रात मेरी सेवा के लिए गए थे। अब आशीर्वाद दिया किसने, सांदीप ऋषि ने, कि मेरी दी हुई विद्या आपको उपस्थित रहेगी। बहुत बड़ा आशीर्वाद है गुरु जी का कि जो भी मैंने विद्या दी है जब आपको उपयोग करना हो तो आपके दिमाग में बिल्कुल प्रकट हो जाएगी, उपस्थित रहेगी, ऐसा श्री कृष्ण को आशीर्वाद दिया, सुदामा जी को आशीर्वाद दिया। देखो क्या बात है, मान श्री कृष्ण के चरित्र में भी देखा जाता है गुरु की सेवा करते थे। रामचंद्र विश्वामित्र जी की पूजा के लिए पुष्प चयन करने के लिए गए थे। आप देखिए ये सेवा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तो शौन कंगीरथ, एक बात यहां शंकराचार्य महाराज कहते हैं, पहले के आचार्य गए हो के न गए हो विधिवत, अभी के और इसके बाद के आचार्य को ऐसे ही आचार्य के पास शिष्य को जाना चाहिए, देहली दीप न्याय से। एनोलॉजी, पहले के लोग संध्या काल जब बिजली नहीं थी तो अपने ये जो डोर स्टेप में जिसको कहते गुजराती में उमरो दहली में क्या लगा, दीप लगा देते हैं, वो अंदर को और बाहर को दोनों को प्रकाशित करता है। इसी प्रकार ठीक है, और एक अर्थ ये भी हो सकता है कि सब लोग ने किया है आगे हम भी आगे इस प्रकार से करें। अब सबसे बढ़िया बात आती है, तद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गुरु के पास जाओ तो प्रश्न रखना चाहिए, शिष्य जाके प्रश्न करता है, ये नहीं कि प्रश्न की बौछार कर दिया। मैंने कई लोगों को देखा प्रश्न पूछते हैं पर उत्तर देने लगे तो सुनते भी नहीं, ये क्या बात है। प्रश्न, संशय और आकांक्षा, इन तीनों में फर्क है। प्रश्न में हम कुछ जानना चाहते हैं, हम पूछते हैं अगर कि गुरुत्वाकर्षण क्या है तो हम जानना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस क्या है जानना चाहते हैं, तो जहां अज्ञान को दूर करना है वहां प्रश्न है। दूसरा होता है आकांक्षा, अ लीडिंग डाउट, लीडिंग क्वेश्चन, मन में आकांक्षा होती है, कोई कहता है जा रहे हैं, कौन जा रहे हैं, राम जी जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, वन में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये सब क्या है, आकांक्षा। तीसरा होता है संशय, ये है कि ये है ये जानने के लिए संशय, पक्का नहीं हो रहा है क्या है, कर्म से मुक्ति होगी कि ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होगी, ये क्या हो गया संशय, आत्मा एक है कि अनेक है संशय। तो यहां इन्होंने प्रश्न रखा है, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वविदं विज्ञातं भवति। महाराज अंगी जी बताइए, क्या कोई एक चीज ऐसी है जिसको जान लेने पर, पहचान लेने पर सब कुछ जाना सा हो जाता है? ये प्रश्न रखते हैं हमारे शौनक जी। हे भगवः भगवन् सर्वं यदिदं विज्ञेयं विज्ञातं विशेषेणं ज्ञातं अवगतं भवति एकस्मिन् ज्ञाते सर्वविद् भवति। अब कहते हैं ये प्रश्न आया कहां से, प्रश्न का कारण क्या है देखते हैं। शिष्ट प्रवादम माने बड़े बड़े विद्वान बैठ के प्रश्न करते हैं, चर्चा करते हैं कि भाई अगर इसको जान लो तो सब कुछ ज्ञातता हो जाएगा, एक ही चीज है जिसको जानने पे और कुछ जानना बाकी नहीं रहता है, जिनको प्राप्त करने पर सब कुछ प्राप्त हो जाता है, इस प्रकार की चर्चा किन्होंने सुनी है, शौनक ने और विद्वानों से सुनी है, सत्संग में सुना है, इसलिए प्रश्न उनके मन में आया है। शिष्ट प्रवादम श्रुतवां शौनक तत् विशेषम विज्ञातु काम सन कस्मिन्नु इति वितर्कयन प्रपच्छ। उन्होंने सुन रखा है पर उनको मालूम नहीं है, उसको अच्छी तरह से समझने के लिए क्या कोई एक वस्तु ऐसी है जिसका ज्ञान से सब कुछ विज्ञात हो जाता है, अथवा लोक सामान्य दृष्ट्वा ज्ञात्वैव पप्रच्छ, अथवा लोक दृष्टि से हम लोग सब देखते हैं जीवन में, अगर कारण को जान लेते हैं तो सभी कार्य कारण से अभिन्न है, इस रूप से हम जान लेते हैं। कैसे, यथा सुवर्ण के ज्ञान से, सुवर्ण से बनी हुई सब कुछ चीज सुवर्ण है ऐसे मालूम पड़ जाता है। त्रिभुवनदास भीमजी में जाइए, वहां सब कुछ क्या है, सुवर्ण सुवर्ण सुवर्ण, नाम सब अलग अलग है पर आप जानते हैं, अगर सुवर्ण को जानते हैं तो वहां रखी हुई सभी प्रकार के आभूषणों को सुवर्ण के रूप में जान जाते हैं। एक बार पानी को जान लिया, पानी से बनी हुई सभी चीज क्या है, पानी है, भाप क्यों ना हो, बर्फ क्यों ना हो, पानी क्यों ना हो, एनी फॉर्म इट इज व्हाट, वाटर, नदी क्यों ना हो, समुद्र क्यों ना हो, वर्षा क्यों ना हो, ऐसा देखा गया है कि उपादान कारण के ज्ञान से, उपादेय जो भी उससे बना है उसका ज्ञान हो जाता है। अब आप जरा और गंभीरता में देखिए प्रश्न की गंभीरता में, हमारा सबका जो अनुभव है, अनुभव प्रमाण नहीं माना जाता है, जितना अनुभव है वो विचार करने पे सच्चा भी नहीं होता है, experience does not amount to knowledge. Understand? हमारा सबका अनुभव है सूर्योदय होता है सूर्यास्त होता है, है कि नहीं? क्या सूर्य उदित होता है?
1: ना, है ही।
0: क्या सूर्य अस्त होता है?
1: ना।
0: पृथ्वी घूम रही है और हमारी भ्रांति होती है कि सूर्योदय होता है। इसको कहते हैं कि हमारा अनुभव कुछ हो रहा है और हमारा ज्ञान क्या है उससे विपरीत भी हो सकता है। मिराज वाटर, पानी दिख रहा है, वहां मृग जल दिख रहा है, जल दिख रहा है, और हम जानते हैं सच्चा नहीं है। इसलिए अनुभव का अर्थ वो सब सच्चा हो ये ठीक नहीं है। पहले अनुभव की बात करते हैं आपके और हमारे। हम सबने जीवन में देखा है कि कोई भी कार्य हो, बनी हुई चीज हो, जैसे टेबल हमारे सामने है, उसको बनाने के लिए दो चीज चाहिए, ऐसे दो से ज्यादा चाहिए पर दो मुख्य माने, एक तो लकड़ी चाहिए और बनाने वाला सुथार चाहिए, कारपेंटर, ब्रेड एंड बेकर, सुवर्णकार और सुवर्ण, जहां भी देखते निमित्त कारण है, समझदार व्यक्ति मनुष्य और बनाने वाली चीज उससे भिन्न है। ये पुष्प अलग है और बनाने वाला माली अलग है, ये पुस्तक अलग है जिससे बनी है और प्रिंटर अलग है। तो दो चीज होती है, उपादान कारण और निमित्त कारण, सब कार्य के प्रति ये दो कारण है। अब दूसरा हमने देखा है कि दोनों अलग अलग होते हैं। सुतार ये बनाने वाला अलग है और लकड़ी अलग है, ये बहुत अच्छा भी है। हाँ, अगर सुवर्णकार और सुवर्ण दोनों एक होते तो घर में एक माला लाओ सुवर्ण की तो क्या आ जाएगा? सोनी आएगा, उसकी पत्नी आएगी, उसकी सासू सबसे पहले आएगी, पूरा कुटुंब घर में आ जाएगा। अच्छा है, अलग अलग है, यू कांट बाय एनीथिंग आफ्टर वर्ड। तो दुनिया में उपादान कारण निमित्त कारण क्या है? भिन्न भिन्न। अभी देखो मैंने कहा ना, ये अनुभव ज्ञान नहीं हो सकता है। लोग यहां से गड़बड़ करते हैं, दुनिया के जितने विचारक हैं, जितने दर्शन है, वेदांत दर्शन नहीं है, याद रखना, वेदांत प्रमाण है, उन्होंने सबने ये कहा कि जैसे दुनिया जगत में उपादान और निमित्त कारण अलग अलग है, ऐसे जगत का भी कारण जो है निमित्त कारण और उपादान कारण क्या होना चाहिए? दोनों अलग अलग होना चाहिए। यहां से प्रत्यक्ष को देखकर परोक्ष ब्रह्म के लिए ऐसा अनुमान करना ये बिल्कुल बड़ी उनकी क्या थी? गलती थी, मिस्टेक थी। और वो लोग कहते हैं, फिर आर्गुमेंट करते हैं, अगर दोनों एक है तो जगत जड़ है, और जगत कारण अगर मसाला भी उसका बना हुआ है तो वो भी जड़ हो जाएगा। उनको डर है कि भगवान जड़ हो जाएंगे, इसलिए आप देखिए वो लोग कहते हैं गॉड इन हैवन क्रिएटेड दिस वर्ल्ड, ईश्वर ने स्वर्ग में बैठ के ये जगत बनाया। जैसे ऋषिकेश में रोटी बनाते ना, ऐसे ऐसे करके रोटी बना के डालते गए, पृथ्वी आज चंद्रमा ऐसे बना के, ऐसी कल्पना बच्चे जैसी कल्पना करते हैं। अगर सृष्टि से भिन्न सृष्टा होगा तो सृष्टि के बाहर होगा क्या? सृष्टि के अंदर होगा? सृष्टि के बाहर क्या होगा? आकाश के बाहर कुछ होता है? हाँ स्वामी जी, यहां है, तुम्हारे अंदर हो सकता है आकाश, पर बाहर नहीं हो सकता है। इस प्रकार से लॉजिकल फैलेसिस, तर्क असंगत हो जाएगा। और ये बात कोई भी प्रत्यक्ष मूलक नहीं है, ये बात सिर्फ औपनिषद है, ये वेदांत से प्राप्त है, वेद से प्राप्त है कि जगत कारणम ब्रह्म उपादान कारण भी वही ब्रह्म है और निमित्त कारण भी वही ब्रह्म है। जन्माद्यस्तयतः अस्य जगतः जन्म स्थिति भंग यस्मात् ब्रह्मणः, जिस ब्रह्म से ये जगत की उत्पत्ति स्थिति लय होता है वही ब्रह्म है। तद विजिज्ञासस्व, उसको जानो। बहुत बड़ी बात है। इसलिए ये प्रत्यक्ष मूलक अनुमान से सिद्ध नहीं है, श्रुति से प्राप्त है कि जगत कारण ब्रह्म एक है। इसके विषय में कौन प्रश्न कर रहा है? शौनक जी, वो एक है। अब दूसरी बात देखिए, जहां जहां सुवर्ण से बनी हुई माला होगी वहां वहां कौन होगा? सुवर्ण होगा। क्या सुवर्ण की माला सुवर्ण से दूर जा सकती है? नहीं। आपको अगर सुवर्ण देखना है तो किसको देखना पड़ेगा? माला को देखेंगे, सुवर्ण का दर्शन हो जाएगा। और वहां दो है कि एक है?
1: एक ही है, सुवर्ण।
0: सुवर्ण ही है। आप देख रहे हैं माला को, पर सचमुच में माला को देख रहे हैं कि सुवर्ण को देख रहे हैं?
1: सुवर्ण।
0: ऐसा लगता है कि माला को देख रहे हैं, पर देख किसको रहे? सुवर्ण को ही है। इसलिए ये पूरा जगत ही ब्रह्म है। और जिस जगत का अनुभव शब्द स्पर्श रूप रस गंध के रूप में हो रहा है वही क्या है? ब्रह्म है। यद्यत् चक्षुर्भ्याम पश्यति तत्तत् ब्रह्म, यद्यत् श्रोत्राभ्याम शृणोति तत्तत् ब्रह्म। तो महाराज, माला सुवर्ण है? सुवर्ण माला नहीं है। समझ में आता है? अगर सुवर्ण माला है तो सोने की कोई जरूरत नहीं है। जहां जहां सुवर्ण है वहां माला है, कि जहां जहां सुवर्ण की माला है वहां सुवर्ण है?
1: सुवर्ण की माला है वहां।
0: हाँ, वाह, है ना। सुबह तो थोड़ा खोपड़ी चलाना पड़ता है। वेरेवर देर इज द गोल्डन चेन, गोल्ड इज। वेरेवर गोल्ड इज, गोल्डन चेन नीड नॉट बी, है कि नहीं? इसलिए माला सुवर्ण है, सुवर्ण माला नहीं है। जगत ब्रह्म है, ब्रह्म जगत नहीं है। समझ में आया? वाह, इतना बड़ा बात पूछते हैं। अभी देखो, एक टन, कम नहीं बातें, एक टन सुवर्ण से एक एक ग्राम की एक लाख माला, दो लाख माला बनाई है ना। फिर वो ज्वेलर ने बताया, आइए स्वामी जी, प्रेमपुरी के लिए आप कुछ ले जाओ, यहां से आप यहां से एक चीज ले जाओ, आपको जो भी पसंद आए इसमें से एक ले जाओ। मैंने कहा हमको ज्यादा प्रेमपुरी के लोगों को ज्यादा लोभ नहीं है, मैं सिर्फ सोना ले जाऊंगा, माला तुम रखो अपने पास। एक टन के सोने, एक टन सोना कितना होता मालूम है? इतनी माला बनी है, उसमें से मैं सिर्फ सोना ले जाऊंगा, तुम अपनी मालाएं अपने पास रखो। तो उसके पास क्या रहेगा? वो क्या हो जाएगा? वो भी सन्यासी हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। हाँ, अगर मैं सोना ले लो तो उसके पास ठन ठन पाल हो जाएगा। इसलिए अगर सुवर्ण को पहचान लिया तो सब माला को पहचान लिया। सुवर्ण की प्राप्ति सब माला की भी प्राप्ति है। समझ में आया? अभी देखो, अगर जगत कारणम ब्रह्म है, उपादान निमित्त कारण अभिन्न है, अगर मैं वो ब्रह्म हूं तो संपूर्ण जगत किससे अभिन्न है? मुझ आत्मा से अभिन्न है। सब कुछ मैं हूं, फिर आपको क्या चाहिए? इसको कहते हैं सिर्फ वेदांत में सर्वात्म भाव की बात है और कहीं भी नहीं है। ये सब मेरा ही आत्मा है। सर्वम आत्मैव अभूत, जिसके लिए सब आत्मा ही होगा, मेरा आत्मा ही है, उसके लिए को मोह का शोक है, शोक मोह नहीं रहेगा, पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी। करनी नहीं है, प्राप्त है ये जानना है, इसको कहता आनंद है। और कोई इससे परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, यही जानने से समग्र विश्व प्रपंच मुझ आत्मा से अभिन्न है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मई पश्यति। तो लघु प्रश्न मानी छोटा सा प्रश्न किसका लगता है? शौनक जी का। पर अंदर क्या है? बहुत बड़ा गंभीरता है। कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति इति। अब तो बहुत खुश हो गए। कौन? अंगी कुर हो गए। अच्छा प्रश्न है। और श्रोता भी क्या है? प्रबुद्ध है, समझदार है। उन्होंने शुरू किया द्वे विद्ये वेदितव्य। दो विद्या है जो सबको जाननी चाहिए। सब मनुष्य को दो विद्या का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। कौन सा है? पराच अपराच। पराविद्या अपराविद्या। पराविद्या क्या है? जो परमात्मक विषय विद्या, जिसमें परमात्मा का ज्ञान हो। हमको प्रातस्मरणीय स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने एक बार बताया, तब हमको ख्याल आया कि सभी उपनिषद देख लेना बेटा, कहीं भी परमात्मा शब्द नहीं मिलेगा। आत्मा वा इदम अग्रे आसीत, सब जगह क्या शब्द है? आत्मा आत्मा। परमात्मा शब्द कहीं भी नहीं है। और जहां जहां परमात्मा शब्द है, परस्मात् अभिन्न आत्मा इति परमात्मा का है। वो परब्रह्म से अभिन्न आत्मा का नाम परमात्मा है। परमात्मा शब्द भगवान के लिए उपनिषद में कहीं भी प्रयुक्त नहीं है। आश्चर्य है। तो यहां कहते हैं जो परब्रह्म के विषय का जो ज्ञान है, परब्रह्म का जो ज्ञान है, उसको कहते हैं पराविद्या। दुनिया में दो ही चीज है, एक तो चैतन्य स्वरूप आप, बोध स्वरूप आप, और दूसरा ये बोध स्वरूप आप जिसके विषय में जानते हैं वो आपके द्वारा प्रकाशित जगत। कॉन्शियस मी एंड व्हाट आई एम कॉन्शियस ऑफ, ओनली टू। आत्मा जो सबको जानता है और जिसका ज्ञान होता है वो क्या है? अनात्मा। दो ही है, जानने वाला आत्मा, जिसको जानता है वो क्या है? अनात्मा। ठीक है, तीसरा कोई है? अगर शंख चक्र गदाधारी पद्मा भी आ गए तो भगवान भी क्या हो जाएंगे? हैं? अगर मैं देखूंगा उनका शरीर भी अनात्मा, मेरा भी अनात्मा, आपका भी अनात्मा, पर आत्मा जो परमेश्वर का है उसको मैं नहीं देख सकता है, तो आत्मा ही रहेगा। यद विदितम, जो भी हो वह अनात्मा है। दो ही पदार्थ, तो देखो उपनिषद क्या है, गीता में भी क्षेत्रम क्षेत्रज्ञ, पुरुष प्रकृति ही, आत्मा अनात्मा, दो ही चीज है। तो ज्ञान भी कितना होगा? दो ही। आत्मा का ज्ञान पराविद्या, अनात्मा का ज्ञान अपराविद्या। क्या बात है, दो ही है, तीसरा संभव नहीं है। स्वामी जी मैं तो कंप्यूटर साइंस का इंजीनियर हूं, कौन सा ज्ञान है? अपरा। सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मीन वाणी, ये सॉफ्टली बोलने वाले लोग, सॉफ्टवेयर फैलोस, सॉफ्टवेयर फैलोस, आई एम सॉफ्टवेयर। ओके, आत्मा अनात्मा। मैं जानता हूं एस्ट्रोलॉजी अनात्मा। यहां तो इतना उपनिषद ने बता दिया, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वण वेद शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंदस ज्योतिषम इति तत्र अपरा, ये सबको अपरा बोल दिया। परा कौन सा है? यया तदक्षरम अधिगम्यते, जिस विद्या से ये आत्मा का ज्ञान होता है वही परा विद्या है। चारों वेद, वेदांग और दुनिया में जितनी विद्या है सब क्या है? अपरा विद्या। और भगवान शंकराचार्य एक बात और बताते हैं, अपरा विद्या अविद्या एव। अपरा विद्या को अविद्या कैसे कहते हैं? क्योंकि जितना हम जानते हैं, कोई भी विद्या का अध्ययन करो इतना जानते हैं कि कितना नहीं जानते हैं। आप जैसे पढ़ते जाओगे तो आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा कि आपको ये मालूम पड़ेगा, अरे अभी इतना पढ़ने का बाकी है, इतना पढ़ने का और बाकी है, हमको तो कुछ मालूम ही नहीं है। इट रिवील्स व्हाट? मोर इग्नोरेंस। और दूसरी बात, अपरा विद्या अपना स्वरूप का जो अज्ञान है उसको दूर नहीं करती है, उसको बनाए रखती है, इसलिए वो क्या है? अज्ञान स्वरूप ही है। बहुत बढ़िया बताया। अभी कल एक दिन और मेरे पास, कल सुबह परा विद्या क्या है थोड़ा अपरा का निर्णय करके मैं एक मंत्र उपनिषद का सुनाऊंगा आपको। यदा पश्य पश्यते रुक्मवर्णम कर्तारमीशम पुरुषम ब्रह्मयोनिम तदा विद्वान पुण्य पापे विदुय निरंजनम परमम साम्यम उपैति नित्यम। बहुत बढ़िया मंत्र है, कल आपको सुनाएंगे। ओम शांति शांति शांति।
2: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
3: Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Ilayankudi Maranayanar Puranam, presented by ஸ்ரீ சிங்கப்பூர் சங்கர நாராயணன். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
4: ஓம் நம சிவாய். பக்தோ, ஆஜ் ஹம் சுனேங்கே ஔர் ஏக் நாயன்மார் இளையன்குடி மாரர் கி கஹானி. யே தமிழ்நாடு மே ராமநாத்புரம் ஜிலே கே க்ஷேத்ர இளையன்குடி கே நிவாசி இளையன்குடி மாரர் ஏக் சம்ருத் கிருஷக் தே. மாட்டி மே ஹல் சலாகர் வே அம்ருத் மே அன்ன பேதா கர்த்தே தே. உன்கே பரிஷ்ரம் சே கேதி சோனா உகல்தி தி. இளையன்குடி மாரர் சிவ பக்தோ கே தாஸ் தே. பிரத்யேக் பதிக் மே உன்ஹே சிவ கி சிவ ஹி திகாய் தேதே தே. பதிக் கோ ஆதர் சமித் ஆமந்திரித் கர்த்தே தே ஔர் உன்கா சம்மான் பூர்வக் ஆசன் பிரதான் கர் விவித் வியஞ்சனோ சே யுக்த் போஜன் கர்வானா ஹி உன்கி சாதனா தி. இஸ் பாதி இளையன்குடி மாரர் கே யஹா சதாவ்ரத் குலா ரஹதா தா. இளையன்குடி மாரர் கே மஹத்வ கோ உஜாகர் கர்னே கே லியே தில்லை கே சுவாமி சிவ நே ஷனை ஷனை யானி கி தீரே தீரே से उनकी धन संप्रदा चिति को निर्धनता में बदल दिया। यह शिव की ही परीक्षा थी। कालांतर में उनकी समस्त संपत्ति समाप्त हो गई, पर उनकी अतिथि सेवा की भावना अभी भी दृढ़ ही थी। यहां तक कि वो नितांत कंगाल हो गए। वर्षा ऋतु ऐसा समय भी आया कि एक दिन वर्षा ऋतु थी, घर में अन्न का दाना भी नहीं था, पति पत्नी दोनों निराहार ही सो गए थे। उस समय शिव एक तपस्वी का रूप धारण कर इलायनकोडी मारर के घर पहुंचे। भक्त ने इलायनकोडी मारर ने उनका स्वागत किया, उन्हें आदरपूर्वक अपने घर में बिठाया और उनके शरीर को स्वच्छ वस्त्र से पोंछकर विश्राम करने को कहा। अतिथि को भोजन देने के लिए घर में एक दाना भी नहीं था, घर में कुछ भी भोज्य पदार्थ नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी से परामर्श किया और रात्रि के अंधकार में भी सुप्रयास कुछ दिन पूर्व बोए बीजों को बटोर कर लाए, छप्पर की लकड़ी काटकर ईंधन जुटाया। वर्षा में भीगते हुए ही घर के पिछवाड़े में उग रहे आधे उगे साग को अंधेरे में टटोल टटोल कर उखाड़ कर ले आए। साग को उखाड़ना मानो पुनर्जन्म रूपी पौध की समूल उखाड़ना था। पत्नी ने अन्न और साग का स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किया। अतिथि को भोजन खिलाने के लिए बरामदे में आने पर हिरण कोड़ी मारर ने देखा कि एक अद्भुत ज्योति थी। ज्योतिपुंज से एक स्वर उठा, वत्स, मैं प्रसन्न हूं। जीव मात्र की भूख शांत करने में तुम सदैव तत्पर हो। अब चलो मेरे संग। और प्रभु ने सपत्नी अपने दिव्य लोक में ले गए। चकिलर ने इस कथा की महत्व को अद्भुत ढंग से अभिव्यक्त किया है। यदि मारर ने केवल भस्मधारी शिव भक्तों को ही अन्न खिलाया होता तो वह धार्मिक निष्ठा का परिचय होता। प्राणी मात्र के प्रति प्रेम का परिचय उनके धार्मिक भेदभाव को त्याग कर मानव मात्र की भूख मिटाने के नियम से चलता है। चिक्किलर का कथन है। चिक्किलर जो कि तमिलनाडु के बहुत बड़े कवि थे, उनका कथन है। राह चलते हर पथिक को शिव का भक्त मानकर मारर अपने घर ले जाते थे और बड़े प्रेम से भोजन कराते थे। तमिलनाडु में प्राचीन काल से ही अन्नदान को महादान माना जाता है। संगम साहित्य की पंक्ति बभुक्षार रोग का समर्थक चिकित्सक और पंच महाकाव्यों में प्रसिद्ध पंक्ति अन्नदाता जीवनदाता है इसी भाव को दर्शाती है। कालांतर में धर्म और संप्रदायों की विभिन्नता होते हुए भी लोग कम से कम अपने धर्म या संप्रदाय के मानने वालों को अन्नदान करना अपना कर्तव्य मानते थे। लेकिन इलायन कोड़ी मारर ने बिना अपने धर्म या परम या पराय धर्म न जानते हुए भी हर व्यक्ति की भूख को मिटाने का प्रयास किया। इसीलिए वह कहते हैं प्रभु के समस्त भक्त आएं और अन्न ग्रहण करें। इससे यही शिक्षा मिलती है कि धर्म और संप्रदाय के भेदभाव को भूलकर मानवता को अन्न या भोजन खिलाना ही उत्तम संस्कार है। ओम नमः शिवाय।
3: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाय डे। वी नाउ होस्ट मोर देन 25,000 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
5: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
6: Ambha mane jal, ambhoja mane kamal, pada eva ambhoja, pada ambhoja yane charan kamal. भगवान शिव के जो चरण कमल हैं, भजा उसी की तुम सेवा करो। यदि मृत्यु पर भी विजय पाना चाहते हो तो रटा रट खटा खट छोड़ो, उसके चरण पकड़ो, उसकी सेवा करो। भज सेवायाम, सेवा करो। संवर भजा परम सौख्यम ब्रज सुधी। तुम्हारी बुद्धि तो बहुत अच्छी है विद्वान हो, लेकिन ये बुद्धि अच्छी होने पर भी कुपात्र में जाता है ना, तो अच्छी भी बुरी हो जाती है। हैं? छाछ बहुत अच्छी चीज है ना, गुजरातियों के लिए तो बहुत ही अच्छी है। हैं? छाछ बहुत अच्छी चीज है, शास्त्रकारों ने तो यहां तक कह दिया है। हाँ, तक्रम सक्रस्य दुर्लभम। ये जो छाछ है स्वर्ग में इंद्र को कभी नहीं मिलता है, है? छाछ पीने के लिए तो गुजरात में आना पड़ेगा उसको। है? खाना खाने के बाद एक गिलास छाछ पी लो, थोड़ा सा नमक और जीरा डालकर सारा भोजन उपशम है, खाया हुआ सब पच गए। समझे कि नहीं? हूं समझे। ये देख लो सुधी, लेकिन वही छाछ, इतना अमृत तुल्य छाछ यदि किसी पित्तल के बर्तन में रखोगे तो क्या होगा, जहर बन जाएगा कि नहीं, मृत्यु का कारण बन जाएगा है? तो अच्छी वस्तु भी कुपात्र में होने पर घातक होता है। तुम्हारी बुद्धि तो अच्छी है लेकिन अभी तक कुपात्र में ही उसका प्रयोग हो रहा है। अरे जड़मति, जड़ वस्तु के बारे में विचार कर रहे हो, चेतन के बारे में विचार करो ना भाई। घट बना है, पिंड मृत पिंड से बना है कि मिट्टी से बना है, कि मिट परमाणु से बना है, कि पिंड ध्वंस से बना है, कि कपड़ा बनाया है तो कापूस से बनाया है, कि तंतु संयोग से धागा बनाया है, कि धागा संयोग से कपड़ा बनाया है, कि क्या करोगे इन सब से? मृत्यु से बचाने वाला एक ही उपाय है, शंभोर पदाम्भोजम। पदाम्भोजम शंभोर भज परम सौख्यम ब्रज सुखी। बस एक ही भगवान के चरण में उनकी सेवा करो, तुम बड़े आनंद में रहोगे, बड़े सुखी होगे, और ये घोर समनम परिहरति। और भगवान शिव में ही वो क्षमता है कि घोर समन का भी वो परिहार कर देते, यानी मृत्यु को भी उन्होंने जीता है। इसलिए तुम्हारे सामने मृत्यु उपस्थित हो और तुमने यदि शिव के चरण को पकड़ रखी हो तो मृत्यु अपने आप ही डर के मारे भाग जाएगा। मार्कंडेय ऋषि की कहानी सुना है कि नहीं? मार्कंडेय ऋषि, उनकी आयु नहीं थी, बच्चे में खेलने लगे, प्रारब्ध समाप्त तो हो रहा था, विषयों में खेलते खेलते मस्त थे। नारद जी घूमते हुए गए, ए बेटा क्या कर रहे हो? बोले खेल रहे। अरे भगवान का भजन करो। बोले महाराज नारद जी अभी तो खाने पीने मौज कर रहे, खेलने का समय है, जब बूढ़े होंगे तब भगवान का भजन करेंगे। नारद जी ने कहा कि तू बूढ़ा कभी नहीं होगा, तब तो बहुत अच्छा है महाराज। बोले अच्छा नहीं, अभी मरने वाला है, जिंदा रहेगा तब ना बूढ़ा होगा, तू कभी बूढ़ा नहीं होगा, मतलब अच्छा है तो अच्छा नहीं है, मरने वाला है, हैं? कब? बोले दो मुहूर्त का समय है, तेरे प्रारब्ध को मैं देख चुका हूं, दो मुहूर्त के बाद तेरी मृत्यु निश्चित है। बस अब क्या खेलेगा, क्या हिमराज आएगा ले जाएगा तेरे को, तो वो तो डर गया, मेरी मृत्यु दो मिनट के दो मुहूर्त के बाद है, ओहो तो अब मैं क्या करूं, अब मुझे कौन बचाएगा, कोई है रक्षा करने वाला? नारद जी ने कहा कि हां संसार में और कोई उपाय नहीं है, मेरी मां नहीं, मेरे पिता नहीं, मेरा भाई नहीं, मेरा बेटा नहीं, फिर कौन रक्षा करेगा? न जनको जननी न च सोदरो न तनयो न च भूरि बलम कुलम अवति कोऽपि न कालवशं गतम् भजतरे मनुजा गिरिजा पतिम्। न जनक, तेरा बाप तो तुझे पैदा तो कर दिया, तेरे को भूख लगी हो तो अन्न खाने देगा है, लेकिन जिस समय यमराज सामने आएगा तेरे बाप उस यमराज के पकड़ से बचाने में असमर्थ है। मां 10 महीने पेट में रखा, बड़ा किया, दूध पिलाया, मल मूत्र की सेवा की, अभी भी भूख लगी हो तो दूध पिला सकती है, लेकिन जिस समय मृत्यु सामने आएगा तेरी मां भी रक्षा नहीं कर पाएगी। तेरा भाई सहोदर, अन्यत्र यदि कोई दुश्मन सामने आए तो उसको मार भगाने में वो मदद कर सकता है, लेकिन तूने ज्यादा संपत्ति कमाई तो उसके भाग हिस्से में मदद कर सकता है, कर सकता है कि नहीं? तुमने ज्यादा कमा ली, अपने नाम पर रखा तो टैक्स पड़ेगा ना, तो क्या करूं, धीरे ज्यादा संपत्ति हो गया, टैक्स पड़ेगा, क्या करूं भैया? बोले आधा मुझे दे दे, टैक्स भी बच जाएगा। मदद कर सकता है कि नहीं बोलो, तैयार हो गए कि नहीं बोलो? तुम्हारा भाई यदि तुम्हारे सामने प्रस्ताव लाएगा तो तुम तैयार हो गए कि नहीं बोलो? भाई की मुसीबत को हेल्प करने के लिए तैयार हो गए कि नहीं? हो जाएगा। मैं भी हो जाऊंगा वो। हाँ, तुम्हारे पास कोई समस्या हो तो तुम्हारे हेल्प करने के लिए मैं भी तैयार हो जाऊंगा। हाँ, पैसा ज्यादा है, टैक्स की कोई समस्या है तो लाओ, ट्रस्ट ट्रस्ट को दे दो, बहुत बड़ा ट्रस्ट है, अन्न क्षेत्र चल रहा है, हॉस्पिटल चल रहा है, गुरुकुल चल रहा है, वृद्धाश्रम चल रहा है, ट्रस्ट को दे दो, आयकर से छूट है ट्रस्ट, तुमको कुछ झंझट नहीं, कोई टेंशन नहीं, देख लो हेल्प हुआ कि नहीं। तुम्हारा भाई भी कर सकता है, लेकिन मृत्यु सामने आएगा तो क्या करोगे? कर पाएगा? वो कहेगा बारह, हाँ इससे तो हम मदद नहीं कर सकते तुमको बचाने के लिए, तुमको तो मरना ही पड़ेगा, तुमको ही मरना पड़ेगा। बोले मैं नहीं मरूंगा, किसी और को भेजू? बोले ये नहीं चलेगा वहां, हाँ तुमको ही मरना पड़ेगा, तो रक्षा करने वाला कोई नहीं है। आहा, न जनको जननी न च सोदरो न तनयो न च भूरी बलम कुलम। बादाम खा खा के दंडवत रामदेव की तरह करके शरीर को ताकतवर बनाया, एकदम मजबूत बनाया, स्टील बॉडी बनाया, तो ये यमराज आए तो एक मुक्का मारो, तुम्हारी ताकत यमराज के सामने काम नहीं है। उसका एक वज्र पड़ेगा तुम्हारे उसमें तो खत्म। न च भूरी बलम कुलम आवति कोपि न काल गतम बसम बसम गतम। फिर क्या करे महाराज? कोई रक्षा करने वाला दुनिया में नहीं है, भले एक ही है। भजत रे मनुजा गिरिजा पति। हाँ, वो गिरिजा, गिरी पर्वत, तस्मात जाता गिरिजा पार्वती, पर्वतस्य अपत्यम पार्वती, पर्वत की पुत्री पार्वती, गिरी पर्वत उसकी पुत्री पार्वती, गिरिजा पतिम भजा। किसी क्रिश्चियन ने सुन लिया, देखो हिंदुओं लोग भी गिरिजा का भजन करो कहते हैं, तुम लोग भी चलो गिरिजाघर। रामायण में एक चौपाई लिख दिया तुलसीदास जी ने, पार्वती के ब्याह शादी से पहले, सीता के ब्याह से पहले, शादी से पहले वह गिरिजा पूजन गई, ऐसा शब्द आ गया। शादी से पहले वह गिरिजा पूज माने भगवान शिव के पूजा में गई होगी। तो तुलसीदास जी ने लिखा, देखो ये तुलसीदास जी ने भी कहा गिरिजा पूजन, चलो गिरिजा घर। ये सीता भी पार्वती सब ने गिरिजा का, गिरिजा घर का पूजा की है, तुम लोग भी चलो। बेचारे जो अनपढ़ है, तुम लोग तो नहीं जाओगे, बेचारे गांव के जो अनपढ़ है वो तो मान जाएंगे, हाँ तुलसीदास जी ने लिखा है, शंकराचार्य जी ने लिख दिया है, क्या भ्रम फैला रखे हैं संप्रदाय बढ़ाने के लिए। कुछ नहीं, इससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होने वाला। इसी तरह यह शंकराचार्य जी कह रहे हैं, वृथा कंठ क्षोभम वहसी तरसा तर्क वचसा पदाम्भोजम संभोर भज परम सौख्यम रज सुधी। हे विद्वान हो, उस परमात्मा के चरण की सेवा करो, उसी से तुम्हारा कल्याण होगा, वह घोर समन भी करेगा और तुमको आनंद भी देगा, क्योंकि वह संभू है। शंकराचार्य जी आगे कहते हैं, मनस्ते पादाब्जे निवसतु।

0: தவத்யானே சம்புர் நயனயுகலமூர்த்தி விபவே பரோக்ரந்தான் கேர்வா பரமசிவஜானே பரமத மனஸ்தே பாதாவ்ஜி.
1: கிசி நே கஹா சிவ பக்த சே, வோ தோ பகவான் சிவ கி சேவா மே லகா ஹுவா தா. அரே கியா கர ரஹா ஹே, போலே ஹம் தோ சேவா மே லகே மஹாராஜ். அரே சேவா கரேகா கியா கரேகா, சல் மே தேரே கோ நியாய சாஸ்திர படாவுங்கா, தர்க்க சாஸ்திர படாவுங்கா, படா பாரி வித்வான் பனாவுங்கா. தோ உஸ்னே உத்தர தியா, அரே படனே கே லியே தும் கஹோகே மன் லகா கர பட, கஹோகே நா ஜப் படனே லகுங்கா உஸ் சமயே தும் ஜரூர் கஹோகே கி மன் லகா கர பட. அப் கியோகி மைனே மன் தோ பகவான் சிவ கே தியான் மே லகா தி, தோ மன் ஏகி ஹே மேரே பாஸ், வோ மன் சிவ கே தியான் மே லகா தி. அப் துமாரே சாஸ்திர படனே கே லியே மன் நஹீ ஹோகா தோ தும் தப்பட் மாரோகே, ஹம்கோ நஹீ படனா ஹே. லியோ ஜி, சிவ கே தியான் சே ஹட்டாகர் மன் துமாரே தர்க்க சாஸ்திர படானே மே நஹீ லகானா ஹே. ஹா மனஸ்தே பாதாவ்ஜி, ஹே சிவா யே மேரா மன் ஆப்கே சரண் கமல் மே ஹமேசா லகா ரஹே. நிவசது வச ஸ்தோத்ரே பணிதௌ, ஆர் தும் கஹோகே வியாக்கரண படனே கே லியே சலோ, தோ வியாக்கரண படனே கே லியே தும் கஹோகே கி பாணினிய சூத்ர கோ ரட்டோ, ரட்டனே கே லியே ஐ உண் ரீ லிக் ஐ ஔச் ஹய வரட் லண் யம கண நம் போலனா படேகா. வாணி தோ மைனே சிவஜி கி ஸ்துதி மே லகா தி ஹே, ஏகி தோ வாணி ஹே மேரே பாஸ். அப்ப துமாரே பாணினிய சூத்ர படனே கே லியே வாணி கோ லானா படேகா, வோ வாணி தோ பகவான் சிவ கி ஸ்துதி கான் மே லகா தி. அப்ப ஜப் மே நஹீ படூங்கா துமாரே பாணினிய சூத்ர, தோ சார் தப்பட் மாரோகே தும், ஃபிர் கிஸ் முக் சே மே துமாரே பாணினிய சூத்ர ரட்டூங்கா, பகவான் சிவ கி ஸ்துதி கவுங்கா கி துமாரே பாணினிய சூத்ர ரட்டூங்கா, போலோ. தோனோ ஏகே சாத் தோ ஹோகா நஹீ, முக் கோ உதர் லகா தியா, மன் கோ உதர் லகா தியா. அப்ப கியா படூங்கா மே. மனஸ்தே பாதாப்ஜே நிவசது வச ஸ்தோத்ர பணிதௌ கரௌ சாப்யர்ச்சாயாம். அப் தும் கஹோகே கிதாப் லேகர் ஆவ், அப் ஹாத் தோ பகவான் சிவ கே அர்ச்சனா மே லகி ஹுயி ஹே, ஹாத் காலி ஹோ தப் கிதாப் லாயே. தும் கஹோகே கி லிகோ, ஹா இகோ யணச்சி இக ஸ்தானே யண் ஸ்யாத் சஹிதாயாம் விஷயே அச் பரே ரஹதே. தும் பிரயோக் கர்னே லகாஓகே, லிக்னா லிகோ போலோகே. ஆர் ஹாத் தோ பகவான் சிவ கே அர்ச்சனா மே லகி ஹுயி ஹே, தூசரா ஹாத் தோ ஹே நஹீ, தப் வஹா சே ஹட்டாகர் லானா படேகா தூ லிக்னே கே லியே. மேனே வோ வஹா லகா தி ஹே, தோ அப் மே க்யா லிகூங்கா ஆர் க்யா படூங்கா, போலோ. ஸ்ருதிரபி கதா கர்ணன விதௌ, தும் கஹோகே கி சுன் மே படா ரஹா ஹூன் சுன். அப் துமாரே வியாக்கரண கே பரிபாஷா படூ சுனுங்கா கி பகவான் சிவ கி கதா சுனுங்கா, போலோ. கான் கோ தோ கதா சுன்னே மே லகா தியா ஹே, ஆர் துமாரி க்யா சுனுங்கா மே, போலோ. தவ த்யானே புத்தீர், அப் ஜோ புத்தி ஹே வோ பி பகவான் சிவ கே தியான் மே லகா தி. நயன யுகலம் மூர்த்தி விபவே, தும் கஹோகே கிதாப் ठीक से पढ़, पुस्तक ठीक से पढ़, देखकर पढ़ कहोगे कि नहीं, देखकर पढ़ कहोगे. और आज तो शिव ध्यान में लगा दिया है, और कहां से मैं अक्षर पढ़ूंगा मैं, इसलिए पढ़ने लिखने का काम छोड़ दो महाराज, तुम ही लोग जो करना हो कर लो, हमको मत कहो. तो क्या कहेगा, परेर पर ग्रंथान केरवा, संसार में अनेक शास्त्र है, அநேக சாஸ்திரம் பகுலாச்ச வித்யா, தேக்லோ ஆயு அல்ப ஹே விக்ன பகுத் ஹே, சாஸ்திர ஜாதா ஹே வித்யா பகுத் ஹே ஆயு அல்ப ஹே விக்ன பகுத் ஹே. க்யா கரோ, तो नीतिकार ने कहा यत्सारभूतम तदुपासनीयम। उस अल्प आयु में बहुत विघ्नों के बीच में रहते हुए तुम्हें क्या करना है, तो बोले यत्सारभूतम, सारे शास्त्र में पढ़कर विद्वान होऊंगा। यदि तुम कहोगे तो शास्त्र पढ़कर जो विद्वान होगे उनके तो हाल बता दिया पहले श्लोक में वो क्या तुम्हारी रक्षा कर पाएंगे ग्रंथ, तो क्या करोगे, अहंकार ही बढ़ेगा, मैंने ये पढ़ा मैंने ये पढ़ा, मैं ये सब विद्वान उसको जानता हूं। ये सारभूतम, सारे शास्त्र का जो सार है तद उपासनीयम, हमने तो इतना निश्चय कर लिया है सारे वेद वेदांग सारे शास्त्रों का एक ही सार है भगवान शिव, बस परमात्मा। सबका सार क्या है बोलो, परमात्मा। परेर ग्रंथान केरवा परम शिव जाने परमत। और सब ग्रंथों को शास्त्रों को पढ़कर क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, मैंने तो इतना निश्चय कर लिया है कि सबका सार एक ही शिव है, शिव के अलावा और कुछ जानने की जरूरत नहीं, ना व्याकरण जानने की जरूरत है ना न्याय जानने की जरूरत है। परेर ग्रंथान केरवा, शास्त्र रहे पढ़े रहे, पढ़े रहने दो, ये सब कोई मतलब नहीं, प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं। बस एक शिव का ध्यान करो, शिव की सेवा करो, मनस्ते पादाब्जे, मन से हमेशा शिव का चिंतन करो और वाणी से शिव की स्तुति गान करो, करो चाभ्यर्चायाम, हाथ से भगवान शिव के ही प्रतिम को की सेवा करो, श्रुतिरपि कथा कर्णन कान है तो उनकी, क्योंकि उन्होंने दिया है ये सारे साधन, किसने दिया है, शिव ने ही दिया है। ए कोई वैष्णव हो तो ये नहीं कह देना हो कि शिव शिव कह रहा है, विष्णु नहीं कह रहा है, परमात्मा ने दिया है, समझे कि नहीं, मैं बीच बीच में परमात्मा बोल दिया करता हूं, खाली शिव शिव करेंगे तो वैष्णवों को थोड़ा बुरा लग सकता हो, परमात्मा ने दिया है। अब हो गया काम, हमने उस दिन व्याख्या कर दिया था ना परसों, तुम किसका भजन करते हो, कृष्ण का कि परमात्मा का, ये शिव का करते हो कि परमात्मा का, ये क्योंकि परमात्मा पहला है, कृष्ण शिव ये खाली नाम अलग अलग हैं। एक बार कहते हैं अयोध्या के कुछ संत लोग भगवान के दर्शन करने के लिए, बड़ा प्रसिद्ध था, तो वृंदावन चले गए, वहां जाकर देखा तो राम तो है ही नहीं, द्वारकाधीश में किसके मूर्ति है, कृष्ण की है, राम तो है ही नहीं वहां। बोले अरे ये राम तो है ही नहीं, क्या दर्शन करें, बोले यही राम है भाई, दर्शन करो। नहीं नहीं, राम के हाथ में तो धनुष बाण है, इसके हाथ में तो धनुष ही नहीं है। ले जी ये कौन है, किसी ने कह दिया ये तो कृष्ण है। बोले हम तो राम का दर्शन करेंगे महाराज, कृष्ण का नहीं। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने कहा अरे तू यहां क्यों आया अयोध्या से, बोले भगवान का दर्शन करने आया हूं। बोले कर लिया, बोले नहीं, क्यों, राम तो है ही नहीं तो मैं क्या करूं। कृष्ण ने कहा कि मैं ही तो हूं, बोले तुम तो कृष्ण हो, बोले मैं अयोध्या में राम होता हूं यहां कृष्ण होता हूं वही है, मैं वही हूं, नाम फर्क है, अयोध्या में मैं राम होता हूं यहां कृष्ण होता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा तुम ही हो यहां कृष्ण होकर बैठे हो, बोले हां। फिर वो काशी गए तो काशी में तो न राम है न कृष्ण है भाई, क्या है, अब किसका दर्शन करें भाई, न राम का न कृष्ण का, बड़े दुखी हो गए। वापस जा रहे थे तो भगवान शिव ने कहा कि क्या क्यों आए हो, बोले दर्शन करने आए थे, क्या दर्शन, बोले नहीं महाराज, क्यों, बोले न राम है न कृष्ण है तो क्या दर्शन करें, बोले मैं ही तो हूं भगवान, बोले तुम तो शिव, बोले हां हां, अयोध्या में राम, वृंदावन में कृष्ण, काशी में शिव, हे भगवान मैं ही हूं, खाली नाम फर्क है, मैं वही हूं, काशी में शिव, अयोध्या में राम, वृंदावन में कृष्ण। लियो जी और द्वारिका

उसी की सेवा में लगाता हूं, क्योंकि परमात्मा शिव का दिया हुआ साधन का जीवों के सेवा में प्रयोग लगाकर उसके साधन का दुरुपयोग करना है कि नहीं बोलो, दुरुपयोग करना है। हा? जो वस्तु जिसने दी है उसका सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग मत करो। और शिव ने दिया है ये सारे साधन तो उसी की सेवा करने में लगाओ, उसने तुम्हें ही उसकी सेवा के लिए ये दूंगा तो ये ताकि मेरा सेवा करेगा। हाँ, बाणासुर की कहानी सुनी है कि नहीं, उसके दो हाथ थे और उसकी सेवा करने की बहुत इच्छा थी। प्रतिदिन 1,25,000 पार्थिवेश्वर भगवान शिव की मिट्टी का शिवलिंग बनाता था और 1,604 पूजा आवाहन से लेकर विसर्जन पर्यंत 1,604 पूजा करता था, लेकिन दो हाथ से उसको फुर्सत काम ही पूरा न हुए। मिट्टी लाओ, फिर शिवलिंग बनाओ, सब अपने हाथ से करना है ना? तो हम लोग तो कभी पार्थिवेश्वर की पूजा करनी हो तो दो चार मजदूर रख देते हैं, तुम मिट्टी लाना, तुम शिवलिंग बनाना, तुम फूल ले आना, सब दूसरों से करा लेते हैं और कहते हैं कि हमने शिवलिंग की पूजा की। क्या किया तुमने? किया सब दूसरों से, अपने हाथ से करना है। तो करता था, भगवान शिव प्रसन्न हो गए, क्या क्या चाहिए बेटा बोल। तो बाणासुर ने कहा कि महाराज, आपने ये दो हाथ दी लेकिन दो हाथ से आपकी सेवा पूरी नहीं कर पा रहा हूं, तो मेरी इच्छा है कि आप मुझे 1,000 हाथ दो ताकि आपकी सेवा में पूरी की पूरी सेवा कर सकूं। भगवान ने कहा कि अच्छा, तू मेरी ही सेवा करना चाहता है तो मुझे क्या हर जाए, इसलिए आपको दो हाथ दिया है शिव जी ने। वो शिव जी जानते हैं कि आपको 1,000 हाथ देंगे तो संसार की सेवा करोगे है ना? शिव जी जानते हैं तुमको 1,000 हाथ देंगे तो संसार का ही सेवा करोगे, भगवान की नहीं करोगे, इसलिए उन्होंने दो हाथ दिया है तुम्हें। और बाकी हाथ चाहिए तो फिर हायर करना पड़ता है तुम्हें, नहीं? माणासुर को 1,000 हाथ दी तो बस बड़ी सेवा करने लगा। भगवान फिर प्रसन्न हो गए, क्या चाहिए बेटा? बोले, अभी तक तो मैं पार्थिवेश्वर की सेवा करता रहा आपके प्रतीक का, अब मेरी इच्छा यदि आप प्रसन्न हैं तो ये 1,000 हाथ से मैं प्रत्यक्ष आपकी सेवा करूं, मेरे यहां आप आकर बैठ जाइए, प्रत्यक्ष आपके 1,000 हाथ से आपकी सेवा करूं। अच्छा तो कर ले भाई, भगवान शिव आ गए। शिव ने कहा कि मैं अकेले तो आऊंगा नहीं, मेरा कुटुंब परिवार है, हाँ? पार्वती भी आएगी। बोले कोई बात नहीं, पार्वती को आने दो, वो मेरी पत्नी, उसकी सेवा करेगी, मैं आपकी सेवा करूंगा। बच्चे आएंगे, बोले ठीक है उनको भी आने दो, सबकी हम सेवा करेंगे, आपकी कृपा से सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। शिव जी आ गए, बैठ गए, डेरा जमा के बैठ गए। अब शाम को बाणासुर उनके शरीर दबा रहा था, हाँ, मालिश कर रहा था, शरीर दबा रहा था, सेवा कर रहा था। तो भगवान शिव बड़े खुश हो गए, बेटा अब क्या इच्छा है तुम्हारी बोलो। तो बोले, महाराज आपकी बड़ी कृपा है, मेरी हर इच्छा पूरी की है आपने, दो हाथ से, चार हाथ, चार हाथ से, 1,000 हाथ, सब कुछ आप मुझे प्राप्त हो गया है महाराज, और कोई इच्छा नहीं, लेकिन एक ही इच्छा रह गई है, ये 1,000 हाथ जो आपने दिया था इसमें कितनी ताकत है इसको जानने का, प्रयोग करने का कोई स्थान मुझे नहीं मिला, मैं कहां जाकर परीक्षण करूं कि मेरे हाथ में कितनी ताकत है, है? क्योंकि कोई भी मेरे से लड़ने आता ही नहीं है। भुजबनम, पुष्पदंताचार्य जी ने बाणासुर के हाथों की उपमा दी है, भुजबनम, हाथों का जंगल, जब वो 1,000 हाथ खड़ा करेगा तो जंगल होगा कि नहीं, है? रणकंडू या युद्ध करने में खुजली हो रही है, महाराज आपके ये सेवा करके मेरे हाथ का पूरा मजा नहीं आ रहा है, मैं चाहता हूं कि इस लड़ू में मजा लूं, आपके जो हाथ दिया उसमें कितनी ताकत है, कोई है संसार में मेरे बराबर लड़ सके?

भगवान शिव ने कहा कि बहुत हैं बेटा, चिंता न कर, बहुत हैं मुझसे लड़ सके। बोले एक से एक हैं। तो तुम मेरे से लड़ेगा? बोले नहीं, आपसे तो नहीं, आप तो भगवान है, क्या लड़ूंगा मैं आपसे। कहीं वो क्या कहता है पता है? मैं आपसे नहीं लड़ूंगा क्योंकि मेरे पास ताकत ज्यादा है, आप कमजोर है, कहीं एक झटका लगा दिया तो आपकी मृत्यु हो गई तो मुझे पाप लगेगा, आपसे नहीं लड़ूंगा, बोलता है मूर्ख। तो बोले है बहुत, कौन है, कहां रहते हैं वो? बोले ठीक है, धैर्य रख, हो जाएगा। कहां रहते हैं? बोले द्वारिका में। हैं? हैं ऐसे? बोले हाँ। तब फिर वो कब, उनसे हम कब लड़ पाएंगे? बोले प्रतीक्षा कर, जब तेरा ये ध्वजा गिरेगा, राज सिंहासन के जो पताका ध्वजा है, जिस दिन गिरेगा तुझे उनसे लड़ने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। बस उदाहरण का प्रसंग वही तो आ गया ना, लेव जी। हाँ, तो उदाहरण का तो वही वक्खाहरण, उसमें यही जोड़ा जाता है बाणासुर के, बाणासुर की पुत्री का नाम उषा है। उसको स्वप्न हुआ, स्वप्न में एक ऐसा पुरुष आया, बड़ा सुंदर, बड़ा दिव्य, और उसके स्वप्न में स्पर्श सुख इतना दिव्य पाया उसने, जागने के बाद उसी की स्मृति हुई और उसके चित्रलेखा से उसने कहा कि सहेली, रात को स्वप्न में हमने ऐसा देखा है, कौन होगा वो, किस लोक में रहता है, कौन है? मेरी तो अब उसके अलावा अन्यत्र मन जाना ही नहीं, यदि मैं किसी को वरण करूंगी तो उसी को, लेकिन तुम पता लगाओ कि वो कहां रहता है, किसका बेटा है। चित्रलेखा ने कहा कि मेरे लिए असंभव नहीं, पता लगाती हूं। एक एक फोटो बनाते दिखाया, ये था, ये था, ये था, नहीं, इंद्र को बनाया, उपेंद्र का बनाया, नहीं है? देख लो। तो फिर भगवान श्री कृष्ण का बनाया तो यही था, वो भी तो बड़ा खटपटी था ना, है? तो बोले यही था, रात को यही आया था? बोले नहीं, लेकिन कुछ चेहरा मिलता जुलता है। हाँ, देखो प्रद्युम्न का बनाया, हाँ हाँ कुछ तो मिलता है, लेकिन परफेक्ट वही नहीं है। तब अनिरुद्ध का बनाया तो बस यही है। कहां रहता है? बोले जहां भी रहेगा तू क्यों चिंता करती है, पहचान लिया ना तूने? बोले हाँ, ये उसमें रहता है, द्वारिका में। लाओ, कैसे लाते हो? मैं चित्रलेखा गई और चारपाई में सोए थे अनिरुद्ध, उठा के चारपाई सहित ले आई, क्योंकि वो योगिनी थी, योग सिद्ध था उसके यहां, लेके आ गई, ले आओ। तो द्वारिका का अनिरुद्ध स्वर्णपुर में जाकर अवरुद्ध हो गया है ना, चित्रलेखा के घर में वो तो कैद हो गया, वो बंद कर दिया उसने, कहीं जाने ही नहीं दिया। जब पता चला द्वारिका में कि वो अनिरुद्ध कहां गया, तो मीडिया को बुलाया गया, नारद जी, मीडिया है ना, वो तो मीडिया को तो सब पता है। हाँ, गूगल सर्च किया वहां तुरंत, तो नारद जी ने कहा कि हाँ देखो, सोनितपुर में रहता है, बाणासुर के कन्या के यहां बंदी बना है, अब चौमासा है, युद्ध तो करने होगा, चौमासा समाप्त होने के बाद चलो युद्ध करते हैं। बस दल बल के सहित कृष्णा प्रद्युम्ना सब पहुंच गए सोनितपुर, बाणासुर की राजधानी में। उसी दिन उसका छत्र गिर गया, फिर युद्ध हुआ घमासान। तब भगवान शिव ने कहा, कृष्ण को इशारा किया, ये ऐसे तुम पार नहीं पाओगे महाराज। तो शिव को कहा कि आप सो जाओ, वो तो भगवान शिव तो सो गए, खर्राटा लेकर सोने लग गया, और शिव की शक्ति पाकर महासुर शक्तिशाली था, वो सो गए। कृष्ण ने एक एक हाथ काट दिया, तीर चलाते गए, बाणासुर के एक एक हाथ काटे, क्योंकि शिव भक्त थे, मारना तो ठीक नहीं था, बाणासुर शिव भक्त था, मारना तो ठीक नहीं था, हाथ काट दी। तब एक एक हाथ काटे तो केवल दो हाथ बचे थे, तो भगवान शिव जग गए, कृष्ण बंद करो, इसका पहले दो हाथ थे, अभी भी दो ही हाथ रहे, ये ज्यादा हाथ देने से इसको घमंड हुआ था, मेरा है तो मेरा भक्त, फिर भी असुर जाति का होने के कारण आसुरीपना दिखाई पड़ा। अब उसका दंड उसने पाया, अपने उसके सारे हाथ काट दिए, अब रहने दो, अब क्या करें? बोले आपका जो पोता है
ले जाओ ब्याज के सहित ले जाओ, है ना? ब्याज क्या था? उषा, है ना? ब्याज के सहित ले जाओ। भव्य वैष्णव और शैव शक्ति के बीच में क्या दिव्य शादी रचाया गया, और भगवान श्री कृष्ण ने बोनस के सहित अपने पोते को लेके आए, क्या आनंद हो रहा था। देखो करो चाभ्यर्चायाम, भगवान शिव की सेवा करो हाथ से, लेकिन बाणासुर की तरह सेवा करो, लेकिन बाणासुर की तरह घमंड मत करो। बस पर ग्रंथान, ये सब तर्क शास्त्रों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। भगवान शिव कहते इसी से कल्याण होगा जीव का। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।

0: சிவாய. யூஆர் லிஸ்னிங் டு சைவம் .org ரேடியோஸ் 24/7 ஸ்பிரிச்சுவல் சேனல்ஸ் ஃப்ரம் சைவம் .org. ஓம் நம சிவாய.
1: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் .org, தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் சிவ மஹிம்னா ஸ்தோத்ரா இன் ஹிந்தி, ப்ரெசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ தர்மானந்தஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
2: பரந்து ஆப்கே இந்திரியோ கா ஜோ விஷய நஹீ ஐசா துக் ஆ ஜாய் தோ உஸ்கோ சஹன் நஹீ கர் சக்தே. உஸ் சமய பகவான் கோ புகாரே தோ நிச்சித் ஹீ பகவான் ஹமாரே துக்கோ கோ தூர் கர்தே ஹை. பர் உஸ் சமய ஹம் க்யா கர்தே, அப்னே சம்பந்தியோ கோ புகார்தே ஹை. ஸ்வயம் பிச்சாரே ये मौत के खिलौने हैं, स्वयं तो दुखी हो रहे हैं, तो आपको सुखी कहां से कर सकते, आपके दुख को हरण नहीं कर सकते. इसलिए इससे प्रेरणा मिलती है कि ऐसे विषम परिस्थिति में हमें अपने जीवन के विषाद को हटाने के लिए भगवान शंकर का अवलंबन लेना चाहिए. शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राध्याय में बार बार यह प्रार्थना की गई है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु. ये जो मेरा मन है, मंगलमय संकल्प करने वाला हो, शिव मतलब मंगलकारी संकल्प करने वाला होवे, क्योंकि मन ही मनुष्यों के बंधन का और मोक्ष का कारण है. मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो. गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना. जहां पर सद्बुद्धि है वहां पर सारी संपत्तियां हैं, और जहां दुर्बुद्धि है वहां पर संपत्ति ही विपत्ति में परिणत हो जाती है. सारा संपत्ति आप घर में, यदि घर में एक जुआरी शराबी निकल गया, देखो सबको परेशान कर डालता है एक ही व्यक्ति. इसीलिए सद्बुद्धि की प्रार्थना की गई है. चारों वेदों में जो सार गायत्री मंत्र है, इस गायत्री मंत्र में भी केवल सद्बुद्धि की ही प्रार्थना की गई है. धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. भर्गो देवस्य, भर्ग शब्द का अर्थ स्वयं ज्योति रूप परमात्मा, और भर्ग शब्द का अर्थ भगवान शंकर भी होता है. विपत्ति वैचित्र्यार्थ अर्थ वैचित्र्यम, ये कई शब्द है. आप जिस देवता के उपासक हैं उसका अर्थ स्वभावतः निकल आता है. भ का अर्थ भवति यस्मात् इति भ, जिससे संसार होता हो उसका नाम है भ. और र जो है ना, भर्ग में जो र है, र का अर्थ रक्षति इति र, जिसके द्वारा संसार की रक्षा हो. और ग का अर्थ है गति, जैसे सारे नदियों का सरोवर का गति है सागर समुद्र, वैसे ही महाप्रलय में सारे जीवात्माओं की गति ब्रह्म में होती है, भगवान शंकर में होती है. तो भरग का स्वयं ज्योति परमात्मा भी है. आप विष्णु भी अर्थ कर सकते, शिव भी कर सकते हैं. जिसका जो उपास है वैसा अर्थ निकल जाता है. ऐसे भर्गो देवस, भर्ग देव का मैं ध्यान करता हूं, और मान लो आप बड़े भारी महापापी हैं, पाप को दूर करना हो, तो भर्ग का अर्थ है भर्जनात इति भर्ग. भर्जन मतलब कि जैसे एक जाति होती है जिसको बोलते हैं गौण जाति होती है, वह भर्जन का काम करता है. भर्जन मतलब कि चना को भुजना, चावल को भून के दाना बना लेना. जैसे कि भाड़ में भाड़ भूज अनाज को भूनता है, वैसे ही जो हमारे पापों को तापों को भून डाले, नष्ट कर डाले, ऐसे परमात्मा का नाम भर्ग है. तो अपनी दृष्टि के अनुसार भर्ग शब्द के अनेक अर्थ हैं. ऐसे भर्गो देव का मैं ध्यान करता हूं, स्वयं ज्योति परमात्मा का, जो हमारे बुद्धि को सन्मार्ग में लगाए, क्योंकि जब तक सद्बुद्धि नहीं होगी तब तक आप अपने जीवन को सफल नहीं बना सकते। उपनिषद में जहां पर पंच महापातकों की गिनती कराई है वहां पर मांस भक्षण को महापाप में नहीं गिनाया, वहां पर शराब सुरापान को महापाप में गिनाया। स्तेनो हिरण्यस्य सुराम पिबश्च गुरो तल्प आवसन चैते पतंती पंचमा तैसा आचरण। ये उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद मंत्र है। स्तेनो हिरण्यस्य का अर्थ है जो दूसरे के आजीविका को चुराने वाला, ये प्रथम पात की महापात की है। दूसरा है व्यभिचार कर्म करने वाला, पराय स्त्री के साथ संबंध स्थापित करने वाला। तीसरा है ब्रह्म हत्यारा, ब्रह्मलक श्रेष्ठ पुरुषों की हत्या करने वाला। और चौथा है सुरापान जो करता हो, और पांचवा वह है जो चारों के साथ बहु बेटी का संबंध स्थापित करता है। आतंकवादी तो बाद में पकड़े जाते हैं पर उसके संबंधी पहले पकड़े जाते हैं, व्यवहार में भी होता है। इन पांचों को महापात की कहा है। सुरापान में जीव हत्या नहीं। सुनाम धन्य पूज्य पादा खन्ना जी महाराज कहा करते थे कि शराब मतलब कि जल को सड़ा के बना दिया वह शराब, परंतु सुरापान को महापातक में गिनाया। इसलिए गिनाया है क्योंकि शराब पीने के बाद सीधे हमारी बुद्धि कुंठित हो जाती है। मनुष्य में पशु में अंतर केवल बुद्धि तत्व से है। ज्ञान बीन पशु भी समान, यदि ज्ञान नहीं है विवेक नहीं है तो आप पशु के समान है। तो जो हमारे अंदर बुद्धि तत्व है उस बुद्धि तत्व को शराब तत्काल जाकर नष्ट करता है, इसलिए शराब को या सुरापाय को महापातकी में गिना है, मांस भक्षण को महापातकी में नहीं गिनाया है। क्योंकि तो मांस खाने से तत्काल या 10-20 वर्ष के बाद भी हमारे बुद्धि कुंठित नष्ट नहीं होती, वह एक खाद्य है, भोजन है जीव का। हाँ जीव हिंसा जरूर है परंतु महापातक नहीं है, परंतु शराब जो पीता उसकी तत्काल बुद्धि नष्ट हो जाती है, इसलिए इसको महापातक में गिनाया है। और भगवान श्री कृष्ण भी गीता में स्वयं कहते हैं बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि नष्ट हो गई तो आपका सर्वनाश हो गया। जीवन में बुद्धि है विवेक है तो आप चाहे कितने भी निचले पायदान पर हो बुद्धि से आप अपने ऊंचे मंजिल को हासिल कर सकते हैं, इसलिए सुरापान को महापातक में गिनाया है। तो यहां पर बुद्धि की प्रार्थना किया है। तो हमारे जीवन में जब भी ऐसी परिस्थिति दुख की घड़ी आए उस समय हमें जैसे कि देवताओं ने असुरों ने भी अपने सम्राट जो असुर पक्षपाती है बलि, देव पक्षपाती भगवान विष्णु, पर हमारे भगवान शंकर किसी के पक्षपाती नहीं, निष्पक्ष देवता है। असुर उपासना करे तो उसको भी वरदान दे देंगे, भस्मासुर को दे दिया और स्वयं ही संकट में पड़ गए। ऐसे भगवान अवघरदानी आशुतोष शंकर भगवान है। सकलमास कंठे तव न कुरुते न श्रिय महो, और जो भगवान शंकर के गले में कलमास मतलब की जो नीला नीला जो हलाल बीस पान करने धब्बा पड़ा है वो आपके ऐश्वर्य को शोभा को बढ़ाता है। जैसे छोटे बच्चे की माताएं श्रृंगार करती हैं, श्रृंगार के बाद काजल जो है ना टीका लगाती है, उससे जो है उसके सौंदर्य में निखार आता है। वह जो काजल की जो टीका है ना वह जो है कोई जो है शोभा को बिखेरता नहीं बल्कि शोभा को बढ़ाता है। पिकारो पी श्लाघ्यो टेढ़ा मेढ़ा चंद्रमा भी भगवान शंकर के मस्तिष्क पर जाकर सुशोभित हो जाता है, यमासितो बक्रोपी शोभते। दुर्बल से दुर्बल भी व्यक्ति राजा या महामंत्री राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सहारे बड़े से बड़े पहलवान को भी दबा देता है, बिल्कुल दुर्बल, क्योंकि उसको सहारा प्रधानमंत्री का है, राजा का है। ऐसे ही चाहे हम धनहीन हो या बलहीन हो, कैसे भी हो, यदि हमारे जीवन में भगवान का आधार हो, हम भगवान को आधार बना लें, तो फिर इस संसार की समस्याएं हमें व्यथित नहीं कर सकती हैं। एक बहुत प्रसिद्ध राजस्थान में माघ कवि हुए हैं, कालिदास, माघ और बाण, ये तीनों अपने जमाने के महान कवि हुए हैं। कालिदास की उपमा और माघ की वाक्य विन्यास बड़ा ही सुंदर है। तो माघ कवि ये मालवा क्षेत्र के आसपास हुए हैं। एक बार बड़ा ही दुष्काल हुआ, दुष्काल पड़ने के बाद पत्नी ने बार बार कहा कि राजा आपको बार बार बुलाते हैं पर आप कभी नहीं जाते हैं, और इस समय आपकी प्रजा बहुत पीड़ित है जहां रहते हैं वहां, इसलिए आप कृपा करके राजा के पास जाइए। फिर भी पंडित जी ने मना कर दिया, क्योंकि पंडित का ऐश्वर्य है त्याग में, साधु ब्राह्मण का ऐश्वर्य त्याग में है। जब पत्नी ने बहुत कहा कि घर में खाने को कुछ भी नहीं है, बच्चे भूखे हैं, पत्नी के हट को देखने के बाद मजबूरन माघ को राजा के पास जाना ही पड़ा। कई बार होता है ना, आप नहीं चाहते हैं परंतु श्रीमती जी की चाबी ऐसी घूम जाती है ना कि न चाहने पर भी करना पड़ता है, हैं? ऐसे यहां पर भी पत्नी के हट के कारण से माघ कभी अपनी पोटली में चावल बांध कर चल पड़े। जब मालवा नरेश के पास पहुंचे, बड़ा स्वागत किया, कई दिन तक उनको राज में ठहराया। राजा ने पूछा कि मैंने आपको कई बार निमंत्रित किया पर आप कभी नहीं पधारे, इस समय आने का क्या प्रयोजन है? माघ कवि ने साफ साफ बतला दिया, इस समय धन की इच्छा से आया हूं, क्योंकि हमारे गांव में बड़ा भारी अकाल है और हम अपनी पत्नी की प्रेरणा से यहां पर आए हुए हैं। राजा ने 10 घोड़ों में पूरा सामग्री सोना चांदी भरकर विदा किया। 10 घोड़े लेके माघ कवि आए रास्ते में, जहां रात को रुकते वहां पर सब जो है गरीबी से परेशान प्रार्थना करते कुछ समय दे दीजिए। रास्ते भर में 10 घोड़ों के सारे सामान गांव में बांट दिए। अंत में जब घर पहुंचे खाली हाथ, पत्नी देखी कि हमारे पतिदेव घर में पधारे तो सही, परंतु मुख पर बहुत मालिन्य, बहुत उदासीनता, सिर नीचे करके बैठे। धर्मपत्नी समझ गई पति के पीड़ा को कि राजा ने बहुत कुछ दिया इन्हें, परंतु रास्ते में सब जो है ये बांट करके गरीबों को वितरित कर खाली हाथ लौटे हैं। पत्नी ने कहा कि आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे बादल जलती हुई धरती पर वर्षा करके सिंचित करके प्रसन्न होता है, निर्मल शांत हो जाता है, और बादल किसी भी शोभा भी होती है, इसी प्रकार से आपने रास्ते के दीनहीन गरीबों को राजा के धन को बांटते हुए यहां पर पधारे, तो आप खाली हुए रिक्त इसी में आपकी शोभा है। आजकल की धर्म पत्नी होती तो क्या बोलती, बल्कि तुम्हारे पांडित्य को, विद्या को, ये दर्शन को धिक्कार है, सब बेकार है। इतना तो देखना चाहिए कि पत्नी भूखी है, घर में कुछ नहीं है, तुम रास्ते में लुटा के आ गए, सीधा ऐसे ही बोलती। पत्नी बोलती पहले अपने घर को देखो, बाद में गांव को देखो, फिर दूसरे को देखो। परंतु पत्नी भी ऐसी जो है पतिव्रता थी कि पति के भाव को समझ करके उनको पीड़ित नहीं किया। तो अकांड ब्रह्मांड ऐसे समय में भी यदि हम भगवान की सहारा लें तो भगवान निश्चित ही सहयोग करते हैं। वो पत्नी ने कहा, ये जो आपका कलमास, कलमास मतलब मुख मालिन्य, कि आप रास्ते में धन को वितरित करके जब घर पहुंचे तो उदासीन हो गए कि मैं कुछ भी नहीं लाया इनके लिए। जिनकी प्रेरणा से मैं राजा के पास गया, पत्नी की प्रेरणा से, बच्चों की प्रेरणा से, पर यहाँ आने के बाद खाली हाथ। यह जो आपकी उदासीनता या आपकी शोभा, एक कलमास शोभा बना रहा है, ऐसी भगवान शंकर के गले में जो नीलिमा है, ये जो है समझो कि एक उनका प्रसिद्ध नीलकंठ नाम भी पड़ गया, शोभा बढ़ा रहा है। ऐसे हमारे जीवन में जब भी ये रात दिन रूपी मथाने जो चल रही है ना, इससे जब विषाद आए तो विषाद का जो धब्बा पड़ता है ना अंतःकरण में, अमुक ने हमें पीड़ा पहुंचाई, अमुक ने हमें कटु वचन कहा, अमुक ने तिरस्कार कर दिया, यह जो धब्बा है इस धब्बे से हमारे जीवन में निखार आता है और यह हमें सावधान करता है। शत्रु और मित्र में यही अंतर है कि सातनात त्रारणात शत्रु, जो आपको हर तरह से सावधान करके त्रांगमल रक्षा करे उसका नाम शत्रु है, और मित्र मान सम्मान करके सन्मार्ग में प्रेरित करता है, इसलिए इसका नाम मित्र है। तो यहां पर भी जो भगवान शंकर के गले में कलमाश है वह शोभा बढ़ाता है, ऐसे ही इस जीवन में जीवो शिव एवं, जीव यदि अपने असली स्वरूप को पहचान लिया, यह भी साक्षात शिव ही है, और अपने स्वरूप को नहीं पहचाना तो सब हो जाता है। सब मतलब कि जिससे कि सभी नफरत करते हैं, जब अंदर से शिव निकल जाता है तो इस शरीर से अपने स्वजन भी घृणा करते हैं, जल्दी हटाओ संसार में ले जाओ। तो यह जो हमारे जीवन में विषाद है, यह हमारे जीवन को पवित्र करता है, निखार लाता है। भुवन भय भंग व्यसनिनः, भगवान शंकर का विशेषण है कि संसार के भय को भंग करने का व्यसन है, स्वभाव है। चाहे आपको जैसा भी भय हो, आर्थिक मंदी का भय, भय लोगों को सता रहा ना, बहुत आर्थिक मंदी आ गई, या किसी को सामाजिक भय हो, या मौत से भय हो, सारे भयों से अभय बनाने वाले, इसलिए भगवान शंकर का नाम एक अभयंकरा है, जय जय शिव सुंदरा और अभयंकरा, अभयंकर कहते हैं। एक दक्षिण भारत में सुंदर नामक भगवान शंकर के अनन्य भक्त हुए हैं, जैसे कि गुजरात में नरसिंह मेहता की कथा है कि नरसिंह मेहता के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सब कुछ किया, वैसे ही सुंदर नामक भक्त के लिए भगवान शंकर ने सब कुछ उसके लिए बन गए। तो सुंदर भगवान के अनन्य भाव से भक्ति करते थे। जब जवान हुए तो जवान होने के बाद इनके पिता का नाम था जटिल और माता का नाम था ज्ञानवती। दोनों ने सुंदर की सम्मति से एक विद्वान ब्राह्मण की कन्या से विवाह प्रारंभ किया। जैसे ही विवाह की तैयारी हो गई, लग्न पत्री भी छप गई, बट गई, सारे लोग इकट्ठे हो गए, इतने में भगवान शंकर एक बूढ़ा ब्राह्मण का वेश बनाकर बहुत जीर्ण शीर्ण लाठी टेकते हुए विवाह मंडप में पधारते हैं। जब कोई इस प्रकार से ब्राह्मण आए बिना सूचना के, तो सभी स्वागत करते हैं। उनको देखकर सभी खड़े हुए, बच्चे तो ताली पीट के हंस रहे थे, बुढ़ापे पर अक्सर होता है, बूढ़े को देख के बच्चे बहुत हंसते हैं, कैसे वो खांकता है, कैसे वो लाठी टेक के कांपते हुए चल रहा है। हम भी बच्चे थे ना, हमको याद अपने बचपना की भूल, हम बूढ़े को बहुत चिढ़ाते थे, कंकड़ भी मारते थे हम लोग बच्चे मिल करके, जो क्रोध करे तो और खुश होते थे। तो बच्चे जो है ना बूढ़े को चिढ़ाते, यहाँ पर ही बच्चे तो चिढ़ा रहे। जब मंडप में पहुंचे तो बड़े बड़े लोग स्वागत किए, नमस्कार किए, उनका चरण धो करके जटिल ने कहा कि मैं बड़ा धन्य हूं जो आप शुभ मुहूर्त में हमारे यहाँ पधारे हैं, आप पधारने का कारण बदलाइए। उस वृद्ध ब्राह्मण ने अपना नाम श्रीकंठ बताया और कहा कि मैं यहाँ आया हूँ और यह मुझे बताओ कि ये सब समायोजन किस लिए हो रहा है। सुंदर के पिता जटिल ने कहा कि यह जो हमारा पुत्र है जिसका नाम कमल नाथ है और उपनाम है सुंदर, इसके विवाह की तैयारी चल रही है। श्रीकंठ ब्राह्मण ने कहा कि तुम भले न मुझे पहचानते हो पर मैं तुम्हें अच्छी तरह से पहचानता हूँ, तुम्हारे दादा को जानता हूँ, तुम्हें जानता हूँ और इस बच्चे को भी जानता हूँ, इसका विवाह होने जा रहा है। जब बार बार जटिल ने प्रार्थना किया कि आपके आशीर्वाद से हमारे सुंदर बालक का अच्छी तरह से विवाह क्रिया संपन्न हो, बस तुरंत ब्राह्मण देवता कुपित हो गए। बोले कि तू बड़ा झूठ बोलता है, ये सुंदर हमारा दास है, ये तेरा बेटा कैसे हुआ। भरी सभा में श्रीकंठ ने सबको संबोधित करके कहा कि देखो ये हमारा दास है, खरीदा हुआ है और इस दास को ब्याह करके अपना बेटा बनाना चाहता है। सारी सभा में सन्नाटा हो गई। सुंदर खड़े हुए, बोले कि मैं आपको जानता नहीं, पहचानता हूं नहीं, आपका मैं दास कैसे। और ब्राह्मण तो कभी किसी का दास बन भी नहीं सकता, केवल भगवान का दास हो सकता है, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा देख तेरे दादा की हमारे हाथ में पत्री है, तेरे दादा ने लिखा है कि मैं जम्बूपुर निवासी, दक्षिण भारत में जम्बूपुर एक नगर का नाम है, जम्बूपुर निवासी कमलनाथ का दास हूँ, हमारे पुत्र पौत्र सभी इनके दास होंगे, उनका हस्ताक्षर है और लेख है। जब उसको देखा तो तुरंत पढ़ते फाड़ के फेंक दिया। जब फाड़ के फेंक दिया तो वृद्ध ब्राह्मण और कुपित हो गए, बोले कि देखो इसका फाड़ना ही प्रमाणित करता है कि मेरा दास है, ये दास नहीं होता तो क्यों फाड़ा, राजा को दिखाना चाहिए, राजा सभा में बैठे हुए हैं। और कुपित होकर बोले कि देखो इस सभा में कोई भी न्यायप्रिय क्या ब्राह्मण नहीं है या कोई राजा नहीं, मंत्री नहीं, जो कि न्याय हमें दिला सके, ये मेरा दास है परंतु ये जटिल जो है ब्याह करा के अपना पुत्र साबित करना चाहता है। भयंकर विवाद हो गया, सभा में सन्नाटा छा गई। राजा बीच में हस्तक्षेप करते हुए बोले कि ब्राह्मण देवता आप शांत रहिए, इसका निर्णय यहीं पर हो या अन्यत्र, यह आपका दास है या जटिल का पुत्र। ब्राह्मण ने कहा कि यहां तो सब जो है दुर्नीति वाले हैं, किसी को नीति का धर्म शास्त्र का ज्ञान नहीं, इसका निर्णय तो नवनीतपुर में होना चाहिए जहां वह विद्वान ब्राह्मण है। विवाह बंद हो गया, सभी वहां नवनीतपुर के लिए चल पड़े। वहां जाकर वृद्ध ब्राह्मण और जटिल दोनों आमने सामने हुए। राजा ने कहा कि आप अपना दस्तावेज पेश कीजिए कि आपका दास यह कैसे बना। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि देखो इसने नकल तो फाड़ दी पर हमारे हाथ भी इस नकल का असल ओरिजिनल कॉपी है, और ब्राह्मणों को पकड़ा दिया। ब्राह्मणों ने पढ़ा, कहा कि इसमें साफ साफ लिखा है कि मैं जम्बूपुर निवासी कमलनाथ, मेरे पुत्र पौत्र सभी जो है इस पित्त नामक ब्राह्मण के दास होंगे। उस ब्राह्मण ने कहा कि कोई तुम्हारे दादा की प्रतिलिपि हो तो मिलाकर देख लो। जब दूसरी कॉपी ला के मिलाए तो बिल्कुल मिल गया। अब तो जटिल और सुंदर का सिर झुक गया, बोले कि ठीक है हम हार गए, आप जीत गए और मैं आपका दास। पर सुंदर ने कहा कि आपका घर द्वार कहाँ है, मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ। ब्राह्मण ने कहा चल मेरे साथ, मैं तुझे अपने घर ले चलता हूँ। अब सुंदर वृद्ध ब्राह्मण के पीछे पीछे जाता है। जब सुंदर ब्राह्मण पीछे पीछे चला तो ब्राह्मण जा करके भगवान शंकर के मंदिर में चला गया, अंदर से निकला ही नहीं। सुंदर ने कहा कि तुम जो है ना पागल हो गए हो, यदि तुम्हारा घर द्वार है तो अपने घर द्वार चलो, इस मंदिर में क्यों प्रवेश कर गए? जब जोर से क्रोध किया कि तुम भ्रांत ब्राह्मण हो, तुमने झूठ मूठ का मुझे ठगा है, दास बनाया है, मैं तुझे जानता भी नहीं, जल्दी से बाहर निकलो। पर अंदर कोई हो तब तो निकले, जब अंदर देखा तो भगवान शंकर चरणों में गिर पड़ा। भगवान शंकर ने कहा, तुझे पता है तुझे उपासना करके और मुझसे वरदान मांगा था कि मैं संसार के चक्कर में न पड़ूं, और तेरी ब्याह हो जाती तो तू बता तू कहां पड़ता। इसलिए मैं जो है वृद्ध ब्राह्मण का रूप बन करके तुझे उस विवाह के बंधन से छुड़ाने के लिए सब नाटक किया था। तो देखो भगवान शंकर ऐसे उदार हैं कि भक्तों की हर तरह से रक्षा करते। ये तो आपको अधूरी कथा सुनाई, इसकी दूसरी कड़ी कल सुनाएंगे सुंदर की। प्रेम से बोलिए।

0: नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org। ओ

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: आप जानते हो, जहां प्रेम होता है वहां ये नहीं कहा जाता है कि नौकर को संकेत किया, वहां पर जहां प्रेम होता वहां व्यक्ति स्वयं जो है उसकी सेवा करता। इसलिए भगवान ने स्वयं सेवा की और सेवा करते हुए फिर भगवान ने क्या किया, पहले तो उन्होंने जो है नियम लिया, केवल एक बार जो है शाम के समय भोजन करना और कुछ काल तक ये प्रयत्न चलता रहा। फिर उन्होंने जो है भोजन भी छोड़ दिया, फलाहार करना शुरू किया, फलाहार लेना भी छोड़ दिया, फिर जो है जल के सहारे रहे, फिर जल का भी परित्याग कर दिया, पत्थों आदि के सहारे सब प्रयोग करते हुए अंत में वायु के सहारे रहे, लेकिन फिर वायु का भी उन्होंने त्याग, कुंभक करके वायु को ग्रहण करना भी उन्होंने त्याग दिया। और जब इसका त्याग कर दिया तो भगवान जो थे वो प्रसन्न हो गए, भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। और भगवान प्रकट होकर के भगवान ने कहा, कहो कृष्ण, किस कारण से ये कष्ट किया? कृष्ण ने कहा, महाराज कोई कारण नहीं। कहा, बगैर कारण के तो कार्य होता ही नहीं, कारण बिना कार्य हमने उत्पद्यते, कारण तो कोई जरूर है। किस लिए तुमने मेरी जो है शरण ली, क्या मेरे से चाहते हो? भगवान ने कहा, महाराज मुझे कोई कामना नहीं, मैं कुछ नहीं चाहता। कहा, कुछ नहीं चाहते हो तो फिर ये कार्य, ये शरण लेना कैसे हुआ? कहा, ये तो यम आत्मा परानंद परम प्रेमास्पदम इतः, आप मेरी आत्मा हो और आत्मा से स्वाभाविक प्रेम होता है, आपसे मेरा भी स्वाभाविक प्रेम है। अभी तक इस प्रवृत्ति में रहने के कारण प्रेम उधर बटा रहा और आपकी शरण नहीं ले सका, लेकिन यश जो है हमारे लिए सत्य भामा ने सुलभ कर दिया, मेरी कोई इच्छा नहीं, लेकिन उसने सत्य भामा निमित्त बन गई और उसने निमित्त बना करके जो है मुझे क्या कर दिया, कहा आपकी शरण लेने के लायक बना दिया। ऐसा भगवान ने कहा, लेकिन इससे पहले और कहा, क्या भगवान कहने लगे, यह सर्वज्ञ महाराज, आप मेरे से पूछ रहे हो, पूछे तो वह जो अल्पज्ञ हो, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं, और आप जब सब कुछ जानने वाले, वैरंतस्य भूतानाम चर अचर मेव च, आपकी सत्ता कहां नहीं है, प्राणी के हृदय में भी विद्यमान है, प्राणी के बाहर भी विद्यमान है, सर्वत्र आपकी सत्ता विद्यमान है, अधस्तात उपरिष्टात दक्षिणतः उत्तरतः चारों तरफ आपकी सत्ता विद्यमान है, और आपकी सत्ता ही नहीं विद्यमान है, आप सब कुछ जानने वाले भी हैं, प्रकाश स्वरूप है, तो आप सब कुछ जान रहे हैं, इसलिए आपका पूछना यह बन रहा नहीं। तो यह सर्वज्ञ, यह सर्वज्ञ सर्वित, जो सर्वज्ञ है सब कुछ जानने वाला है, और वो पूछे तो पूछना बनता नहीं। आगे और कहा, इतना ही नहीं कहा, सर्वज्ञ दया करस्य, और आप क्या हो, कोई सर्वज्ञ तो हो, जानता तो हो, लेकिन जानने पर भी वो चाहता है कि जब तक मेरे से कहेगा नहीं तब तक मैं इसकी सहायता नहीं, जानता सामने वाला परेशानी में है और मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए, लेकिन वो थप तक नहीं करता है, क्योंकि उसके अंदर बैठा हुआ है कि ये मेरे से कहे, ये मेरे से याचना करे, तब मैं इसकी सहायता करूं। कहने लगे, ऐसा भी नहीं, आप क्या हो, सर्वज्ञ हो, सर्वज्ञ हो, और सर्वज्ञता के साथ साथ दया करस्य, दया के आकर, आप कहते हो आशुतोष प्रभु अवधरदान, माने आप दया के खजाने हो, आपके अंदर ऐसी कोई कृपणता नहीं है, इसलिए जो है आपसे ये पूछते नहीं बनता। और ऐसा भगवान ने कह करके, मेरी कोई इच्छा नहीं, इसमें तो निमित्त जो है सत्यभामा बनी और मुझे अवसर उसने प्राप्त करा दिया कि उस प्रवृत्ति से मैं निवृत्त होकर के आपकी शरण ले सका। इसलिए मेरा तो आपसे प्रेम है, आप मेरे आत्मा। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने जब कहा तो भगवान ने वहां पर समझ गए। भगवान ने कहा अच्छा तो जाओ, सत्यभामा को 10 पुत्रों की प्राप्ति होगी। शिव ने आशीर्वाद दे दिया और कहा कितना ही नहीं, अब केवल सत्यभामा के ही नहीं, सबको 10-10 पुत्रों की प्राप्ति होगी। लेकिन वहां अकेले भगवान शिव नहीं आए थे, साथ में कौन था? पार्वती भी साथ में थी। पार्वती ने कहा मैं पीछे क्यों रहूं? इसलिए पार्वती ने कहा कि ठीक है, भोलेनाथ ने तुम्हें जो है दो आशीर्वाद दे दिया, लेकिन मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है जहां परमात्मा की प्रसन्नता हो जाती है वहां प्रकृति की भी प्रसन्नता हो जाती है, उसके लिए फिर यह लोक भी सुखद हो जाता है और परलोक भी सुखद हो जाता है और स्वयं वो सुख रूप ही हो जाता है। इसलिए पार्वती ने कहा जाओ कृष्ण, तुमको कभी भी जीवन में बुढ़ापा नहीं आएगा, तुमको कभी भी जीवन में कोई रोग नहीं आएगा, तो सदा तुम निरोग रहोगे और सदा तुम बुढ़ापे से रहित रहोगे, कभी तुम्हें बुढ़ापा आदि नहीं, और मृत्यु भी तुम्हें जो है कभी छू पाएगी नहीं। ये दिया तो ये शिव पुराण के अंतर्गत। तो खैर ये तो चर्चा मैंने केवल इसलिए कही, भगवान श्री कृष्ण जो है, इसलिए भगवान ने गीता में क्या कहा, यद यद आचरत श्रेष्ठ तत् तद देवे तरु, सयद प्रमाणम कुरते लोकस्तद। श्रेष्ठ पुरुष जिसका आचरण करता है तो आने वाली उसके अनुयायी जो पीढ़ी है वो भी वैसा ही आचरण करती, क्योंकि वही उसके लिए प्रमाण बन जाता है, है? हमने हीरों को श्रेष्ठ समझा तो उन्होंने यदि बाल रखाना शुरू कर दिया तो हमने भी शुरू कर दिया, उन्होंने कटाना शुरू कर दिया तो हमने भी कटाना शुरू कर दिया, उन्होंने जो है रंग बिरंगे कपड़ों को पहनना शुरू कर दिया तो हमने भी कर दिया, उन्होंने बाल घोटम है झाड़ू लगाने वाला पैंट पहनना शुरू कर दिया तो हमने कर दिया, उन्होंने चुस्त पैंट पहनना शुरू कर दिया तो हमने कर दिया। क्यों? ये स्वाभाविक इस संसार की प्रवृत्ति है, क्योंकि नकल करना ही संसार का रूप है। और नकल शब्द का अर्थ तो जानते ही, क्या है नकल? जिसमें कला नहीं है, न विद्यते कला इसमें, और मन स्वयं ग्रहण करने की सामर्थ्य जिसमें नहीं है तो वो क्या करता है? तो कहा देख करके करता। तो ये सब इसलिए, ये तो संसार की प्रकृति की स्वाभाविक स्थिति है। तो ऐसा जब भगवान करते हैं तो वही भगवान ने ये शरण के लिए एक संकेत यहां पर किया, और गीता में भी भगवान ने शब्द को कहा कि हैं आद्यम पुरुषम प्रपद्ये, उस आद्य पुरुष की मैंने शरण ली। और फिर संकेत है कि जैसे मैंने शरण ली है इसी प्रकार से तू भी मार्गन कर, और तब संकेत किया तब तू उसकी शरण ले पाए, तब तुझे उसकी शरणापन्नता प्राप्त होगी। अर्थात जब तू इस प्रकार से मार्गन करेगा तो उस परमात्मा का प्रसाद तेरे ऊपर हो जाएगा। लेकिन हमारी स्थिति क्या, किसी कवि ने बड़ी सुंदर बात लिखी, उसने लिखा चिर सजग आंखें उन्हीं दी, आज कैसा व्यस्त वाना, जाग तुझको दूर जाना। अनादिकाल से हम जो है सोते ही आ रहे, सोते आ रहे माने नींद से अर्थात तमोगुण से अर्थात अज्ञान से आवृत होते आ रहे, और उसके लिए उद्बोधन किया कि जाग तुझको दूर जाना, अबे तुझे यात्रा करनी है और लंबी यात्रा है, इसलिए क्या है जाग जा। और केवल उस कवि ने नहीं लिखा, और कवि नहीं, महादेवी वर्मा करके कवयित्री हिंदी की हुई, उन्होंने इस बात को लिखा, और आप जानते हैं उनकी जीवन चरित्र को पढ़ा हो तो, पति से प्रत्यक्त हो गई, पति से प्रत्यक्त होने पर उन्होंने कोर्ट कचहरी में जाके केस नहीं किया, किंतु क्या किया, उन्होंने एक मार्ग ढूंढा और अपने को अध्यात्म की तरफ जो ले चली, तब उनके हृदय से ये उद्गार निकला और उन्होंने कहा कि चिर सजग आंखें उन्हीं दी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। और भी लंबी चर्चा उन्होंने की, अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम और रोले, आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, आ गया विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना। और केवल उन्होंने ही नहीं कहा, हमारा वेद का उद्घोष क्या उत्थातव्यम योक्तव्यम भूरि कर्मसु, उठो जागो और क्या करो, श्रेष्ठ कर्मों का अनुसरण करो। श्रुति भी इसी को कहती, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य बरान दिहुत, स्वरस्य धारा निस्ता दृत्य इत्यादि करके सब संकेत किया। ठीक उसी भाव को जो एक वेद का श्रुति का सिद्धांत है, वह सिद्धांत कब आया, जब संसार से हम उपरम हुए, उनको ठोकर लगी, उनको चोट लगी, लेकिन उस चोट को लेकर के वो है, हम लोग क्या करते, चोट को लेकर रोते। आगे उन्होंने लिखा भी है, कहे न ठंडी सांस में भूल यह जलती कहानी, आग और में हो तभी द्रग में सजेगा आज पानी, हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख छड़िक पतंग की अमर दीपक की निशानी, तुझे है अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। ये संकेत, लेकिन ये तो कहा ही, बीच में उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही, वो क्या संकेत किया, वज्र का और एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुदा दो घूंट मदरा मांग लाया, सो गई आंधी मले की बात का उपधान ले क्या। और फिर आगे संकेत किया, विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया, अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर्मे बसाना, जाग तुझको दूर जाना। ये संकेत किया, ये भाव कहीं भी उदित हो सकता है, लेकिन कब, तो जो चर्चा की गई कि जब तक हमारे अंदर संसार के इस रूप से, और संसार का रूप तो गीता भी कह दिया, न रूप मत्स्य तथोपलब्ध, अर्थात जो असत पदार्थ में जब तक हमारी आसक्ति है, असत पदार्थ कोई भी हो, असत पदार्थ में जब तक राग रहेगा तब तक ये बल आता नहीं, इसलिए वैराग्य शब्द का प्रयोग किया, विवेक और विवेक के बाद वैराग, तब आगे का बल बतलाया। तो जब हमारे जीवन में ये आ जाए कि सत क्या है और असत क्या है, तो असत पदार्थ से हमारा राग हटे, और असत से राग हटेगा तो सत में जुड़ेगा, और सत में जब राग जुड़ता है तभी हृदय जो है इस प्रकार का होता है, तभी हृदय प्रसन्न होता है, तभी इस व्यक्ति के जीवन में प्रसन्नता आती है, और जब जीवन में प्रसन्नता आती है तो उसी के अंतर्गत वह आग जो नेत्रों में जल ला सकती है, और हृदय के अंतर्गत आग का मतलब है वो पिपासा, वो इच्छा, वो जिज्ञासा, और ये जब आता है तब जो है ऐसे ही उसके लिए संकेत किया गया, विस्पष्ट रुचिना, वो कौन है, इनके अंतर्गत अब असत पदार्थ की तरफ जाने की उनकी इच्छा नहीं हो रही, वहां उनके अंदर अब कोई संशय नहीं, वो जानते हैं सत्य से ही सब कुछ होने वाला, और सत्य के ही जो अनुयायी बन गए हैं, ऐसे उनके लिए कहा कि जो सत्य के जिज्ञासु हैं, सत्य को ही प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे विस्पष्ट रुचि नाम, ऐसे विस्पष्ट रुचि वाले, और उनके लिए तैतिरियक सारस्य, इस तैतिरीय उपनिषद का जो सार है उस सार को कहने लगे, लेकिन इस सार को कहने की सामर्थ्य मेरे में नहीं, लेकिन कैसे कह रहा हूं, तो संकेत किया, आचार्य प्रसादतः, भगवान शंकर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, आप जिनकी जीवनचर्या को जानते हो, जो 5 वर्ष की अवस्था में जिसने संन्यास ले लिया हो, 8 वर्ष में जो सारे शास्त्रों के वेत्ता हो गए हो, और जो है 12 वर्ष में जिन्होंने भाष्य उपनिषद आदि का निर्माण कर दिया हो, और फिर आगे चल करके सारे 4